ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 7 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की

0: समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन।

ईश्वर हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं, हमारी दिनचर्या हमारी जीविका के लिए परेशान होते हैं, हमें व्यवस्थित करने के लिए खुद तमाम जतन करते हैं, वैसे ईश्वर परम पिता हैं। वो संपूर्ण जगत के कल्याण का कार्य करते हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर अपने जीवन को संचालित करें। अनेक कालखंडों में ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग माध्यम रहे हैं, लेकिन इस कलिकाल में उनके नाम सुमिरन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कलयुग केवल नाम अधारा। इस युग में यदि हम ईश्वर के नाम का सुमिरन कर लेते हैं, उनके नाम भजन की अच्छी तपस्या कर लेते हैं, अपनी जीवा को उनके नाम के साथ साध लेते हैं, तो स्वतः हमारा मन मस्तिष्क नियंत्रित और संतुलित हो जाता है और हमारा जीवन सन्मार्ग पर चल पड़ता है। तो आइए हम सब भी अपने मन और जीवा को साधते हैं प्रभु नाम के साथ।

0: कुछ और भक्ति रचनाएं लेकर अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

भौतिक निर्धनता। मनुष्य को बाहरी रूप से कमजोर करती है, लेकिन आत्मिक निर्धनता मनुष्य के हर पहलू को कमजोर कर देती है। हमें धनवान होना है तो स्वस्थ मानसिकता से, सद्गुणों से, सद्विचारों से और मन मस्तिष्क में ईश्वर के वास से। क्योंकि जब हमारे आत्मिक गुण प्रगाढ़ होते हैं, तब फिर अभावों में भी हमें किसी पीड़ा का आभास नहीं होता। क्योंकि पीड़ा तो मन द्वारा जनित है। यदि हम अभावों में भी प्रसन्न रहना सीख लें, तो फिर कोई भी सांसारिक पीड़ा

हमें धनवान होना है तो स्वस्थ मानसिकता से, सद्गुणों से, सद्विचारों से और मन मस्तिष्क में ईश्वर के वास से। क्योंकि जब हमारे आत्मिक गुण प्रगाढ़ होते हैं तब फिर अभावों में भी हमें किसी पीड़ा का आभास नहीं होता, क्योंकि पीड़ा तो मन द्वारा जनित है। यदि हम अभावों में भी प्रसन्न रहना सीख लें तो फिर कोई भी सांसारिक पीड़ा हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास आत्मिक बल होता है, हमारे पास ईश्वर का संबल होता है। और जो मनुष्य, हम अनेक साधु संतों को देखते हैं, तपस्वियों को देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनके ललाट पर एक अनुपम तेज होता है जो स्वयं तो आलोकित होता ही है। उनके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी उस आलोक से प्रकाशित हो जाते हैं। जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सद्व्यवहार करते हैं, सदाचरण करते हैं, तो हमारे आसपास हम में ईश्वर का वास होने लगता है और वो आभामंडल संपूर्ण जगत को चमत्कृत करता है। ईश्वर की अनुभूति स्वतः होने लगती है।

भूमिका हमारे गुरु की होती है और गुरु को भी ईश्वर तुल्य ही माना गया है। इवन ईश्वर की पहचान भी हमें गुरु ही कराते हैं। तो आइए आज के आराधना कार्यक्रम में हम सब मिल करते हैं गुरु की वंदना।

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस संसार में हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमारा जीवन जिस दिशा में संचालित होता है उसमें बहुत बड़ी

हमें जीवन में सद्गुरु मिले, ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लेकर चले, हमारा कल्याण करें, इसी कामना के साथ आज की आराधना से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर सीवी रमन के विचार।
1: प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी नूतन उपलब्धियों से संसार में भारत का नाम विज्ञान के क्षेत्र में उजागर किया। इस महान मेधावी वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में त्रिचुरापल्ली के निकट अय्यनपेट्टई गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। रामन की शिक्षा त्रिचुरापल्ली नगर में हुई। बालक रामन आरंभ से ही अत्यंत मेधावी थे। इन्होंने मैट्रिक, FA और BA सभी परीक्षाएं अत्यधिक अंक प्राप्त कर सर्वप्रथम उत्तीर्ण की थी। MA की परीक्षा में भी इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद पर काम करते हुए भी रामन जी की रुचि विज्ञान के शोध कार्य में ही थी। इन्होंने अपना पहला विज्ञान शोध पत्र 16 वर्ष की आयु में लिखा था, जो लंदन की फिलोसफिकल मैगजीन के नवंबर 1906 के अंक में छपा। 18 वर्ष की अवस्था में ही रामन जी डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बन गए थे। 25 वर्ष की अवस्था में इनके जीवन में नया परिवर्तन आया। इन्होंने अकाउंटेंट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया और अपने वैज्ञानिक प्रेम के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भौतिकी विभाग में सर तारकनाथ पालित प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया। उस समय तक डॉक्टर

0: चंद्रशेखर वेंकट रामन विश्व में एक भौतिकी विज्ञान वेत्ता के रूप में विख्यात हो चुके थे। उनके अनेक शोध कार्य विज्ञान जगत के समक्ष आ चुके थे। डॉक्टर रामन ने 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से लंदन में हो रही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। प्रोफेसर रामन जब जहाज से भूमध्य सागर पार कर रहे थे, उस समय उन्होंने भूमध्य सागर का गहरा नीला रंग देखा। लौटते समय उन्होंने उस नीलिमा पर टिप्पणी की थी कि मुझे यूरोप यात्रा में भूमध्य सागर का अद्भुत नीला रंग देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बात असंगत नहीं लगी कि ये चमत्कार जल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटता है। इस व्याख्या की परीक्षा के लिए ये उचित ही था कि तरल पदार्थों में प्रकाश का विस्तार करने वाले नियमों की जांच की जाए। इसी उद्देश्य से सितंबर 1921 में कलकत्ता आते ही प्रयोग शुरू किए गए। रामन ने 1928 में इस कार्य को मूर्त रूप दिया। बेंगलोर में 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन एसोसिएशन की सभा में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। रामन की इस प्रकाश संबंधी खोज का महत्व जर्मन वैज्ञानिक प्रिंग राइम ने पहचाना और उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन की इस घटना को रामन प्रभाव नाम दिया। 1930 में प्रोफेसर रामन को अपनी इस रामन प्रभाव की खोज पर संसार का सर्वोच्च वैज्ञानिक नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। विज्ञान पर यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर रामन एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। इस प्रकार प्रोफेसर रामन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया है।
1: अभी आप डॉक्टर सीवी रमन के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत, और आज की बातचीत का विषय है बाग लगाते समय सावधानियां। लीजिए सुनिए।
1: किसान भाई, देखा आप सब तरह तरह के भाई खेती करत है, बागवानी करत है। निश्चित तौर पे भाई अगर बागवानी की बात की जाए तो जौन भाई समय चलत है, इस समय में बागवानी में अगर नए नए पेड़ पौधा के आप सब रोपा तो निश्चित तौर पे भाई वो पौधा पकड़े के ज़्यादा गुंजाइश होत है और आप सबके फ़ायदा भी ज़्यादा मिले। तो भाई देखा जौन बाग बाटे ओकर जौन लगावे की बात की जात है, लगावत समय कौन कौन बातन पे विशेष तौर पे ध्यान दे चाहे का सावधानी आप सबके बरते चाहे, देखा ही विषय पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथे बाटे हैं डॉक्टर विश्वनाथ भैया, जौन यही कुल के विशेषज्ञ हैं। भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे, और हम आपसे जानना चाहब भैया कि हमारे बागवान भाई कौन कौन बातन पे ध्यान दें बाग लगावत समय, का सावधानी बरतें भैया।
2: वर्तमान में बागवानी बृहद व्यवसाय का रूप ले चुकी है। फल वृक्षों से गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना शुरुआत में बाग की स्थापना पर बहुत कुछ निर्भर करता है
1: जी।
2: सुविचारित तरीके से स्थापित बाग कम से कम 50 से 60 वर्षों तक उत्पादन देती है।
1: बिल्कुल।
2: अतः बाग की स्थापना एक कौशल एवं विपे पूर्ण कार्य है, खास तौर से तब जब पौधरोपण का कार्य किया जाना हो
1: जी।
2: रोपण के समय की गई गलतियों का निराकरण बाद में संभव नहीं होता, क्योंकि स्थापित वृक्षों को हटाना या काटा जाना उचित नहीं है। बाग स्थापना के समय की गई गलतियों के कारण उपज गुणवत्ता एवं उत्पादन अवधि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है
1: जी,
2: जिस कारण बागवान भाइयों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है। अतः पौधरोपण के समय बरती जाने वाली सावधानियां बताई जा रही हैं, बागवान भाई इस पर ध्यान दें ताकि पौधरोपण में गलती न हो और बाग लंबी अवधि तक

0: उत्पादक बनी रहे।
1: डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे अगर गड्ढा की बात की जाए जौने में पौधा के रोपाई करे किसान भाई के, उनमें का कुछ ध्यान दे चाहे उन्हें?
0: बागवान भाई सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि जो गड्ढा खुद चुका है उसकी भराई हो चुकी है तो वो अच्छी तरीके से भली भांति उसकी मिट्टी बैठ चुकी है या नहीं,
1: जी।
0: क्योंकि बिना मिट्टी बैठे रोपण करने से पौधा मिट्टी सहित गड्ढे में धंस जाता है जिससे कई समस्या उभर कर आती है।
1: जी जी।
0: एक तो पौधा टेढ़ा या तिरछा हो जाता है जिससे आगे चलकर उस पौधे का सही विकास नहीं होता और
1: जी।
0: उपज प्रभावित होती है।
1: जी जी।
0: दूसरी बात यह कि पौधे का ग्रैफ्ट बिंदु जहाँ पर वो कलम की गई होती है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: जिसे कटिंग या ब्रेडिंग ग्रैफ्टिंग होती है,
1: जी जी
0: भूमि की सतह पर वो उसे करीब आ जाता है जिससे रोगाणु के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है तथा पौधा शीघ्र मर जाता है। अतः पौधरोपण का कार्य गड्ढे की मिट्टी पूर्ण रूप से बैठने के बाद ही करें।
1: काहे मतलब भैया कि अगर भाई कलमी पौधा लगावत बाटे किसान भाई, तो जहाँ कलम जुड़ी रहा थे वो अगर माटी के नज़दीक आ जाए तो हमें किड़वा लागे की संभावना बढ़ जाए, तो ऐसे स्थिति में उनका नुकसान हो सकता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: अब डॉक्टर साहब हम आपसे जानने चाहब कि पौध के चयन में का कुछ सावधानी बरते चाहिए?
0: देखिए भाई, पौध जब चयन करना है उसे खरीदना है तो पहली बात तो सदैव रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीदें।
1: जी
0: जिस किसी भी फल पौधे का रोपण करना हो तो उसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे वो किस प्रजाति का पौधा है
1: हाँ हाँ
0: और पौधे की क्या उम्र है,
1: जी
0: माध वृक्ष की क्या दशा है,
1: जी
0: पौधा पॉलीथीन में लगा है या नर्सरी से खोदा गया है। इन सब की जानकारी करना अति आवश्यक है। अतः बागवान भाई जब भी पौधा खरीदने जाएं तो नर्सरी पर एक नर्सरी रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को देखें और नर्सरी रिकॉर्ड देख करके सब पता कर लें कि पौधे की क्या स्थिति है। और प्रत्येक नर्सरी के पास ये रजिस्टर होता है जिसमें सभी बातें दर्ज होती हैं
1: जी जी
0: और उससे सारी जानकारी हो जाती है।
1: का मतलब भैया कि मान्यता प्राप्त जौन कही जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन जौन नर्सरी खोए भैया, वो नर्सरी से अगर पौध नहीं तो ज़्यादा संभावना होए कि जौन प्रजाति के पौधा उनसे आपको कह के मिले, जौन गुणवत्ता के मिले वही गुणवत्ता के पौधा आपके प्राप्त हो जाए।
0: बिल्कुल सही है।
1: डॉक्टर साहब एक बात और बताऊँ, जैसे कि पौध के चयन के लिए किसान भाई अब ओका रोपण करे की बात आवत है, वैसे स्थिति में का कुछ सावधानी बरते चाहिए?
0: भाई किसान जो तैयार गड्ढा है और उसकी मिट्टी बैठ चुकी है तो गड्ढे के बीचों बीच जो पौधा है पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा खोदें
1: जी
0: और पौधे की पिंडी जो पुआल आदि से बंधी होती है या उसमें पॉलीथीन लगी हुई होती है
1: जी जी
0: को सावधानी पूर्वक खोलें। ध्यान रखें कि पिंडी टूटना नहीं चाहिए।
1: अच्छा अच्छा
0: अब पौधे को खुदे हुए गड्ढे में पिंडी सहित इस प्रकार से रखें कि पौधा बिल्कुल सीधा हो। इस कार्य के लिए प्लांटिंग बोर्ड आता है, उसका उपयोग करें तो अच्छी बात है।
1: डॉक्टर साहब कभी कभी सही कहते बैठे किसान भाई ध्यान ना देते हैं, जौन पुआल वगैरह भैया पिंडी के चारों तरफ लगा हो तो वैसे वो डाल देते हैं, वैसे जौन है पौध को लगा देते हैं, तो ये तरीका ठीक ना हो ना?
0: नहीं नहीं उसको हटाना आवश्यक है।
1: जी जी जी और भैया
0: पौधों के चारों ओर मिट्टी डालकर हाथ से थपथपा दें ताकि मिट्टी बैठ जाए और पौधा सीधा खड़ा रहे।
1: जी
0: पौधा टेढ़ा या तिरछा होने पर आगे चलकर उसका सही विकास नहीं हो पाता जिससे फसल नहीं अच्छी होती और फलत प्रभावित होती है।
1: जी
0: पौधे का रोपण के समय जो ग्रैफ्ट बिंदु है जहाँ पर ग्रैफ्टिंग की गई है, बडिंग की गई है,
1: जी जी जी
0: भूमि से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हो।
1: अच्छा।
0: ऐसा ना करने पर रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ग्रैफ्ट बिंदु पर फंगस के आक्रमण के कारण सड़न पैदा हो जाती है
1: जी।
0: और पौधा शीघ्र ही मर जाता है।
1: तो उसी नुकसान हो गया भैया?
0: हाँ बिल्कुल नुकसान, इसलिए वो 15-20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: रोपण के समय जो ग्रैफ्ट है या बड वाला हिस्सा है सदैव पश्चिमी दिशा में रखना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि गर्मियों में पश्चिमी ओर से तेज हवा या लू चलती है जिसके कारण विपरीत दिशा में लगे पौधे के कलम वाला हिस्सा
1: जी
0: जहाँ पर जोड़ है उस स्थान से पौधे के टूट जाने की संभावना होती है।
1: यह भैया ध्यान दें कि ऐसा स्थिति में लगाओ जहिया तेज हवा से कोनो नुकसान ना हो। जी
0: रुपाई के तुरंत बाद पौधे को पानी देना नितांत आवश्यक है, तत्पश्चात बरसात के अनुसार पौधे को पानी देते रहें।
1: हाँ जैसे जरूरत हो भैया, जब देखें नमी ना बैठे तो ऐसी स्थिति में फिर सिंचाई करत रह जाए। और भैया
0: और जो पॉलीथीन में पौधे लगे हैं उनका रोपण तुरंत किया जा सकता है
1: जी,
0: और जो पौधे नर्सरी से खोदे गए हैं उनका रोपण तुरंत नहीं करना चाहिए क्योंकि तुरंत खोदे गए पौधों की जड़ें

0: चोटहिल होती हैं
1: जी,
0: और पौधा जल्दी से जड़ नहीं पकड़ता। अतः नर्सरी से खोदे गए पौधों को 3 से 7 दिनों तक छाया में रखते हैं।
1: जी जी।
0: पिंडी को पुआल आदि से ढककर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं
1: जी।
0: ऐसा करने से दूसरी जड़ें निकल आती हैं, तब रोपण करने से पौधा शीघ्र स्थापित हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब एक चीज और जाननी चाहत बाटी, देखे में आवत भाई कि कभों कभों भाई नर्सरी से पौधा तक किसान भाई ली आवत घरे, लेकिन ओकर रोपण करे में कुछ उनका समय लग जाता है कई कारण से, तो ऐसे स्थिति में पौधा उनके घर भी सुरक्षित रहे, का कुछ ध्यान देख पड़े उन्हें?
0: ये हमने अभी बताया ना कि जब वो पौधा नर्सरी से ले आते हैं तो उन्हें वो छाए में रखें।
1: अच्छा।
0: और छाए में रख करके उस पर पुआल घास डाल करके पिंडी को ढक दें और समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है
1: जी।
0: और वो आप उसे 10 दिन 15 दिन बाद भी उसकी रोपाई या रोपण कर सकते हैं
1: जी।
0: और यदि वो ऐसा नहीं करते तो पौधा सूखने लगता है।
1: एक चीज़ डॉक्टर साहब और जानना चाहत बाटी, जैसे आंवला के पौधा बा के किसान भाई लगावे चाहत बाटे, तो ऐसे स्थिति में नर्सरी से लिया के बाद ओकर रोपाई करते समय का कुछ ध्यान दे चाहे उन्हें?
0: देखिए भाई, इसे आंवला हुआ
1: जी,
0: बेर हुआ, इसके पौधे जैसे नर्सरी में खोदे गए
1: हाँ,
0: और आप उसको ले आए
1: जी,
0: तो इन पौधों को निश्चित रूप से 1 सप्ताह तक छाए में रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और जब उनको छाए में रख दिया जाता है तो इस बीच उनकी पत्तियां गिर जाती हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पौधा मर गया या सूख गया।
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ।
0: सप्ताह भर के भीतर उसमें से दूसरी पत्तियां निकल आती हैं
1: जी।
0: और जब दूसरी पत्तियां निकल आए तब उस पौधे का रोपण करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: ये ध्यान दे चाहे भैया कि नर्सरी से पौधा के लिया हुए जब घरे तो उसका 1 सप्ताह तक रखे रहें, और उसमें भैया उस समय पिंडी में पानी उनी की सिंचाई हल्की करे पड़े?
0: अरे बिल्कुल करना पड़ेगा, पानी नहीं देंगे तो पौधे में जो जड़ें हैं खुराक कहाँ से लेंगी। पानी तो उनको छिड़काव करके देने देना है।
1: तो इस तरह से अगर पौध का रोपण करी सावधानी बरती ही किसान भाई तो ज़रूर भैया उनका फ़ायदा होए। आप भैया आए ना और इतना बढ़िया जानकारी दें, सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाग लगाते समय सावधानियां, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ से चंद्रजीत यादव की बातचीत। किसान भाइयों, अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राकेश राज की वार्ता। विषय है बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक उपचार।
1: बरसात का मौसम आता है तो उसके साथ आती है नमी, जो कि पैदा करती है बहुत सारे कीटाणु, मोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, और फंगस इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानियां होती हैं कि अगर बहुत नमी वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है, इरप्शंस आ जाते हैं, कह सकते हैं कि लाली पड़ जाती है, कुछ दाने पड़ जाते हैं, इस प्रकार से पेशेंट परेशान होते हैं। लेकिन इसका कारण है बेसिक कि वो नमी के एरिया में रह रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि पहले हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वातावरण है, अगर हमारे घर में नमी है तो उसको हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर हम जैसे ही धूप निकले तो अपने खिड़की दरवाज़ों को खोल दें, थोड़ी सी एरेशन हो वहाँ पे, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और धूप से नमी का जो असर है वो घट सके। फिर उसके अलावा अगर हम जिस कमरे में कारपेट वगैरह लगे हुए हैं उसमें कि बहुत सारे कीटाणु घर कर लेते हैं नमी के टाइम में, उनको हटाएं ताकि जो है वो वातावरण जो है नमी में ना रहे, सूख जाए। और उसके साथ साथ फिर आगे उपचार भी हैं बहुत सारे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि कॉटन हो और उसमें से हवा पास हो सके, और बहुत टाइट क्लोथ्स ना पहने, खासकर बच्चों में ये

0: बहुत ज़्यादा होता है। अगर बिल्कुल उनको हवादार कपड़े पहनाए जाएं और टाइट ना हो तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग कम होती है और जो फोल्ड्स ऑफ स्किन हैं दैट इज़ नेचुरल कि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होगी। जो फंगल इन्फेक्शन है इसमें जो फंगस इन्वेड कर रहा है बॉडी को, हमें ये भी देखना होता है कि कौन व्यक्ति है जिसको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर उस व्यक्ति को थोड़ा सा समझेंगे तो उसकी फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा आसानी से ठीक किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन जो है वो खुजली पैदा करता है और ऐसे समय पैदा करता है जब वो जो है कपड़े उतारता है, रात को आके शाम को आके जब वो कपड़े बदलता है तब वो बहुत इचिंग पैदा होती है, तो उसके लिए दूसरी दवाई है र्यूमेक्स क्रिस्पस। ये एक ऐसी दवा है जो कि खास उस समय इस्तेमाल की जाती है जब व्यक्ति को ये सिम्टम हो, वो अनड्रेसिंग करता है और इचिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। लेकिन इसी जगह पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ पर आ गया है जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया जब है तो वहाँ पे इचिंग हो रही है और वहाँ पे पस भी आ गया है, तो ऐसे केस में बैसिलिनम नाम की एक दवा है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस काम के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर वो जो इचिंग हो रही है वहाँ से कोई डिस्चार्ज ऐसा है जो बहुत स्टिकी है, ग्रेफाइटिस नाम की दवा आ जाएगी। अगर बिल्कुल ड्राई है, कोई डिस्चार्ज नहीं है और पूरी बॉडी में हो रहा है, तो जुगलन्स रीजिया नाम की दवा आ जाएगी। एक बेसिक चीज़ जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का कि दे ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़, तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसकी डिजीज़ का उपचार आसानी से हो जाएगा। चार लोग एक परिवार में रहते हैं, एक ही माहौल में रहते हैं, एक ही वातावरण में हैं, लेकिन दो को तकलीफ होती है, दो को नहीं होती है, तो इसका मतलब ये कि जो दो को तकलीफ हो रही है उनका इम्यून लेवल कम है, तभी वो उनको फंगस बैक्टीरिया इन्वेड कर सका और दो को नहीं कर पाया। तो हमें उनको दवा ऐसी देनी चाहिए, न्यूट्रिशन ऐसा देना चाहिए, खाने पीने पर प्रबंध करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें खाएँ, एक्सरसाइज करें, खुली वातावरण में रहें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, और दवाओं के साथ तो मदद करी जा सकती है। रिंगवर्म के लिए एक बहुत अचूक दवा है सोराइनम, ये दी जा सकती है अगर रिंगवर्म है। रिंगवर्म लेकिन पहचानना होगा कि रिंगवर्म है कि नहीं है। रिंगवर्म की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो गोल में होता है, राउंड सर्कल्स में होता है, और उसके एजेस पे वो बढ़ता है और उठा हुआ होता है। जो उस रिंगवर्म का रिंग है वहां से ये तकलीफ आगे बढ़ती है, तो ऐसे केस में हम लोग सोराइनम नाम की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक उपचार। अभी आप डॉक्टर राकेश राज की यह वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 और 45 सेकेंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती सुनिएगा रात 9:30 बजे। संगीत अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन सुनिएगा। सुबह 7:30 दिन में 12:15 रामशंकर का ख्याल गायन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पामेला नंदी के स्वर में भजन और गीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर शाम 7:45 पर चित्रा चौरसिया के स्वर में भजन और गीत सुनवाए जाएंगे।

लोक गीतों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम लोक माधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे विकास श्रीवास्तव और विनीता कुमारी। कुछ और लोकगीत सुनवाएंगे दिन में 2:30। कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव, लाला बहादुर रागी, गुलाब सिंह यादव और साथी।

हमारे संग्रहालय से। यह कार्यक्रम होगा दिन में 10:30 बजे। इसके अंतर्गत सुनिएगा सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री रघुनाथ सेठ से केशव चंद्र शर्मा की भेंटवार्ता। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे।

0: अपनी फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा। दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी। दिन में 1:15 पर इसके अंतर्गत पूनम तिवारी की वार्ता होगी महिलाओं में डिजिटल साक्षरता। साथ ही वंदना सरोज और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनाए जाएंगे। धरती के गीत सुनिएगा। 5:00 बजे कलाकार होंगे राजवंत सिंह पटेल और साथी। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे 5:15 बजे। इसके अंतर्गत रितिशा ओझा की वार्ता होगी जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः क्रीडाक्षेत्रस्य विशिष्टव्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभयदेशयोः मध्ये सुदृढजनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैंडदेशे विशालं प्रवासी भारतीय सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इण्डोनेशिया देशयोः सफलयात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्रयात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्वागतं कृतवान्। भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि प्रशंसाम् अकरोत्। भारतीय नौसेना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे स्वीय षष्ठम प्रोजेक्ट 17A इत्यस्य अन्तर्गतं स्वदेशे निर्मितं युद्धपोतम INS महेन्द्रगिरिः F-38 इति पूर्वी नौसेना दले समावेशयिष्यति। अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अयं समारोहः भारतस्य रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। समावेशन समारोहस्य पूर्व संध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बड़ाखाना इत्येतस्मिन् भोजक कार्यक्रमे नौ सैनिकान् संबोधयन् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन। कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से। आवाज अजीज नाजान की है और सहयोगी स्वर है कंचन का।

लीजिए अब सुनिए रविंद्र जैन का लिखा भजन, इन्हीं के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है। फिल्म का नाम बद्रीनाथ धाम।

0: इसके साथ ही अब फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा समाचार।
1: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
2: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वर नाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
2: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी

0: पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1,283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकुआ अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में 3 विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा

0: गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकू अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में 4 लेन सड़क सहित 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान 4 लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
1: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
2: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन

0: सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं संदीप चक्रवर्ती का राग चारुकेशी में संतूर वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संदीप चक्रवर्ती का राग चारुकेशी में संतूर वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज कुमार श्रीवास्तव। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हम आपको याद दिला दें, युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 बजे युवा साथी सुनेंगे वार्ता, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव। वार्ताकार होंगी रितिशा ओझा। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात। इसके अंतर्गत डॉक्टर रंजन वाजपेयी से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा दांतों की आम समस्याएं एवं उनकी समुचित देखभाल।

शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा। इसमें सुनिएगा डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता, विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं

0: मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टिल्ड फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरि को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसमें आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन

0: करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन

0: को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन 5 MOUs इन की एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
2: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संगमिल करार दिया है जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदामात की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाजा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमाकारी के न्यूजीलैंड के अज़म को भी

0: उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इकतसादी शराकतदारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैन्युफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज़ रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए, ताकि तवील मुद्दती शराकतदारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तिराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इकतसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: जनाब मोदी, दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खत्ते में अमन व इस्तेकाम की बुनियादी जामिन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मेजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज़ दुश्मन के हथियारों को फ़ज़ा और ज़मीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खत्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खत्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी, उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखिला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटा बेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखिला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजव्वजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाज

0: اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا جس سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ بھارتی بحریہ آج شام وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت بحر ہند خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویب 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार प्रयागराज, आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। आप सुन रहे हैं हमें मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आज तारीख है 11 जुलाई और आज मनाया जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस। एक दिन 8 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी के नाम। तो चलिए आज बात करते हैं जनसंख्या समस्या और समाधान की। सबसे पहली बात ये कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी। उसी दिन को याद रखने के लिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया। आज 2026 में हम 8 अरब से भी आगे निकल चुके हैं और जनसंख्या के मामले में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये नहीं कि डर जाएं, इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि हर एक इंसान के साथ आती है जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है तो असंतुलन की। भाई, पानी, बिजली, जमीन सब लिमिटेड है। हर साल लाखों युवक नौकरी की लाइन में लगते हैं, सरकारी सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है, पर्यावरण असंतुलन बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा लोग, ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा कचरा। और सबसे बड़ी बात कि अगर परिवार छोटा होगा तो हर बच्चे को बेहतर परवरिश, बेहतर शिक्षा और भविष्य मिल पाएगा। तो फिर भैया समाधान क्या है? चिल्लाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस समझना है और समझाना है। क्या समझना है? सबसे पहली जरूरत

शिक्षा की, खासकर लड़कियों की शिक्षा। पढ़ी लिखी बेटी पूरे परिवार की सोच को बदल देती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जानकारी होनी चाहिए, शर्म नहीं बल्कि जागरूकता चाहिए। तीसरी बात, बेटा बेटी एक समान, लैंगिक समानता से ही संतुलन आएगा। संयुक्त राष्ट्र का इस साल का फोकस भी इसी बात पर है कि युवाओं को सशक्त बनाना है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। हमारे प्रयागराज से लेकर के छोटे छोटे गांवों तक हर पंचायत हर स्कूल में आज चर्चा हो रही है बस एक सवाल पर, क्या हम जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट नहीं करनी है, बल्कि संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि छोटा परिवार रखिए, बेटियों को पढ़ाइए, प्रकृति का ध्यान रखिए, क्योंकि जिम्मेदार आज बेहतर कल। आपकी क्या सोच है इस विषय पर हमें जरूर बताइएगा, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। और कार्यक्रम में अब ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

तो श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये गीत? यकीनन पसंद आया होगा, क्योंकि जब हम कोई गंभीर बातचीत कर रहे होते हैं उस समय उसको समझने पर हमारे माथे पर बल पड़ते हैं, उस समय संगीत हमारे मन को थोड़ा हल्का करता है, जिससे हम गंभीर बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में। आज हमारे पास युवा शक्ति है जो हमारी ताकत है, लेकिन साथ में चुनौतियां भी हैं। आज देखिए, हर जगह दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या की वजह से। सड़कों पर, रेलगाड़ियों पर कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पर। तो इन सबसे निपटने के लिए, बचने के लिए सरकार तो अपनी ओर से प्रयास कर रही है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए नए मार्ग स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारे पास उतने ही बच्चे हों, हमारा परिवार उतना ही बड़ा हो जिसका हम सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। क्योंकि यदि सही पालन पोषण नहीं होता तो फिर बच्चों में संस्कार भी नहीं आ पाते हैं, और वो जो हमारे साथ जो चुनौतियां हैं उनका वो सही तरीके से सामना नहीं कर पाते हैं। इस दिन का संदेश एक ही है, संतुलन का, परिवार नियोजन, बेटा बेटी में भेदभाव न करना, लड़कियों की शिक्षा। अगर आज हम जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर शपथ लें, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो शायद हमारी इन बातों को देर से समझेंगे, मुश्किल से समझेंगे, बहुत तर्क करेंगे, लेकिन जब उनको वर्तमान परिस्थितियों से, उनकी जीवन शैली से, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों से जोड़कर इस बात को समझाया जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण अब आवश्यक है, तो वो हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। और समझना समझाना ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि भले ही हमारे घर में दो बच्चे हैं और किसी घर में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन सब की वजह से भी दबाव हम पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए ये सामूहिक जिम्मेदारी है और सबको इस चीज पर समझना है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें इस बात को जरूर याद रखना है कि विकास तभी संभव है जब जनसंख्या संतुलित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता अगर है तभी बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जनसंख्या नियंत्रण से देश का विकास होता है। शिक्षित बेटी एक समृद्ध परिवार की संरचना करती है, और अगर हम आज जिम्मेदारी उठाएंगे तो हमारा कल बेहतर होगा। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, भाई दिन तो बहुत सारे आते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ विशेष होता है, लेकिन आवश्यकता ये है कि जब हम उस विषय पर चर्चा करते हैं तो उस पर अपनी जिम्मेदारी समझें, हम जागरूक हों, न कि उस दिन विशेष को मना करके, उस पर अपने विचार रख करके, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, हमें नित्य प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में इन्हें अपना करके रखना है, इन्हें अपने व्यवहार में लेकर के आना है, तभी इन दिनों को मनाने की सार्थकता होगी। फिलहाल नमस्कार प्रयागराज के आज के अंक के साथ दीजिए अपने रेडियो हम सुपर प्रेमेंद्र को अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुंदरम तिवारी। नमस्कार प्रयागराज।

कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म आर पार से, आवाज गीता दत्त की है। मजरूह के बोलों को सुरों में पिरोया है OP नैयर साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म नाजायज से। आवाज सोनू निगम की है, राहत इंदौरी के बोलों को सुरों में पिरोया है अन्नू मलिक साहब ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म मेरा साया से ये गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, राजा मेहंदी अली खान के बोलों को सुरों में पिरोया है मदन मोहन साहब ने।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
1: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये

0: है कि जो अरेंजमेंट्स लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या इसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
2: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
4: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
2: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरन सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था, स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्र

0: क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद सुरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आईआईएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो जो पिछले दिनों में एक सिस्टम था कि जो ऐसे अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूशंस
1: जी,
0: खोले और अच्छे, क्या
1: अपराध
0: समझें,
1: तालीम याफ्त।
0: नासा और सिलिकॉन वैली, ये सब यहाँ पे हिंदुस्तानी ज़्यादातर काम कर रहे
1: जी
0: हैं। वो
1: जी
0: टाइम को प्रॉपर ट्रेंड जो है वो मैन पावर
1: यूटिलाइज
0: को
1: करना।
0: हमें हमें क्रिएट करना पड़ेगा।
1: जी
0: अच्छा, अगर आप ये देखें कि फीमेल फर्टिलिटी रेट होती है
1: जी
0: जिससे पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज का अंदाज़ा हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: तो वो ब्रेक इवन टाइप, यानी जितनी आप जो है वो फर्टाइल एज में माएँ हैं या कपल्स हैं, वो उससे ज़्यादा जो है वो कर पैदावार है उनकी या नहीं है, तो ब्रेक इवन जो है 2.1 पे है। यानी जितनी पॉपुलेशन मेंटेन हम कर सकते हैं वो
1: जी
0: 2.1 पर है। तो अभी फिलहाल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन फीमेल फर्टिलिटी रेट 1.9 पहुंच गई है, यानी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इटली है सपोज
1: जी
0: करिए,
1: जी जी
0: या चाइना भी है, वो प्रमोट कर रहे हैं अपने
1: जी
0: यंग जनरेशन को कि
1: जी
0: शादी करें, बच्चे पैदा करें,
1: जी
0: क्योंकि
1: चाहिए वो मैन पावर
0: जी
1: चाहिए
0: मैन पावर
1: और
0: हमारे
1: यंग
0: ऐसे
1: पावर
0: लोग जा रहे हैं
1: चाहिए।
0: उनको सस्टेन करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन सस्टेन करने के लिए। पूरा कॉन्टिनेंट डाइंग है, पूरे पूरे विलेजेस खाली हो रहे हैं।
1: जी
0: अब फीमेल फर्टिलिटी रेट के बारे में बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो बीमारू स्टेट्स में है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
1: जी
0: बीमारू स्टेट्स। तो इसमें यूपी की 2.6 है, बिहार की 2.9 है। अब आप उसको देख लें और दूसरों को देखें, केरला 1.5, केरला इज 100% एजुकेटेड,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: 100%
0: जी।
1: एजुकेटेड है,
0: आप उसको ले लें,
1: बेहतरीन
0: कश्मीर
1: उनका
0: को,
1: तर्ज जिंदगी है।
0: जेएनके को ले लें 1.5, यानी
1: जी
0: नेशनल एवरेज से भी नीचे है।
1: जी
0: तो डिपेंड करता है कि हम ठीक है, हमारे वसाइल लिमिटेड है, हर कंट्री के वसाइल लिमिटेड है,
1: बिल्कुल
0: हमारे पास जो फर्टाइल लैंड्स हैं दे कैन सस्टेन, वो सस्टेन किया तभी आगे हैं।
1: जी
0: ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, तो ये सब चीज़ें हम जो पिछले दिनों में जो इम्पोर्ट करना पड़ता था, गेहूं और ये सब
1: जी
0: चीज़ें,
1: वो आज हम खुद पैदा कर रहे
0: अजनास,
1: हैं,
0: अब
1: हम
0: हम
1: हम
0: खुद पैदा
1: खुद
0: कर रहे
1: खुद
0: हैं।
1: का फी रहे
0: तो
1: हैं।
0: सवाल ये है कि अपनी यंग जनरेशन को प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहे हैं चाइना की तरह?
1: जी फजल भाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर वो अच्छे से ट्रेंड हो और सही सिमत में चले, तो हम भी बड़े ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो हुदूद व अरबा है अपने मुल्क का, और उसके अंदर पैदा होने वाली ग़ज़ाएँ हैं, जो अनाज है, क्या वो सब हमारी उस बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी है?
2: देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से जितने इदारे खोले जा रहे हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी हो रहे हैं।
1: जी
2: उसकी वजह यह है कि वो आप कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं कोई आईआईटी में चले जाइए, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको
1: जी
2: वहाँ वैसे फैसिलिटी मिले मिले, लेकिन तब मिले ना, जब वो जो है एक तबका जो दौलतमंद है वो तो
1: सब कुछ
2: फ़ायदा
1: हासिल कर
2: उठाता
1: रहा
2: है,
1: है।
2: लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से यह है कि उसी की वजह है कि मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। बकौल के 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं,
1: जी
2: तो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्या मकसद है? इतनी
1: उनको
2: बड़ी तादाद में फ्री अनाज दिया जाना, ये तो जो मुल्क के वसाइल हैं वो भी सब खत्म हो रहे हैं,
1: बिल्कुल, और लोग आदी हो रहे हैं फिर
2: आदि हो रहे
1: आराम
2: हैं सब।
1: तलबी के। डॉक्टर आजमी साहब, जिंदगी की बुनियादी तीन जरूरियात हैं, रोटी,
0: रोटी,
1: कपड़ा और
0: कपड़ा,
1: मकान। वो हमारे मुल्क की इस बढ़ती आबादी को किस हद तक मैसर है बआसानी?
0: ये हमारे मुल्क के हालात जो हैं उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि 50% कम से कम लोग ऐसे हैं अभी जो बेघर हैं
1: जी
0: और बहुत ही सतही जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास अपना कोई स्टेटस है, ना कोई मेयार है, ना कोई शऊर है। तो उस तरह की चीज़ों को देखकर लगता है कि सोसाइटी अभी हमारी बहुत ही अनकल्चर्ड बिल्कुल फील हो रही है।
1: जी
0: अगर वही एक एजुकेशन हो जाए उनके अंदर, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए, तो शायद वो और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि मुल्क क्या है, तरक्की किसे कहते हैं, आबादी किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसको समझने का शऊर ही नहीं है। अगर ये तालीम और तालीमी बेदारी आ जाए लोगों में, तो शायद ये पता चले कि

0: ज़िंदगी किसका नाम है, क्या सबसे पहले कपड़ा ज़रूरी है कि पहले मकान ज़रूरी है, पहले रोटी ज़रूरी है। और ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोटी तो मिल गई किसी तरह से, तो कपड़े नहीं मिले, कपड़ा मिला तो मकान नहीं मिला,
1: जी
0: तो वो कहीं ना कहीं कमी है। और जिस रेशियो में आबादी बढ़ रही है, वसाइल तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो दिक्कतें हैं आज और ऐसी होती रही। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया, शायद आने वाले दिनों में फुटपाथ वाली ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ्लैट की ज़िंदगी कम हो जाएगी। अच्छा, पॉल्यूशन का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, गुर्बत का बढ़ना, ये तमाम मसाइल जो हैं वो सब बेरोज़गारी और इससे आपके यहाँ बढ़ती हुई
1: तालीम के
0: आबादी से
1: पीछे।
0: ताल्लुक़ रखते हैं।
1: जी
0: अगर आपने उसको सेल्फ कंट्रोल कर लिया, तो शायद धीरे धीरे हालात सबके बन जाएं और सब बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक थिंकर ने कहा था कि हमारे जो वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4 के रेशो से बढ़ते हैं, जबकि आबादी जो है वो 2, 4, 6, 8, 12 के रेशो से बढ़ती है। तो हमारे मुल्क में जो तेजी से आबादी बढ़ रही है वसाइल के मुकाबले में, उसकी वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है?
2: देखिए, ये फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, ये एक पॉइंट या दो पॉइंट का सिस्टम नहीं होता है कि आप एक लाइन पे चलें पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ये एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है।
1: जी
2: यानी इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्ची की पढ़ाई,
1: जी
2: यानी माँ की पढ़ाई, पढ़ी लिखी हो।
3: जी जी
2: आप देखेंगे कि जो बगैर पढ़े लिखे फैमिली हैं उनमें बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, और जो
1: बिल्कुल
2: पढ़े लिखे माँ है वो एक दो से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, या
3: जी
2: दो तीन। दूसरी बात यह है कि उसको सोशल सिक्योरिटी हो। सोशल
1: जी
2: सिक्योरिटी में पढ़ाई भी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है,
1: आसानी से वो सब कुछ कर सकती।
2: एम्प्लॉयमेंट।
1: जी
2: तीसरी चीज़ हेल्थ है, यानी
3: जी
2: उसको मालूम होना चाहिए उस फैमिली को कि मेरे पास दो बच्चे हैं तो वो जवानी तक पहुंच जाएंगे, और अब हेल्थ
0: जहां
2: इश्यूज।
0: तक पहुंच सकता।
2: उसके बाद एक सिक्योरिटी का भी मसला है।
1: जी बिल्कुल
2: जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में नहीं होगा प्रॉपर,
3: जी
2: तो डर और खौफ का जो माहौल है,
1: जी जी जी
2: वो डर और खौफ से जो दबे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करने। आप गांव में चले जाइए, जिसका बड़ा खानदान होता है वो ज़्यादा हावी होता है।
1: हावी
2: जी
1: हो जाता है। जी जी
3: जी
1: बेशक
2: आप प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिएगा,
3: जी
2: अगर
3: जी जी जी
1: तादाद पर मुनहसर करता
2: तादाद
1: है।
2: पर मुनहसर होता है,
1: जी
2: तो वहां पर जो ताकत है या प्रधानी का सपोज करिए या किसी और चीजें जो है, वो ये सोचता है जो कमजोर आदमी है या बगैर पढ़े लिखे फैमिली है, वो ये सोचता है कि मेरे तो हाथ पैदा हो रहा है।
3: जी
2: मान लीजिए वो आदमी जो है वो साइकिल के पंक्चर तोड़ रहा है, तो वो दो वो चाहिए उसको हाथ, तो वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा मेरी जगह ले ले,
3: जी
2: दूसरा बच्चा
3: जी
2: दूसरे काम पे लग जाए
3: जी जी
2: या मजदूरी करने लगे।
0: लेबर
2: तो
0: प्रोडक्ट
1: उनकी सोच ये है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी
0: उतनी
1: ज्यादा हमारे
0: सुविधा।
1: माशी
2: तो ये
1: हालात बेहतर।
2: गवर्नमेंट को
1: जी
2: ये कम्प्रिहेंसिव पैकेज देना पड़ेगा आपको।
1: जी बिल्कुल
2: एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगी,
0: मेडिकल
2: हेल्थ
0: इंप्रूव
2: इंप्रूव
0: करना।
2: करना पड़ेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का ध्यान करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना पड़ेगा, सोशल
1: और
2: मतलब
1: इन सब
2: सिक्योरिटी
1: चीजों को
2: को।
1: इतना आसान करना पड़ेगा कि हर बंदे तक वो बआसानी पहुंच सके,
2: जी,
1: हर एक
2: एजुकेशन
1: उसका फायदा उठा सके।
2: एजुकेशन
1: अभी
2: सबसे आगे
1: आपने
2: है
1: एक बात
2: पॉपुलेशन
1: कही सिक्योरिटी
2: प्लस वैल्यू।
1: के नजरिए से, तो उसी की वजह है शायद कि हमारे मुल्क में कम उम्र की शादियों का भी चलन बढ़ता जा रहा है,
0: बिल्कुल बहुत
1: हालात को
0: बहुत
1: देखते हुए कि जल्दी बच्ची को अपने घर का कर दो ताकि हम इसकी जिम्मेदारी से सुपुर्दोश हो सकें।
2: जी एजुकेशन जब तक हम इम्प्रूव नहीं
3: जी
2: करेंगे,
3: जी तब तो कुछ
2: बिल्कुल
3: नहीं होगा।
2: सिक्योरिटी नहीं दे।
1: माँ बाप इस चीज से डरते हैं कि हम कब तक बच्ची की हिफाजत करेंगे, किस तरह उसे बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजें, किस तरह उसको कहीं हम जॉब के लिए भेजें, उससे बेहतर है इसे जल्द से जल्द अपने घर का कर दूं।
3: नहीं, ये तो खैर सोच है ही, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं। सियासत असल में इन्वॉल्व है यहाँ,
1: जी
3: कानून के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर। अगर ये सब अलहदा हो जाए और कोई किसी ने पुलिस को आज़ादाना वो कार्रवाई की देते हैं, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सब हर आदमी अपने आप को तहफ़ महसूस करेगा। लेकिन तहफ़ किस लिए नहीं है कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी आबादी जैसी बढ़ेगी, जैसे एक गाँव है वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है एक फिर एक ख़ानदान की,
1: जी
3: वो हावी होता। इसी के लिए यहाँ भी यही है कि वो तहफ़ नहीं मिल पा रहा है
1: जी
3: जो हमारी बच्ची हैं। इसलिए हर आदमी खौफज़दा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखूं।
1: डॉक्टर साहब, आप तिब्बी मैदान से जुड़े हुए हैं, इस सिलसिले में शरह अमवात जो कम हुई है नई दवाओं के जरिए, क्या वो भी हमारी बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? जैसे पहले होता था कि बहुत तरह की वबाएं फैलती थी, बीमारियां फैलती थी और बस्ती की बस्ती खत्म हो जाती थी, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो जाते थे। अब हमारी दवाओं ने, हमारे नए नए टीकों ने इस तरह कंट्रोल कर लिया है उन चीज़ों पर, तो क्या वो भी जिम्मेदार है कहीं?
2: देखिए, ये तो एक मुल्क का या एक सोसाइटी का या एक सिविलाइजेशन का एक तरीक़ाकार होता है।

0: जी
1: वैसे ही टेक्नोलॉजिकल आजकल एडवांसमेंट्स कह लीजिए आप, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या हेल्थ में एडवांसमेंट्स या ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड की डेथ के रेट है आप
0: जी
1: जो
0: श्रेय
1: जिस
0: हम बात
1: जी
0: कम
1: तो वो ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये इट इज़ ए इंडिकेटर दैट आवर हेल्थ सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली,
0: जी
1: यानी हमारा हेल्थ सिस्टम सही है, उसमें गिरावट आ रही है और गिरावट फीमेल फर्टिलिटी में भी आ रही है। तो इसकी ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि हमारे बच्चे ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं या ज़्यादा एडल्ट एज को पहुँच रहे हैं। ये चीज़ को हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है और उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं।
0: जी
1: आबादी जो बढ़ रही है रोज़ अफ़ उसको हमें कंट्रोल करना है।
0: उसमें इजाफे को रोकना है
1: हाँ, अब
0: जो
1: इजाफे का क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अभी ये कानून बनाने की बात हो रही थी कि साहब जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो उसको टिकट नहीं मिलेगा या वो एम
0: सरकारी
1: नहीं हो
0: नौकरियों
1: सकता
0: में
1: है,
0: नहीं आएगा।
1: सरकारी
0: जी
1: नौकरी नहीं
0: हाँ
1: मिल सकती। तो
0: डॉक्टर आज़मी साहब, ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आबादी को हम कंट्रोल करें, उसमें इजाफे की तरफ तवज्जो दें, तो उसके लिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ हुकूमत की ही हैं या आवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क को बेहतर वसाइल देने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा या हुकूमत ही इसके लिए कोई ऐसा सख्त कदम उठाए?
1: नहीं, इसमें तो दोनों को सोचना पड़ेगा। एक तरफ एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी कि अगर
0: जी
1: आपने इन चीज़ों को इख्तियार किया तो ये जो नुकसान हो सकते हैं उसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस पब्लिक के अंदर लानी पड़ेगी।
0: जी
1: और हम खुद एक ज़िम्मेदार शहरी अगर हैं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन या हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल कैसे बने।
0: जी
1: खुशहाल बनने के लिए वसाइल का बढ़ना, आबादी का घटना, कम होना, मतलब ये
0: जी
1: दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों रेशियो बराबर चलते हैं तो एक खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल अपने
0: बिल्कुल
1: मुल्क का बना सकते हैं। ये दोनों की ज़रूरत है कि दोनों अपनी अपनी पॉलिसी बनाएं और एक पढ़ा लिखा इंसान और सोचे कि हम हमारी
0: हमारी
1: ज़िम्मेदारी
0: क्या
1: क्या होती है।
0: जिम्मेदारी है। बिल्कुल
1: अगर वो ज़िम्मेदारी निभाता है तो कामयाब है और नहीं निभाता है तो सब के सब नाकाम होगा।
0: तो हमारा जो आज का ये मुबाहिसा था, तबादला ख्याल था, इसका लुबलुबाव यही निकलता है कि जो बढ़ती आबादी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं इसलिए कि हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, हमें अपने बच्चों को आबाद करने के लिए घर बनाने हैं, पेड़ कट रहे हैं लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, जिसकी वजह से हमारा जंगली जो जिंदगी है, जंगली जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, जिससे फिजाई आलूदगी, तरह तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं, जंगली जानवर बस्तियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
1: इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा
0: जी
1: है।
0: हाँ, खेती की जमीन कम होती जा रही है। कहना बेजाना होगा कि एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वसत में खो गया। तो इन हालात को देखते हुए हम हर हिंदुस्तानी, बल्कि दुनिया के हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हम उतनी ही आबादी अपने घर की, अपने खानदान की बढ़ाएं जिसे हम बेहतर वसाइल मुहैया करा सकें और जिसे बेहतर तालीम के साथ हम अपने मुल्क के लिए मुस्बत सोच वाला शहरी बना सकें,
1: बिल्कुल
0: ताकि वो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को एक आइडियल मुल्क, एक आइडियल शहर बना सके और हम तरक्की की दौर में दूसरे ममालिक से आगे निकल सकें। तो सामीन, अभी हमने बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी इस मौजू पर तबादला ख्याल किया, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे मधु किए हुए जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए थे, एक बार फिर उनके बारे में आपको बता दें, हमारे साथ थे डॉक्टर इश्तियाक आलम आज़मी साहब, डॉक्टर महमूद अली खान साहब और जनाब फजल शाह फजल साहब। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस अहम मौजू पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आप रामपुर मरकज़ पर तैयार आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को इजाज़त दें। अलविदा। आकाशवाणी के लखनऊ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस

0: बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं पामेला नंदी। इनके स्वर में लीजिए सुनिए तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना।

अभी आपने सीतीश आलोक की रचना सुनी पामेला नंदी के स्वर में। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारे

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू

0: कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए विकास श्रीवास्तव के स्वर में ये गंगा गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। हमारे अगली कलाकार हैं विनीता तिवारी। इनके सुर में लीजिए सुनिए ये देवी गीत।

0: लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे विकास श्रीवास्तव और विनीता कुमारी तिवारी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे संग्रहालय से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री रघुनाथ सेठ से केशव चंद्र वर्मा की भेंटवार्ता।
1: आज इलाहाबाद स्टूडियो के लिए ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे चिर परिचित और इस स्टेशन पर काफ़ी दिनों रहे हुए हमारे घनिष्ठ मित्र और संगीतज्ञ श्री रघुनाथ सेठ यहाँ पधारे हैं और हम आज उनसे उनकी जो बीते दिनों की यादें हैं ख़ास तौर से इलाहाबाद रेडियो के प्रसंग में उसकी चर्चा करना चाहते हैं और अपने श्रोताओं के साथ उस आनंद को बांटना भी चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी इस रेडियो में काम किए हुए 35 साल हो गए और कई प्रोड्यूसर्स को हमारे सामने मैंने देखा म्यूज़िक के आते हैं और जाते हैं और वो लोग भी अपने क्षेत्र के गुणी लोग थे, लेकिन रघुनाथ सेठ जी के आने पर जो एक नया माहौल पैदा हुआ रेडियो के कार्यक्रमों में वो दुर्लभ था। इस माने में भी कि पहले भी नहीं हुआ, इस माने में अभूतपूर्व था और बाद में भी मुझे कहने में थोड़ा संकोच है लेकिन बाद में भी वो स्तर हम ला नहीं पाए। लेकिन आज चूँकि रघुनाथ जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं और बम्बई से किसी तरह निकल पाए हैं तो मैं उनसे कुछ दो चार सवाल, कुछ दो चार बातें ऐसा ज़रूर चाहता हूँ कि हो जाएं कि जिनसे कुछ आगे का प्रकाश मिले, कुछ पिछली बातों की याद हो। तो रघुनाथ जी ये बताइए कि जब आप लखनऊ से इलाहाबाद आए तो आपको पहले पहल कैसा लगा?
2: अब पहली बात तो ये कि मैं लखनऊ से इलाहाबाद नहीं आया था, मैं दिल्ली से इलाहाबाद आया था।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा कोई नहीं।
2: अच्छा दूसरी बात ये कि जब आने के पश्चात मैं तो इतने इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच में आया जहाँ इलाचंद जोशी जी और सुमित्रानंद पंत जैसे बड़े बड़े साहित्यकार मौजूद थे और उनके पास आना था तो मुझे अंदर से बहुत इस बात का संकोच था कि मैं क्या कुछ करूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत मन में बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ
2: और ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं कि अच्छा ही लगता गया और मुझे नए नए काम करने का और सोचने का मौका मिला, तो उसमें आपका भी योगदान है और बाकी लोगों का तो है ही है।
1: नहीं ठीक है, वो तो आपने आते के साथ ही काफ़ी कुछ एक जो संगीत के हमारे जिनको हम कहते हैं कि रोज़मर्रा वाले प्रोग्राम यानी रूटीन प्रोग्राम जिनको कहते हैं उनमें भी एक बदलाव लोगों ने नोटिस किया।
2: उसका सबसे पहला कारण ये था कि मुझे संगीत के में ट्यून बनाने की बहुत रुचि रहती थी और मैं चाहता था जो एक जो भी कलाकार यहाँ से ब्रॉडकास्ट करे वो एक अच्छे ढंग से करे और उसका एक स्तर हो, इसलिए मैंने स्वयं इस बात को ट्यून बना करके और उसको देने के लिए और उसको रिहर्सल कराने के लिए अथक परिश्रम किया। जहाँ तक होता था मैं देख लेता था कि जब ठीक हो जाए आइटम तभी रिकॉर्ड करता था और उसके म्यूज़िक ठीक से बन जाए, उसका बैलेंसिंग ठीक से हो और एक स्तर का कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें मैंने बहुत कोशिश की और ये अच्छी बात है कि आप लोगों को अभी भी ये बात याद है। और
1: नहीं वो देखिए अकारण वो तमाम तुलनाएं हो जाती हैं, तुलना करना कोई उद्देश्य नहीं होता है नहीं, लेकिन हो ही जाती है क्योंकि पहले की चीज़ें बाद की चीज़ें।
2: इसका कारण ये भी था कि हम लोग सवेरे से शाम तक रात तक इस बात की चिंता नहीं करते थे कि और क्या काम करना है, केवल यही काम करना है, बस यही जानते थे और करते रहते थे, उसमें ये नहीं सोचते थे कि हमारा क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कुछ
1: नहीं,
2: काम करना है, अच्छे ढंग से काम करना है, इस कारण ऐसा।
1: नहीं मैं तो सबका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है।
2: उस काल में ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे बी क्लास आर्टिस्ट यहाँ के इलाहाबाद के जो बी क्लास आर्टिस्ट थे उनके भी इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम भेजे जाते थे यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन सर्विस में और वहाँ से दिल्ली से सब बजते थे तो लोगों को आश्चर्य होता था, पूछते थे कि अरे ये बी क्लास आर्टिस्ट हैं, इनका तो गाना एक के जैसा है, तो वो उनको तो पता नहीं होता था कि इसके पीछे कितनी मेहनत की हुई है।

0: पर होता था, वो अच्छा लगता था, बहुत होता था वैसा कई बार
1: सब।
0: ऐसे।
1: हाँ
0: जैसे आप ये सोचिए, आपका जो एक बार का मुझे याद है कि मैंने जिया लाल वसंत का एक गाना ब्रॉडकास्ट कर दिया,
1: हाँ
0: तो यहाँ जो ऐसी गोष्ठी जो डेली मीटिंग होती है या
1: हाँ
0: मंथली मीटिंग जिसमें
1: हाँ
0: सुमित्रानंद पंत जी
1: रोज रोज
0: भी
1: रोज
0: एडवाइजरी
1: हाँ
0: बोर्ड में थे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उन्होंने या फ़ोन किया या कुछ कहला के भेजा कि आप ऐसी स्थान में जहाँ महादेवी वर्मा जैसी कवित्री हैं वहाँ पर जिया लाल वसंत का गीत गाया
1: हाँ
0: जाएगा।
1: हाँ ये तो सही है।
0: तो हमें इतनी अंदर से दुख लगा, तो बुलाया गया मुझे, तो जवाब तलब किया गया। तो मैंने इस बात पे बहस भी की कि भाई सिर्फ इसलिए ब्रॉडकास्ट किया गया कि गाना उसकी शब्दावली, शब्दों का चयन जो था वो बहुत सरल था, इस कारण ऐसा किया। तो उनका कि आप और क्या कर सकते हैं, जो अच्छा अच्छा यहाँ पर आपको और अच्छा करना चाहिए। तो फिर आपसे ही बात हुई थी, आप बताइए खुद ही उसको कि क्या बात हुई थी आगे
1: हाँ नहीं,
0: आप।
1: वो तो सब बातें हुई ही, उसके फलस्वरूप एक प्रसार संगीत का एक बड़ा भारी कलेक्शन भी किया गया कि इसमें क्या क्या गाया जाएगा, गेय कितना है और अज्ञेय
0: नहीं,
1: कितना
0: वो तो
1: है।
0: ये था कि जब पंत जी ने कहा कि आपके संगीत में क्या शक्ति है
1: हाँ
0: और आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा मेरे संगीत में तो इतनी शक्ति है कि आप मुझे न्यूज़पेपर दीजिए, उसका भी मैं ट्यून कर दूंगा, ट्यून बना दूंगा। मैंने कहा फिर आप ऐसे बड़े कवियों का क्यों नहीं करते। तो
1: ठीक
0: निराला
1: है।
0: जी का फिर आपने
1: हाँ
0: किया
1: वो इसलिए किया,
0: और
1: वो तो अभी मैं उसकी चर्चा करता हूँ। पहले ये बताइए आप कि जैसे आपने कई तरह से काम किए उस समय, जो मतलब मेरे दिमाग में अटक गया है कि जैसे ये जो गीत आपने बताए, गीतों का उसकी धुन बनाना और उसको करना, इसी तरह से भक्ति संगीत का भी आपने बहुत ही एक प्रणव का वो
0: प्रणव
1: गाना,
0: का
1: हाँ
0: सुनिए नाथ गरीब
1: सुनिए
0: निवाज,
1: नाथ गरीब निवाज, आज
0: उसकी
1: भी जब बजता है तो लोग सिर्फ प्रणव की तो याद करते ही हैं, आपकी भी याद होती
0: उसकी
1: है।
0: उसका
1: तमाम
0: भी
1: लोगों के बीच में मैंने उसको सुना है, वो उस गाने का कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कविता का, काव्य का और संगीत का कैसा मिश्रण हो कि जिससे शब्द की जो शक्ति है वो बहुत उभर के आए, और उसी तरह से संगीत की भी क्षति न हो कि संगीत भी मारा न जाए और कवि, अरे जो कविता है वो उसको और उभार दे। तो ये जो आपने ने मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत ही प्रयोजन से इसको किया या आपकी प्रकृति में ही है ये कि इस तरह से आपने इसको किया, इसके पीछे क्या आपके दिमाग में कोई प्लानिंग रहती थी या कि स्वतः हो जाता था?
0: किशोर जी, स्वतः होता है वो तो एक प्रकृति अलग से होती है, वो अपने आप में एक फैकल्टी होती है जो डेवलप्ड होती है, तो ट्यून अपने आप बनती जाती है, अलग अलग विचार आते जाते हैं शब्दों के माध्यम से, शब्द भी सोचते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा विषय ज़रूरी जो है वो ये है कि जो संगीतज्ञ है उसको शब्दों के अर्थ के बारे में भी पता होना चाहिए
1: हाँ
0: और साहित्य के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हो सकता है। ऑथर ने, पोएट ने, कवि ने किस छंद में लिखा हुआ है, उसमें कहाँ दीर्घ है, कहाँ ह्रस्व है, उस मर्यादा को रखते हुए अपने जो भी भाव शब्दों के हैं, जैसे भक्ति भाव भक्ति गीत है तो भक्ति का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से अनुरूप जितने राग हैं उनकी सी उनकी जो गति है, स्लो है शब्द है
1: हाँ
0: या फास्ट है, तो उस हिसाब से सोच के बनाते हुए अगर आप उसकी धुन बनाएंगे तो वो अपने आप उसमें भाव उभर करके आ जाता है, जो कि बहुत
1: हाँ
0: ज़रूरी
1: तो
0: है।
1: ये जो आप कह रहे हो ये ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये समझ जब नहीं होती है तो जैसे आपने अभी कहा ना कि ह्रस्व और दीर्घ का फर्क नहीं अगर पता चलता है तो इसमें बड़े अनाचार होने लगते हैं और गायक को पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, और कवि बेचारा तो वहाँ होता ही नहीं जो ये कहे कि ये गलत है या सही है। तो लेकिन आपके जैसे लोग जब जहाँ रहते हैं तो ये एक आश्वासन, आपके जितने कंपोजिशन हुए, जितनी चीज़ें सामने आई, अधिकांश मुझे जैसे कुछ चीज़ें याद रह गई हैं कि अब आप जब बाजा वाजा होता तो मैं
0: हाँ
1: कहता कि आप
0: मैं वो
1: उसको सुना
0: दूसरे,
1: दीजिए कि
0: हाँ
1: धीरे धीरे डोले कदम
0: कदम
1: पतिया।
0: पतियां धीरे धीरे,
1: अब
0: अब
1: क्या उसमें धीरे धीरे और पतिया ये दोनों ऐसे उभर के आए थे कि मैं क्या बताऊं, आज भी वो कानों में गूंजते रहते हैं।

0: या सावन मास,
1: देखिए हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है,
0: सावन मास पिया परदेसवा पापी जिया घबराए, ये हमारे बहुत मशहूर है का लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको ऐसा बना दिया कि वो तो लोकगीतों के रूप में प्रचलित ही सब जगह हो गया। उसी तरह से कई और मैं आपको कंगन रुंझुन
1: केशव जी ये बात छोड़ी यहाँ तक है, ये बात मुझे एक और बात याद आ रही, यहाँ का हरी राम द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक सूरजमुख ना जाइबे, उसको तो शोभा गुल्टू ने उसको पारंपरिक कह के गाना शुरू कर दिया, और यहाँ का गीत है, यहाँ का प्रोड्यूस किया हुआ गीत है वो, और अब लोकगीत में भी सम्मिलित हो गया, वो बात अलग है, लेकिन वो पुराना गीत है करके इस तरह से खैर वो बात
0: नहीं। आपने एक और कार्य जो किया था जिसकी तरफ बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने शायद एक बार बहुत ही कोशिश करके आपको, चूंकि मैं ग्रामीण कार्यक्रम देखता था तो एक बार आपको मैंने विंध्य एरिया का पूरा घुमाया
1: था
0: कि आप उसमें से निकाल के लाइए और वो बुंदेलखंडी लोकगीतों पर आधारित कुछ एक प्रोग्राम किया जाए,
1: बहुत अच्छा
0: तो वो आपने कितना उस पर तमाम और
1: बुंदेलखंड की बहुत सी लोग
0: कितने लोग
1: धुने लाए थे और उसमें ईश्वरी की फागे थी, उसमें
0: बहुत
1: कितना कितना था, बहुत कुछ था,
0: तो
1: आप ठीक याद दिलाया
0: ये उसका। हाँ मैंने इसलिए मुझे याद है क्योंकि उसका फिर हम लोगों ने बड़ा उपयोग किया,
1: कितने गाने
0: आज तक किया, और एक वो थी उसकी फागे थी, होली थे,
1: होली फागे,
0: ये सब जो नंदलाला मारे जाए केसर के फुलवा,
1: केसर के
0: कैसा वो इतना चला है, इतने कंसर्टों में गाया गया।
1: तो यही नहीं, मैंने तो इसका फिल्म में भी प्रयोग किया था जाके बॉम्बे।
0: हाँ मैंने सुना तो बुंदेलखंडी लोकगीतों का प्रयोग और उनकी धुनों का प्रयोग आपने
1: यहाँ का, यहाँ की इतनी सामग्री जो मैंने इकट्ठी की तो उसका फायदा मैंने भी उठाया, मैं बॉम्बे जाकर के
0: देखिए कि कोई भी प्रोड्यूसर हवा में कोई चीज पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए, जो पृष्ठभूमि चाहिए कि आप कहाँ से अर्जित करते हैं तब लोगों को देते हैं, यही
1: कोश तो होनी चाहिए,
0: कला में यही है,
1: अपना कोश होना चाहिए, ये तो सही
0: तो
1: है ना।
0: वो जो आपने अपना बटोरा सामग्री जितनी बटोरी
1: यहाँ से बहुत बटोरी
0: तो
1: इसमें कोई संदेह नहीं,
0: यहाँ से भी बटोरी बहुत,
1: कितनी कितनी लोग धुने मैंने सीखी यहाँ से, जिसके मैंने कल बजाई भी दो तीन बज, गेरे गेरे आई सावन की बदरिया, क्या वो जो रसे रसे पौआ धरो मुरी गोरी, ये कितनी इस तरह की मिर्जापुर की कजरी, यहाँ की कजरियाँ सब अलग अलग बहुत से ढंग सब यहाँ से सीखी।
0: हाँ तो मैंने
1: और उनका उपयोग भी किया वहाँ जाकर,
0: सामग्री आपके पास बहुत थी और आपने खूब बटोरा,
1: और फिर ये भी कि उसकी कोशिश करके उसको नए रूप से यहाँ भी प्रस्तुत करता रहता था।
0: हाँ।
1: जैसे आप बोल रहे हैं कि सावन मास पिया परदेश में, उसका भी तो यहीं के लोग,
0: यहीं के लोग
1: उनके उसके लोकगीतों पर आधारित,
0: इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक ये विशेषता है रघुनाथ सेठ के संगीत के जो कंपोजिशन है, उसका जो उसकी धुन बनाई गई है, उसमें अगर आप गहराई में जाएं, हमारे श्रोता जाते होंगे तो उनको फौरन पता चलता होगा कि इसका बेस कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, और वो मूल को कितना परिष्कृत करके, कितना साफ करके, कितना अच्छा करके ये रखा गया है। ये तो
1: अब आप ही याद कीजिए केशव जी, जब बादल राग आपने हमको बताया है कि ये करना है, तो मैं पहले आपके पास 20 दिन तो उसका अर्थ समझने के लिए आया था कि इसका हमको एक एक लाइन का अर्थ समझाइए आप, तो बैठ के हम लोग निराला जी के जितनी कविता थी उनके जो जो गाना था, जो जो करना था मुझे कंपोज, उसका मैंने पहले अर्थ समझा आपसे 20 दिन
0: इस,
1: तब फिर मैंने किया
0: इस प्रोडक्ट। हाँ सही कह रहे हैं,
1: तभी वो इतना अब आज तक याद किया जाता है। हाँ, सब
0: उस प्रोडक्शन का तो एक इतिहास हो गया, क्योंकि वैसा प्रोडक्शन ना तो फिर मैं बाद में कोई कर सका, और ना वैसा कोई व्यक्ति ही मुझे मिला जो मेरे साथ पूरी तरह से अपनी प्रतिक्रिया क्रिया दोनों देता। तो नतीजा ये हुआ कि जैसा आप कह रहे हैं कि आपके साथ इतना मैंने पहले समय लगाया कि निराला जी को भाई समझ लो, ये कह रहे हैं बादल राग में, और ये बादल संबंधी उनकी तमाम जो अच्छी कविताएं थी, बढ़िया कविताएं,
1: बादल छाए ये मेरे अपने सपने आंखों से मन रहा है, ये इतनी पुरानी फ्री वर्स, किसी ने फ्री वर्स में गाना बनाया ही नहीं था उस समय तक,
0: आपका
1: हमने यहाँ किया,
0: आपका वो जो गाना है क्या नाम, बादल छाए वही,
1: हाँ, वही
0: इतनी चुनी अदकली खिली,
1: यमन मान सिंह का गाया
0: उसके
1: हुआ,
0: साथ साथ, साथ जो ओ विप्लव के बादल, जब मैंने आपसे कहा था कि ये भी करियर करना है, तो आपने तो मुझसे यही कहा था कि ये तो बिल्कुल फ्री वर्स है, इसमें तो कहीं कोई छंद वंद मुझे नहीं लग रहा, तो फिर हम लोग बैठ करके उस पर काम करते रहे कि किसी तरह से
1: उसमें रिदम ढूंढा है।

0: ढूंढी
1: ओ
0: उसको।
1: विप्लव के बादल, तो
0: तो
1: हाँ तो तुझे बुलाता
0: या
1: कृषक अधीर। तो ये सब चीजें जितनी आई हैं ये ऐसे ही, ऐसे ही नहीं आ गई।
0: सब
1: तो
0: कोई
1: वह
0: समझा।
1: आप ये बताइए, ये बताइए कि आपको जो आपके साथी लोग थे उन्होंने कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया की?
0: उनको तो मतलब हर तरह से कहना चाहिए कि हम जितने हमारे गाने वाले लोग थे उन्होंने हमको कभी भी ये नहीं सोचा कि उनको किसी किस्म की लिमिटेशन है समय की या हमको फॉलो ना करने की। कोई भी उन्होंने कहीं हमको पूरी तरह से साथ दिया, जिसमें यमन मानसिंह थी, ये दीपश्री मोहन थी जो दीपश्री गोस्वामी थी उस समय, डॉली बनर्जी, आरती चैटर्जी, ये सब आर्टिस्ट थे उसमें, प्रणव मुखर्जी, बी एन विश्वास, मीरा गुलवाड़ी, और कुछ के नाम भी भूल भी गए होंगे हो सकता है, लेकिन सबने मुझे एक साथ इतना साथ दिया और दिन और रात उसको करके करके हम लोगों ने ऐसा प्रोड्यूस किया था और बहुत ही अच्छा हुआ था। और रागों पे आधारित वो दीपक चटर्जी भी था एक, उस कितने रागों का प्रयोग किया इसमें, मल्हार का, कितने मल्हार का उसमें प्रयोग किया, कितने फोक म्यूजिक का प्रयोग किया, तो तब जा करके ये चीज़ बनी थी। और इसके अलावा मैं बोलूँगा एक और कि एक एक उन दिनों जिस दिन यहाँ पर मैंने जो जिस गाने की आप बात कर रहे हैं, धीरे धीरे डोले कदम पतियाँ, इस गाने में क्या था कि ए वन वॉइस कोरस किया था मैंने। वन वॉइस मतलब कि उस समय जब ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब खाली एक ही लिख के ऊपर एक ही ट्रैक की रिकॉर्डिंग होती थी, तो एक कलाकार से मैंने पूरा कोरस तैयार किया था एक सुपर इम्पोज करके। उसी समय वो आलाप भी चल रही है, गीत भी चल रहा है, शब्द भी हो रहा है और तान भी आ रही है, तो इस तरह से एक कल्पना ऐसी की थी कि और उसमें एक बहुत ही सिद्धहस्त गायक गायिका की आवश्यकता थी,
1: वाह।
0: तो वो यमन मानसिंह ने पूरा किया था। मैं अभी भी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि उसने इतना अच्छा गाया था कि मुझे अभी तक याद है कि कहीं भी उसने कहीं कोई कच्चा स्वर नहीं लगाया और हमारी जो अपेक्षा थी उसको हर तरह से पूरा किया उसने। और वो गाना बहुत ही उभर के आया था जिसको आप अभी
1: और
0: याद
1: ये
0: दिला रहे थे।
1: हाँ, और ये तब कि जब रिकॉर्डिंग मशीन ऐसे हुआ
0: ट्रैक रिकॉर्डिंग
1: करती,
0: नहीं हुआ करती थी, एक ही
1: कोई
0: एक समय में एक ही रिकॉर्डिंग, एक
1: कोई
0: ही
1: हाथ से चला चला करके आप रिकॉर्डिंग करते
0: रिकॉर्डिंग
1: थे
0: करते थे।
1: टेप।
0: वो तीन तीन टेप रिकॉर्डर रख करके एक
1: हाँ
0: दूसरे से कनेक्ट करके पहले एक रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके दो जगह से इन दे दिया उसमें, और उसको एक तो रिकॉर्डेड साउंड डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से आर्टिस्ट को बोल रहे हैं इसके ऊपर तुम गाओ,
1: हाँ
0: तो फिर से उसने गाना शुरू किया।
1: ये सब देखने के बाद लोगों को बड़ा अचंभा लगता था, क्योंकि
0: समझ
1: इंजीनियर लोग भी उसको समझ नहीं
0: नहीं
1: पाते
0: पाते
1: थे
0: थे कि
1: कि
0: क्या हो
1: ये
0: रहा है।
1: प्रोड्यूसर हो करके ये सब क्या धन फंद करते हैं। लेकिन उसका असर कैसा पड़ता था, प्रभाव, ये देखिए।
0: सही बात है वो।
1: तो इसलिए क्योंकि अभी भी मुझे आपके दो तीन आर्टिस्ट जो इधर उधर मिल जाते हैं तो वो मुझसे यही कहते हैं, किसी ने मुझे पहचाना कभी स्टेज पर, कहीं मैं कुछ पढ़ रहा था तो आए कहने लगे, भाई आपने मुझे पहचाना ना होगा पर मुझे तो आपने बादल राग सिखाया था, समझाया था रघुनाथ जी के प्रोडक्शन में। तो हमने कहा हाँ, मुझे याद आ गया। तो वो लोगों के दिमाग में रच बस गया, ये बात बड़ी भारी होती है।
0: और भी हम लोगों ने कितने काम किए हैं यहाँ पर, जैसे रेयर रागों का कलेक्शन किया था यहाँ पे, पता नहीं अभी इस समय है या नहीं, अलाउद्दीन खान के कितने एक ऐसे राग जो
1: आप
0: थे, मैं
1: मैहर भी तो गए थे।
0: मैहर भी गया था, मैहर से रिकॉर्ड करके लाया था, मैहर मतलब उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग लेकर के आया था, और यहाँ ऑलरेडी पहले से जो रिकॉर्डिंग थी जो रेयर रागास की वो कलेक्ट करके रखी थी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का लास्ट प्रोग्राम जो था वो यहीं पर हुआ था, शायद उसकी बहुत मज़ेदार घटना शायद आपको याद हो या नहीं, मैं याद दिलाता हूँ कि जब उन्होंने वो माधवी वर्मा सामने बैठी हुई थी और उन्होंने गाना शुरू किया, मैं नीर भरी दुख की बदली, याद है नहीं उनका थोड़ा सा प्रोनंसिएशन
1: ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था वो प्रोग्राम।
0: तो
1: हाँ
0: उसमें जब उन्होंने उसकी संधि विच्छेद गलत जगह पर कर दिया था ओमकारनाथ ठाकुर जी ने, तो महादेवी वर्मा गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी, उठ के चल दी थी, तो हमने कहा आप कहाँ जा रही हैं, हम लोग भागे उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए, तो वो बोले कि अरे इनको हमारी ही पोएट्री की ये गत करना थी, तो
1: नहीं,
0: इसलिए
1: असल
0: नहीं।
1: में क्या है कि
0: अब इसका
1: ये
0: कारण ये नहीं कि उनको हिंदी का उतना पता नहीं ना, इस कारण ऐसा हुआ,
1: यही है।
0: पर
1: तो ये चीज़ जो है कि जैसा अभी आपने किसी प्रसंग में अभी बताया कि पहले हम अपने आर्टिस्ट

0: उसको अर्थ समझाते हैं कि भाई ये है क्या
1: बिल्कुल
0: जो तुम गा रहे हो,
1: उनको
0: तो उसको
1: समझना ही
0: अगर
1: चाहिए।
0: समझ में आ जाए तो फिर भाव उसमें जोड़ देते हैं वो लोग, लेकिन अगर वही ना समझ में आए तो फिर बड़ा मुश्किल है।
1: केशव जी, हमारे लिए यही मुश्किल है कि यहाँ एक प्रोनंसिएशन जिसको आप बोलें, अगर हम बोलें तन मन धन न्योछावर करी हो,
0: हाँ
1: तो अब अगर कोई आर्टिस्ट आप बोल दे कि तना मना धाना, तो
0: हाँ
1: आपको कैसा लगेगा?
0: वही
1: तो
0: है।
1: ये परेशानी ये रहती है कि यहाँ उस चीज़ को बाहर के लोग डाइजेस्ट कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे। और मैं ऐसे स्टेशन में था जहाँ ये गढ़ था, तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है।
0: चारों तरफ कान लगाए सुनते
1: बिल्कुल
0: थे
1: सुनते
0: लोग,
1: थे,
0: यानी आप मतलब
1: बहुत
0: ये
1: था।
0: इस प्रसंग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बादल राग हुआ तो महादेवी जी ने मुझसे एक बार यही कहा कि जैसा वहाँ किया था निराला जी का, वैसा एक बार मेरी भी कविताओं का करो।
1: बहुत अच्छी,
0: तो अब
1: अब
0: वो
1: हो जाता
0: चूंकि
1: है।
0: उन्होंने भी सुना था और उनको भी लगा कि बादल राग सचमुच सामने आ गया, तो ये चीज़ अपने में बड़ी भारी उपलब्धि मैं मानता हूँ। ऐसी उपलब्धि कम होती है संगीत के क्षेत्र में, और ये तो आपकी क्रेडिट है।
1: इसके अतिरिक्त भी मैंने बहुत से भी और भी कार्य करने की करना चाहा। जैसे जब मैं आया यहाँ पर, तो बिस्मिल्लाह खान साहब नहीं आते थे प्रोग्राम करने के लिए।
0: हाँ
1: तो फिर उनके पास गया, मैंने कहा आप क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे? तो उनके नहीं, नहीं, जब तक यहाँ पर, उन्होंने कुछ अपना रोष बताया, तो मैंने उनके
0: हाँ
1: हाथ पैर जोड़े, उनको ले आया यहाँ पे। इसी तरह से उनका कार्यक्रम फिर से शुरू करवाया। बहुत से अच्छे आर्टिस्ट जो आज बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: उनको यहाँ से ऑडिशन दिलवाया, जैसे पंडित जगदीश प्रसाद हैं,
0: हाँ
1: तो उन तमाम लोगों को एग्जेम्प्ट करवाया जो आज अच्छे कलाकार के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने दिन और रात अथक परिश्रम करके जो अच्छा कर सकते थे किया, और हमें बहुत खुशी है कि लोगों ने उस बात को पसंद किया और रिकॉग्नाइज किया, इसमें कोई संदेह नहीं।
0: ना सही है। असल में ये भी आपके एक क्रेडिट है, हालांकि उस समय ये बदनामी के रूप में देखा जाता था कि ज़्यादा वक्त कागज़ों पर और मेज़ पर नहीं आप लगाते थे, ज़्यादा वक्त
1: मुझसे
0: आप
1: नाराज
0: स्टूडियो
1: रहते थे
0: में
1: कभी
0: लगाते
1: कभी मुझसे नाराज हो जाते थे कि ये तो गलत उदाहरण रख रहे हैं सामने सबको परेशान करने का, ये भी तो रहता था। पर मुझे अच्छा लगता था, मैं सोचता था जितना अच्छा हो जाए उतना
0: ये
1: बहुत अच्छा।
0: सही है, क्योंकि मैं जब मेरा कोई प्रोडक्शन भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो भी आपके पास आपके स्टूडियो में आके बैठता था ये सुनने के लिए कि इसमें क्या कर रहे हो, नया नया क्या हो रहा है। तो ये सब नया होना और नए को सुनना, ये लोगों के लिए रघुनाथ सेठ जितने दिनों यहाँ थे उनकी बड़ी एक उपलब्धि थी। अब आप सब
1: क्यों,
0: कुछ
1: आप बताइए, यहाँ हम लोग कितने कॉन्सर्ट्स किया करते थे अलग अलग स्टेशन से आर्टिस्टों को बुला करके। ये भी चाहते थे कि यहाँ के आर्टिस्ट लोग ये भी जानें कि भाई बाहर के आर्टिस्ट क्या करते
0: क्या
1: हैं
0: गा रहे हैं।
1: और क्या गा रहे हैं, उनका क्या स्तर है,
0: हाँ
1: इसलिए यहाँ आकर के देखें और यहाँ के लोगों उनका सामंजस्य हो तो आदान प्रदान होगा, तो नेचुरली उनका एक
0: स्तर बढ़ता।
1: विश्वास और हाँ वो
0: हाँ यही
1: बढ़ेगा
0: है,
1: गाने के प्रति।
0: नहीं भाई यानी मैं समझता हूँ कि रेडियो का संगीत ऐसी एक तरह का उस पर ठप्पा लग चुका है कि रेडियो का संगीत ख़ास तौर से जो लाइट म्यूज़िक के नाम से प्रसिद्ध है उसके बारे में बहुत उच्च कोटि की धारणा लोगों के मन में शायद नहीं है। उसका कारण ये भी होगा कि फिल्मी दुनिया।
1: नहीं, केशव जी, उसका भी कारण केवल एक ही है कि जो भी हम प्रस्तुति करते हैं, जो भी सामान देते हैं सुनने के लिए श्रोता को, वो अपरिपक्व होता है, जिसको बोलेंगे अनफिनिश्ड या कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर देंगे आप,
0: हाँ
1: तो वो अच्छा लगेगा। और इसी कारण मैं इतनी मेहनत करता था, और इसी कारण जब अच्छा हो जाता था तभी आगे उसको ब्रॉडकास्ट करता था, तो वो अच्छा लगता था, और यही
0: ये
1: कारण है।
0: आपको ज़रूरी नहीं लगता कि किसी प्रोग्राम को या किसी गाने को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए।
1: कतई नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने फिल्म के गाने भी 3 इंस्ट्रूमेंट से किए हैं, यहाँ तो छोड़ दीजिए फिल्म, वहाँ जा करके बम्बई में, यहाँ तो करता ही था 3 बम्बई में जा करके एक बार फिर में एक गाना है सहमी सहमी आहें, भूपेंद्र ने गाया था, वो 3 इंस्ट्रूमेंट से किया था। तो उसका कारण जो था वो ये कि मैं ये सोचता हूँ गाना जो अच्छा है वो अपनी जो एक प्रस्तुति होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप कि थॉट क्या, आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है, आपका परफेक्शन की ओर कितना ध्यान है, और हर एक बाकी बात के ऊपर, न कि इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, आप 3 इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाना गवा दीजिए और बहुत अच्छा हो सकता है, 2 को

0: दीजिए लेके।
1: हाँ, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को शिकायत मैंने सुनी लोगों की, जो प्रोड्यूसर हैं आजकल के साहब बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, और बीच में ध्वनि के लिए कुछ नहीं है, और पीछे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसे हो? हालांकि मैं चूंकि देख चुका था कि आप जो हैं वो एक
0: नहीं
1: एक दो
0: ऐसा
1: दो
0: नहीं
1: तीन
0: है,
1: तीन इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, तो मुझे लगता था कि शायद ये शिकायत बहुत ही वाजिब नहीं है।
0: आवश्यक नहीं है, कहीं पर इसकी आवश्यकता हो सकती है, पर इसको पूरा 100% नहीं कहा जा सकता। जहाँ आपको एक कैनवस की आवश्यकता है, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसीज और लो और हाई की ज़्यादा ज़रूरत है,
1: हाँ
0: वहाँ पूरी एक बॉडी के लिए आपको ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई आप ऊंचे स्वर वाले भी हो, नीचे स्वर वाले भी, और एक पूरी बॉडी में आप प्रस्तुत कीजिए संगीत, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक अच्छे संगीत का सवाल है, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स
1: अच्छा,
0: वहाँ से।
1: एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि अब समय कम है लेकिन फिर भी पूछे दे रहा हूँ, कि
0: बताइए।
1: यहाँ रह करके आपको अपनी जो आपका वाद्य है बांसुरी, इसको प्रोजेक्ट करने में या इसको सामने लाने में कितनी सुविधा मिली?
0: शास्त्रीय संगीत के रूप में
1: हाँ, क्या और क्या?
0: वो तो अपनी अलग, एक तरह से मैंने यहाँ पर कोशिश करके जितना मुझे, मेरा शास्त्रीय संगीत में इस जो प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत रहा, और व्यक्तिगत रूप कहने का मतलब है मुझे इतना समय मिलता रहा कि मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर सकता था और ठीक से उसको उभार सकता था, इतना ही मेरे लिए बहुत था, वो बहुत अच्छा हुआ।
1: हाँ, क्योंकि उस वक्त के रेडियो स्टेशन की कार्य पद्धति और आज के रेडियो स्टेशनों की कार्य पद्धति में बड़ा फर्क आ गया है। तो आपको मैंने, चूंकि आप यानी बांसुरी के एक विशिष्ट कलाकार के रूप
0: मैंने
1: में
0: कभी
1: देश
0: भी
1: में हैं।
0: बांसुरी, अधिकांशता लोगों की क्या आदत होती है, जब एक ओहदे पे आ जाते हैं तो वो अपना वाद्य भूल जाते हैं, मूल वाद्य भूल जाते हैं, पर मैं वंशी बजाना कभी भी नहीं भूला, उसको हमेशा उतना ही स्थान देता रहा जितना प्रोडक्शन को, तो इसलिए संभवतः मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई असर होता, बल्कि अच्छा ही हुआ और अच्छा लगता रहा।
1: बस हम लोग जो आपके पुराने साथी हैं, आपके लिए मंगल
0: बहुत
1: कामना करते
0: बहुत
1: हैं।
0: याद करते हैं हम सबको,
1: हाँ
0: इसलिए मैं यहाँ आया हूँ भाग के, और सब
1: अच्छा
0: सोचता रहता हूँ सब, एक एक चीज़, एक एक बात पूरी।
1: लगा आपसे बात करके।
0: अच्छी बात सर, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एक सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री रघुनाथ सेठ से केशव चंद्र वर्मा की भेंटवार्ता। अब हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं नदीम श्रवण।

जब भी 90 के दशक के मधुर गीतों की बात होती है तो एक नाम अपने आप दिल में गूंज उठता है, नदीम श्रवण। ये सिर्फ दो संगीतकारों की जोड़ी नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं की धड़कन थी। इन्होंने ऐसे गीत दिए जो आज भी सुनते

ही हमें पुराने दिनों की मीठी यादों में ले जाते हैं। नदीम सैफ और श्रवण राठौर ने 1970 के दशक के अंत में साथ काम शुरू किया, लेकिन उनकी पहली पहचान 1990 में आई फिल्म आशिकी से बनी। इस फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी लाखों कैसेट बिकी और भारतीय फिल्म संगीत का दौर ही बदल गया।

उस समय लोग फिल्मों से पहले उनके गानों का इंतजार करते थे। नदीम श्रवण ने ये साबित कर दिया कि बिना शोर शराबे के भी केवल मधुर धुनों से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। उनके संगीत की सबसे बड़ी विशेषता थी सरलता, मिठास और दिलों को छू लेने वाली धुनें। उन्होंने प्रेम, विरह, उम्मीद और रिश्तों की भावनाओं को सुरों में इस तरह पिरोया कि हर उम्र का व्यक्ति उनसे जुड़ गया। उनके गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत की झलक भी रहती थी और आधुनिकता का मधुर मेल भी।

नदीम श्रवण ने अपने कैरियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया और कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। उनकी धुनों में कई प्रसिद्ध गायकों के कैरियर को नई ऊंचाइयां दी। आज भी जब पुराने सदाबहार गीतों की बात होती है तो उनकी रचनाएं सबसे पहले याद आती हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीत हैं, धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, नज़र के सामने, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, दिल है कि मानता नहीं, दो दिल मिल रहे हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐ मेरे हमसफ़र, जिए तो जिए कैसे, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। इन गीतों की लोकप्रियता आज भी वैसी ही है जैसी उनके रिलीज होने के समय थी।

वर्ष 2021 में शेवर राठौर का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई धुनें आज भी जीवित हैं। नदीम शेवर की जोड़ी भले ही अब साथ ना हो, पर उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा संगीत वही है जो समय की सीमाओं को पार कर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बस जाए।

अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ आवाज़ें समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन कुछ धुनें इतिहास बन जाती हैं। नदीम श्रवण की धुनें भी ऐसी ही अमर विरासत है जो हर दिल में प्यार की नई कहानी सुनाती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर और की ब्रदर्स को बागी टू में। बारिशें यूं ही नहीं आती हर मौसम में, कुछ बादल दिलों के भी बरसना चाहते हैं।

और आइए अब सुनते हैं ऐश किंग और सुषमा त्रिपाठी को हाफ गर्लफ्रेंड में। ये सावन भी बड़ा फलसफा सिखा गया, जो झुकना जानता है वही बारिश का आनंद पा गया।

और आइए आप सुनते हैं सोनू निगम और शान को फिल्म थ्री इडियट्स में। बादलों का शोर भी कितना हसीन होता है जब दिल में किसी अपने का जिक्र होता है।

और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार को फिल्म गुरु में। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाएं और बरसता आसमान, बस इतना ही काफ़ी है मुस्कुराने के लिए।

और आइए आप सुनते हैं मोहरा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक को। सावन आया तो हवाओं ने पैगाम दिया, हर सूखी शाख को फिर से जीने का अरमान दिया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अजनबी फिल्म का गीत। बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक देती रहीं और हम तेरी यादों में सारी रात भीगते रहे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक

0: एक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms,

मिनट पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी पूनम तिवारी की वार्ता महिलाओं में डिजिटल साक्षरता। 2:30 बजे लोकगीत के कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव साथी, लाल बहादुर रागी और साथी, गुलाब सिंह यादव और साथी। शाम 5 बजे धरती के गीत में कलाकार होंगे राजवंत सिंह पटेल और साथी। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में योजन सुनेंगे रितिशा ओझा की वार्ता जनसंख्या वृद्धि के संसाधनों पर बढ़ता दबाव। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे गुलाब सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत के अलावा परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर रंजना वाजपेयी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, दांतों की आम समस्याएं और उनकी समुचित देखभाल। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता होगी विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में चित्रा चौरसिया के गाय भजनों के सुनवाए जाएंगे। 8:30 बजे सबरस कार्यक्रम होगा। ये थे आज के शीर्ष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं सुनिए। मोहम्मद इंद्रिश सूचित करते हैं कि इनके पुत्र मोहम्मद यासीन रामपुर उर्फ चक दौलतपुर सिकंदरा बहरिया प्रयागराज से लापता हैं। इनका रंग गोरा है, उम्र है 25 वर्ष, कद है 5 फुट। ये मैरून कलर का स्वेटर और काला लोअर पहने हुए हैं। ये 16 नवंबर 2025 शाम 6 बजे से गुमशुदा हैं। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9561158286 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें 9561158286। एक और सूचना सुनिए। गया प्रसाद जायसवाल सूचित करते हैं कि कुटिया थाना अकील जनपद कौशाम्बी से इनकी पुत्री लवली जायसवाल लापता है। लवली की उम्र है 21 वर्ष, इकहरा बदन है, चेहरा गोल है, ऊंचाई है 5 फीट, रंग गोरा है। ये नीले रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर कोटिया थाना सराय अकील जनपद कौशाम्बी पर सूचित करें। एक और सूचना सुनिए। कुंती देवी पत्नी अंतिम कुमार धमधा थाना कुखराज जनपद कौशाम्बी से सूचित करते हैं कि कुंती देवी लापता हैं। कुंती देवी की उम्र है 43 वर्ष, इकहरा बदन है, रंग गोरा है, ऊंचाई है 5 फीट, ये हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर धमधा थाना कुराय कौशाम्बी पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम शंकर का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम शंकर का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की श्रवण कुमार भट्ट ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: छतपाल सिंह पटेल।
0: छत्रपाल सिंह पटेल जी, हाँ जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: एक दूजे के लिए फिल्म का।
0: जी कौन सा गाना है?
1: एक दूजे के लिए फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम, कोई भी गाना।
0: अच्छा, कोई भी गीत आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं छत्रपाल जी, लीजिए सुनिए। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हेलो, अपना नाम बताइए।
2: गुलाब प्रजापति, कनौजा कला, बाबूगंज, प्रयागराज।
0: जी गुलाब जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: एक दूजे के लिए मूवी मूवी और गाने के बोल हैं, पहनूंगी मैं तेरे हाथों की कंगना।
0: तो आपने एक दूजे के लिए फिल्म के गाने की फरमाइश की है और हमारे एक श्रोता है छत्रपाल जी, वो भी इसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। तो आप दोनों मिलकर सुनिए एक दूजे के लिए फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पिंटू निषाद।
0: पिंटू निषाद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज कार्यक्रम का गोरी तलैया।
0: तो पिंटू निषाद जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: निजी कला बदर से।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना आज का अर्जुन फिल्म से लीजिए, सुनिए।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलरहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर भोजपुर, बाबा घुसन नाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम
0: जी। प्रभाकर तिवारी जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: मैडम जी? फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर
0: जी।
1: गीत के बोल है घटा सावन की घटा।
0: हटा सावन की घटा।
1: हाँ हाँ मैडम जी।
0: चलिए, प्रभाकर जी की पसंद का
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, और आप नियमित रूप से कॉल भी करते रहते हैं।
1: हाँ मैडम जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, सब लोग सुनते हैं हमारे घर में।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी पसंद का
1: नाम ले ले।
0: हाँ, दो नाम ले लीजिए।
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ के राजेंद्र कुमार हैं।
0: हाँ जी।
1: और रामनगर भोजपुर के मुकेश सिंह हैं। रायचंद्रपुर भट्टी बाजार के गुड्डू पंडित हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैडम, मैं रमेश गुप्ता बोल रहा हूँ, रहने वाले हैं जिला प्रयागराज, गांव नाम है चकश्यामपुर। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं मुंबई से, रहते हैं मुमरा कल्याण फाटा। मैडम आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद धन्यवाद रमेश जी कि आप मुंबई में बैठ के भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। रमेश जी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: मैडम हमने गाना सुना, फिल्म का नाम है विजय पथ।
0: जी गाने के बोल बताइए।
1: गाने बोले सागर संग किनारे है।
0: तो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित हेलो फरमाइश कार्यक्रम, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुश शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संस्कृत भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी

0: योग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरि में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary E.S. Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant, and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
2: Multi-function radar.
4: It has a long range.

पनघट सुने बैठी सब बहिनी हरन के गुंजा।

0: सरस्वती के राम राम।
1: सरस्वती बेटी
0: हाँ गुंजा,
1: बताओ क्या हालचाल बाटे घरे दुआरे सपने एक बाटे ना मैंने।
0: बस बस देखा मौसम इतना बढ़िया हो गया है ना, अब हमें कौनो शिकायत नहीं। वाह
1: देखा आधा तो तकलीफ मौसम के खुशनुमा मौसम हो से होएगा है।
0: बिल्कुल सही कहा था। और बतावा घरे दुआरे मौसम तो सहयोग करता ही वा सब तरह से है ना।
1: देखा बेटी अब जो ने खेते के हाल है अपने जान ला की उमेर कुर बहुत मशक्कत करे पड़त है। सांझे बेरिया तो बहुत कुछ देखे पड़ा था खेते में।
0: बिल्कुल हाँ,
1: अपन अनाज के देख रेख के कि कौन भैया खुले में ना रहा है कौन अनाज भीगे।
0: हाँ हाँ हाँ
1: सड़ाई की स्थिति बन जाए।
0: हाँ
1: तो ओके रोकथाम के बदले हम
0: देखा मेहनत तो सही कहा तो तू गुंजा बहनी, मेहनत तो बढ़ गई है हम सब के।
1: हाँ।
0: लेकिन यह बा कि थोड़ा सा दैव राहत करे हैं
1: है
0: ना।
1: देखा लगातार जो झड़ी लग
0: जाती
1: है तबे हम सभी के देखा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। काहे कि तबे लगा कि अपने के कुल देखे कि पशु के, लेकिन दोनों देखे बहुत जरूरी बात है। दोनों हमारे बहुत सहयोगी है, हमारे जो जानवर है गौ बछड़ू है अगर हम उनका भी देख रेख अच्छे से संभालत है तो कुल हमारे जो है तो वो आमदनी के स्रोत है।
0: बिल्कुल है
1: तो ओके भी हमका बचत करे पड़ी, देख रेख करनी पड़ी।
0: हाँ
1: कुल
0: हाँ
1: अच्छा सूखे में व्यवस्था रखी।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है। और देखा अगर एक बात हम तो से कहे चाहती
1: हाँ,
0: कि आज हम तो से इतना रतिया के ना, हम
1: हाँ,
0: हमारे मन में इतनी बात चलत रहे हम सोचत रही कब तू हमसे मिला और
1: अच्छा,
0: कब हम तो से अपने मन के बात बताएं, घरे दुआरे के बात बताएं। और बस हम आज इंतजार करते रहे कि जल्दी से सुबह होए हम जाएं या तो से बतियाए ले।
1: देखा एक जो मन की बात होती दुख होता है चाहे सुख होता है या कौनो उत्साह होता है मन में
0: हाँ
1: तो कैसे साझा होते है अपन दोस्त से
0: वही हम सोचत
1: सगी
0: रहे,
1: सहेली से।
0: वही गुंजा हम वही सोचत रहे कि देखा गुंजा है कि हमार एक ठे इतना सहारा बाटे। हम आज ना हम रतिया भर यही सोचत रहे
1: अच्छा
0: कि जब तक हम तो उसे मिल न ले हमारे मन के शांति न मिले एकदम। अगर हमार बस चलत ना तो हम रतिये कैसे कैसे तोरे पजरे पहुंच जाए। और
1: दोस्ती के कोनो सीमा ना ही होत
0: हाँ
1: ना कोई रोक टोक होते।
0: बिल्कुल
1: दोस्ती ऐसे होता है जो निस्वार्थ होता है।
0: गुंजा
1: हाँ
0: देखा काहे नहीं हम सब यही बात पे एक ठे चर्चा कह लें जाए है ना, कि दोस्ती जीवन का अनमोल रिश्ता है ना। तू मानत हो ना कि ये रिश्ता जो है बहुत अनमोल होता।
1: बिल्कुल देखा बहनी इतनी नीक बात के चर्चा करे खातिर तू बताए हो कि सुन के आधा तो से मिल के खुशी हो गई, आधा ये चर्चा जो ने हम सबके जीवन के एक ठी सहारा बांटे है। सारे रिश्ता से एक अनमोल रिश्ता है दोस्ती के।
0: बिल्कुल सही कहा तू। अच्छा गुंजा
1: हाँ
0: देखा परिवार में इतना सब सदस्य होते हैं लेकिन कई बार तू देखे होबू ना हम अपने मन के बात जौन है जौन हम करे चाहती जौन हम सोचत है जौन हमके तकलीफ भय बाटे कबो कबो हम अपने घर वही ना ही बता पाए। और हर चीज आके तो से ऐसे बोल दे थी हमें लागत है कि बस तू सब समझ गई हो और हमार समस्या खत्म हो गई है।
1: कुछ बातें ऐसे होती जो ने अपने घरे द्वारे अपने बड़कन के से ना ही कह पाते तो ऐसे मन में घुटत रहते।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो अपन सखी सहेली होते जो अपन मित्र होते हैं उनसे जब हम साझा करी थी अपने परेशानी का तो वो ऐसे ना ही होते, वो तो अपने तकलीफ के अपन तकलीफ समझ लेते, अपने दोस्त के निवारण भी बताते, साथ ही उनका एक सहायता भी देते कि तू चिंता ना करा हम तुम्हारे तो साथ है।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे
0: और
1: बड़ा
0: देखा देखा परिवार में ना देखा सब हमार सब शुभ चिंतक होते हैं और सब बतावत हैं कि तू का ऐसे करे के चाहिए ऐसे ना करे के चाहिए है ना। तो हमें लगत है अरे ये सब तो डांटत हैं टोकत हैं बोलत हैं। और दोस्त हमार साथी मित्र जौन होते ना वो ऐसे रोका टोकी नहीं करते, सब चीज ना बस चुपचाप एकदम सुनत रहते हैं। तो बस वही चाहा था कि कोई बस सुन ले हमार मन के बात।
1: सच्चा वो है मित्र जो ने आपके साथ हमेशा साथ ही खड़ा रहा था चाहे कौनों भी परिस्थिति हो। और जब है आप बाकी पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ देते लेकिन एक मुला वही दोस्त मित्र रहा है जो आपके साथ ना ही छोड़ा
0: और
1: कदा
0: देखा
1: से मिला।
0: बिल्कुल सही कहते हो। और गुंजा बहनी अगर मित्रता देखे के हुई ना तो छोट छोट लइकन के देखा है ना, अगर उनके दोस्त के अगर तू जरा सा डांट देबू तो उनके इतना बुरा लग जाता है। ऐसा मित्रता हम सब में देखे के तो ना ही मिलत है ना। काहे कि देखा उमा एकदम निस्वार्थ भाव से उनके दोस्ती होत है ना। ऐसे ही दोस्ती रहे।

0: जाए तो फिर का दुख होए, है ना। और देखा एक हम तो ये मानत है गुंजा कि जो सच्चा दोस्त होता है, मित्र होता है ना, वो सबसे पहले हमरे कमी पे चोट करते है कि देखा तू ये चीज के सुधारा, हमका तुहार ये आदत अच्छी नहीं लगत, है ना। वो सुनबो करत है, समझबो करत है और सुधारबो करत है।
1: कौनो हिसाब किताब नहीं बाटे, मुला एक ऐसा रिश्ता है जेमा सिर्फ प्यार और एहसास होता है। दोस्ती वो अनमोल दौलत है जो उन्हें बिना मांगे मिल जाते हैं और जिंदगी भर साथ निभावत है और जिंदगी के सफर में आसान और खुशनुमा भी बनाए देते बाटे। यह से ई रिश्ता खून के बंधनों से परे रहता है और पसंद और भावनाओं पर होता है, खुशियों के खजाना होते है। दोस्तों के साथ बिताए गए पल जीवन भर की यादें बन जाते हैं। जीवन में रिश्ते में दोस्त के मतलब है समानता, गहरा विश्वास और बिना कोनो डर या झिझक के अपने बात कह सके।
0: और देखा ऐसा जब दोस्त रहा था ना तो दिखावत है, हम जैसे कहा जाता है ना, हमके एक आईना के तौर पे काम करत है, है ना। हमार वास्तविक चेहरा जो है वो का भी वो बतावत है कि देखा यहाँ पे जरूरत है,
1: हाँ
0: हाँ यहाँ पे अब समय है कि तू अब ये रास्ता बदल के ये रास्ता के पकड़ा, है ना। तो देखा और वो बारीकी से हमका समझा थे ना, बहुत चीज हमारे जानत है, हमारे बहुत रहस्य जानत है, हमार उन्नति जानत है, हमार सुख दुख जानत है, बहुत गहराई से वो हमका जानत है। और सबसे बड़ी बात है उनसे लगाव हो कि चलते हम उनकर बात के तवज्जो भी देते हैं।
1: सही बात कहो बहनी। देखा बहनी एक अच्छे दोस्त हमार मानसिक स्वास्थ्य के बदे अच्छा होता है। एक सच्चा दोस्त जो होता है बिना शर्त के आपका स्वीकार करता है, जीवन की हर चुनौतियों में उनका साथ होकर कौनो जो भी समस्या है उनका जरूर निवारण करते हैं।
0: बिल्कुल। और हमरे समस्या के वो ऐसे समझते जैसे उनकर निजी समस्या है, है ना। तो बस ऐसे ही एक दोस्त हम सबके जीवन में रहे के चाहिए। और आजकल तो देखा जो कहा जाता ना, हम सभी कहा थे कि सोशल मीडिया का जमाना है तो दोस्त तो खूब भरा है, खूब भरा है, एक से एक दोस्त है, लेकिन समय पे जो साथ निभावे वो दोस्त के बहुत आजकल कमी पड़ गई है,
1: मित्र हो,
0: है ना।
1: तो जैसे हमारे कन्हैया रहे और सुदामा जी,
0: एकदम सही।
1: मित्रता आज कितनी शताब्दी बीत गई, कई युग बीत गया, लेकिन बहनी देखा आज उनकी मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। कहे कि वो कम ज्यादा अच्छा बुरा और बहनी जो होता कि भेदभाव कि तू बड़ा है तू अमीर है हम गरीब है, वो कुल सब त्याग के वो केवल मित्रता के श्रेष्ठता।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तू, कितनी अच्छी तू मिसाल दी गुंजा बहनी कि देखा जब सुदामा गए और उनका लगत रहे कि पता नहीं हमका ये पहचानी है,
1: वो राजा रहे
0: हाँ कि पहचानी है कि नहीं, और सुदामा जी की पत्नी के भी यही शंका रही, लेकिन सब शंका के निवारण किए हमारे भगवान श्री कृष्ण। और एकदम जैसे तू कहा था जाति पाति और सब भेद के एकदम मिटाए के, अमीर गरीब के सब भेद मिटाए के और अपने मित्रता के तवज्जो दी है।
1: तो क्षण याद कर ले तो सुदामा जब आए उनके द्वारे कन्हैया के तो कृष्ण जी कैसे दौड़े दौड़े नंगे पाँव, जबकि वो एक राजा रहे, कैसे फटा पुराना सुदामा पहने रहे, लेकिन जब कन्हैया के देखे तो सारा बंधन तोड़ के अपने मित्र के गले से लगाए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा था, ये दृश्य तो देखा तो, दिमाग से उतरते ही नहीं।
1: हाँ,
0: और दोस्ती पे चर्चा करे और भगवान कृष्ण,
1: हाँ
0: और दोस्ती की चर्चा करके गुंजा बहनी,
1: हाँ,
0: अगर भगवान कृष्ण सुदामा की चर्चा ना होए तो दोस्ती पे चर्चा तो अधूरी है, है ना। और देखा कैसे भगवान कृष्ण एकदम दौड़ के उनके चरणन पे गिर गए, भगवान रहे श्री कृष्ण लेकिन जब मित्र सामने आए गए तो एकदम दास की तरह उनके चरणों में समर्पित हो गए।
1: बहनी देखा मित्रता हो तो ऐसे हो, और हम तो कहा बहनी जब भी दोस्ती बनाए जब भी मित्रता करें तो अपने के देख के समझ के अच्छे का अगर हम साथ करते तो हमारा साथ अच्छा ही होते, अगर हम संगति बुरा करते तो बुरी संगति होती। तो बहनी जब भी दोस्ती मित्रता करें तो सही पहचान से करें।
0: और एक जरूरी बात गुंजा हम कहे चाहब तो से, कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरी, विपति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। देखा जब संपत्ति होते सुख होता है तब तो सब हमार सगा बना रहते हैं, लेकिन जब दुख के क्षण आवत है, जब तकलीफ होते जीवन में, वो समय भी जे साथ दे तब

0: पता चले
1: सच्चा
0: कि
1: मित्र कहलावत है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो बहनी देखा, इतनी निक निक तू जानकारी बातचीत करे हो। हमारा बहनी अरे भी मित्रता जोन है उनके साथ भी घनिष्ठ है, तो ई मित्रता के उपे कसना एक ही बढ़िया से पनगटे पे अपने कुछ गौनाई हो जाए।
0: बिल्कुल चला तो का एक ठे दादरा सुनाई दे थी वंदना सरोज
1: बाजी
0: और साथी
1: बाजी
0: से,
1: हो
0: तो चला सुन लीन
1: बसंत
0: जाए बाजी
1: की
0: बाजी हो।
1: बसूरिया।
0: चला सुन।

0: सरस्वती वैली, देखा बाजी बाजी पहेलिया कोयलिया कूकी, और
1: हम्म,
0: देखा कितना हमरे खेते में कोयलिया तो सुबह से ही कू कू कू करे लगा थी।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और ऐसा बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर आवाज़ सुन के तो एकदम तू खुश हो जात हो बू,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बहनी इतना नीक के गौने छीन।
1: हाँ, अब देखा, अब तू एक ठे बातचीत सुन ला।
0: चला बहनी अरे भी सुने बातचीत। तो
1: आज का युग एक डिजिटल युग हवे, ऐसन समय म ग्रामीण महिला भी यदि डिजिटल रूप से साक्षर हो जाए तो हम समझब कि आत्मनिर्भर भारत का जौन भावना हवे वो साकार हो जाए। तो देखा, आज हम सबके साथ ही पूनम तिवारी जौन की बात कर ही यही विषय पे, महिलाओं में डिजिटल साक्षरता। पूनम
2: जी
1: आपको बहुत बहुत स्वागत हवे।
2: जी नमस्कार।
1: हम आपसे जानना चाह पहले कि ई डिजिटल साक्षरता का होत हवे।
2: जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा युग कंप्यूटर इंटरनेट और स्मार्टफोन का युग है, और आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सुबह की शुरुआत ही मोबाइल के अलार्म से होती है और दिन भर काम डिजिटल तकनीकी के सहारे ही पूरे होते हैं। जैसे कि इस तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल हमारे आधी आबादी यानी हमारी महिलाएं पूरी तरह कदम से कदम मिलाकर चल पा रही हैं। तो साक्षरता, डिजिटल साक्षरता हमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिकली ग्रामीण महिलाओं के लिए
1: अच्छा
2: ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहरी में बोला जाए तो शहरी में लोगों को पता है, लेकिन हमारे गांव में ना डिजिटल साक्षरता की कमी है, फ़ोन कंप्यूटर्स की बहुत कमी है, इसीलिए ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। तो हम ये जानने चाहब बहनी आपसे कि का डिजिटली साक्षर हो के हमार जो बहनी रहे हैं गांव में वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो सकी हैं, और का ई उनके शिक्षा में भी कोनो प्रकार से सहायक हुई।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, आर्थिक रूप से हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारे देश में गांव शहरों में महिलाएं रोजगार के लिए हमारी सरकार ने बहुत से रास्ते खोले हैं। ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी डिजिटल सेंटर्स हैं, सखी मंडल जिसे कहते हैं, जरिए के द्वारा वैकेंसी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई अचार पापड़ हस्तशिल्प जैसी कई चीज़ें जो महिलाएं केवल घर में बैठकर अपने स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं है वो डिजिटल के इंडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर सकती हैं, और जैसे कि ई कॉमर्स के थ्रू वेबसाइट के थ्रू अपने उत्पादनों को वो बेच सकती हैं,
1: यानी कि अपन प्रचार कर सकती
2: हैं।
1: देखा ये सामान हमरे यहाँ बिकात है
2: जी,
1: तो एक प्रचार कर
2: हाँ
1: सकी,
2: बिल्कुल
1: उसे अधिक से अधिक लोगों के पता चल सकी
2: जी जी,
1: तो ग्राहक बढ़ जाए
2: जी,
1: है ना। तो हम ये जाने चाहती का ई डिजिटल साक्षरता जानना है ई बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में भी सहायक हवे हम सब बहनी हरन के।
2: अरे बहुत बहुत ज्यादा सहायक है महिलाओं, अब तो महिलाओं की मुट्ठी में है ये सारी चीजें। पहले बैंक के छोटे छोटे काम घर के आदमियों के लिए निर्भर रहती थी, अब वो खुद जाकर आत्मनिर्भर होकर ऑनलाइन के थ्रू डिजिटल साक्षरता के बदौलत महिलाएं यूपीआई मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बहुत तरीके से उपयोग कर रही हैं, और वो ना कि पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, ट्रांसफर भी कर रही हैं।
1: अच्छा।
2: और बचत भी बहुत कर रही हैं, निवेश भी कर रही हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहनी कि देखा इतना आगे हमार ग्रामीण बहनियरे सब बढ़त जाती, सुन के बहुत ही खुशी होता
2: जी जी।
1: हाँ लेकिन देखा कुछ तो महिला हमारे गांव में आजकल साक्षर ही, लेकिन कुछ ऐसा भी तबका बाटे जो अभी भी उतना साक्षर नहीं बाटे जितना उनका होए के चाहिए।
2: जी आप ये बहुत अच्छा
1: है ना
2: क्वेश्चन कर रही
1: हैं। हम ये जाने चाहते ही कि ऐसन महिला जो नहीं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, है ना, बस नाम मात्र के साक्षर हैं, उनके बदे ये डिजिटल साक्षरता कैसे सहयोगी हवे।
2: आज इंटरनेट पर ज्ञान का समंदर है, जो महिलाएं किसी कारणवश स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाई हैं, या जिनकी शादी जल्दी हो गई, पढ़ाई नहीं छोड़ दी है, नहीं

0: कर पाई, तो वो डिजिटल के माध्यम से वरदान साबित हुआ है उनके लिए।
1: डिजिटल साक्षरता।
0: हाँ, डिजिटल साक्षरता वो अलग अलग एप्स के जरिए सीख सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, घर बैठे कोर्सेस शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बहुत उपयोगी है
1: अच्छा,
0: शिक्षा ज्ञान के
1: मतलब कि
0: प्रसाद में।
1: हाँ, मतलब वो जो ना अलग अलग ऐप के इस्तेमाल करके
0: हाँ
1: कौनो
0: हाँ
1: गुण के विकसित कर
0: कर
1: सकते हैं।
0: सकती
1: जरूरी ना
0: हैं।
1: है बा कि वो घर से बाहर निकले और
0: नहीं,
1: वहीं जाए के सीखें,
0: जी जी
1: है ना?
0: घर में
1: तो
0: बैठकर वो सब कुछ सीख सकती हैं, और यहाँ तक कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता वो भी सीख सकती हैं। इंग्लिश, जैसे ग्रामीण महिलाओं में अंग्रेजी की
1: हाँ
0: कमी
1: हाँ
0: होती
1: हाँ
0: है, तो वो भी बहुत आराम से सीख सकती हैं। कोई भी
1: थोड़ा सा समय देने की
0: जानकारी
1: पड़ी,
0: है, समय देकर सब
1: हाँ,
0: कुछ सीख
1: और
0: सकती हैं।
1: एकदम जी जान से लग
0: और
1: गई, तो
0: बहुत से,
1: बिल्कुल घरे बैठे सब कुछ
0: बिल्कुल,
1: उपलब्ध है।
0: और आजकल तो प्रोफेशनल कोर्सेज सिर्फ घर में ही हो रहे हैं, घर में बैठकर आप कर सकती हैं। तो बहुत सुविधाएं हैं, डिजिटल साक्षरता सच में
1: यानी कि
0: शिक्षा के
1: जैसे
0: क्षेत्र में
1: हमारे
0: बहुत
1: गांव में
0: उपयोगी
1: बहनेरे
0: हैं।
1: सब खेत खलियान में लगी रहती हैं,
0: हाँ
1: लेकिन जब उसे फुर्सत पावे तो अपने शौक के
0: हाँ
1: पूरा करके,
0: बिल्कुल
1: आ
0: बिल्कुल
1: जब जो शौक पहले ना ही पूरा हो
0: जी
1: सका ओका अब पूरा कर सकत हैं। ये तो
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया आप बताई हैं। अब हम आपसे ये जाने चाहते हैं बहनी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा का बनाए रखे बदे भी का ये कुछ काम आवत हवे?
0: बहुत ज़्यादा उपयोगी है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता ने तो क्रांति ला दी है। आज की महिलाएं घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकती हैं, दवाइयाँ मंगा सकती हैं घर बैठे, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी सीधे से अपने मोबाइल से प्राप्त कर सकती हैं, और छोटी मोटी जो तकलीफें हैं उसका उपचार खुद कर सकती हैं। तो
1: जान सकत
0: जानकारी,
1: हैं कि भाई
0: हाँ
1: देखा
0: जानकारी, बहुत सी जानकारियाँ वो घर बैठे दवाइयाँ मंगाना, दवाइयाँ सही हैं या नहीं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसको। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है।
1: पूर्ण सतर्कता के साथे, जब
0: हाँ
1: बात देखा मामला दवाई के होए तो सतर्कता बहुत जरूरी होते है, अपने आप से
0: बहुत
1: कुछ भी न करे के चाहिए,
0: अपने आप से।
1: है ना?
0: हाँ बिल्कुल
1: तो भाई जब
0: जी
1: बस एक जानकारी तक सीमित रहें,
0: हाँ
1: उपयोग पे बहुत सोच समझ के तब आगे बढ़ें,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना?
0: हाँ
1: काहे कि देखा हर चीज के एक विशेषज्ञ होते हैं। अब
0: बिल्कुल
1: हम आपसे ये जाने चाहब
0: जी
1: कि सरकार तो ये दिशा में बहुत ही काम करत है
0: जी
1: ना?
0: जी
1: तो हम यही विषय में आपसे जाने चाहत कि का का सरकार की तरफ से सहयोग मिलत हमरे ग्रामीण महिलाओं के साक्षर करे बदे?
0: तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सरकार ने तो बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है और सुविधाएं दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी योजनाओं के तहत करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में कंप्यूटर, स्मार्टफोन चलाना सिखाया जा रहा है, दिया भी जा रहा है, और वह स्वयं सहायता समूहों से डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके जरिए वो बहुत कुछ सीख रही हैं।
1: अच्छा, ये बतावें कि हम सबे ना परिवार में अक्सर ये सोचे थे कि देखा हम पुरुष वर्ग ही तो हम सबे तो काम करे जाते ही, तो हम सबे के तो सोशल मीडिया जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, इंटरनेट जरूरी है ना? लेकिन घर के जन बिटिया हैं और महिला हैं वो सबे का करी है, ऐसे दिमाग में बात रहते ही है ना? तो एकरे बारे में आप का कहे चाहिए कि काय में ये सोच में कुछ बदलाव करे की जरूरत बा?
0: बहुत बहुत ज़रूरी है ये। आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कई परिवार तो आज भी यह सोच रहे हैं कि लड़कियों को मोबाइल की क्या ज़रूरत है, उनको इस जानकारी क्या ज़रूरत है, लड़कियां खराब हो जाएंगी, भटक जाएंगी और गलत राह पे चली जाएंगी, तो उनको वो नहीं देना उचित समझते। और ये सोच तो बदलनी पड़ेगी, और इस तकनीकी के माध्यम से सरकार अब जो योजनाएं चला रही हैं, और हम जो जेंडर ना सोचें तो हम बराबर का काम करें, स्त्रियों और लड़कियों को भी मोबाइल का ज्ञान दें, उनको मोबाइल दें जिससे वो आत्मनिर्भर बने।
1: देखा आत्मनिर्भर बनावे के है अपने परिवार के बिटिया के महिला के, तो देखा विश्वास के साथ में, निगरानी के साथ में आगे बढ़े के चाहिए, है ना।
0: मतलब आपको देख दे दिया गया मोबाइल तो आप रील्स देख रहे हैं, नहीं उससे ज्ञान ज्ञान
1: ज्ञान
0: अर्जित
1: अर्जन
0: करें।
1: करके, बिल्कुल सही कहा। तो जब आप बतावत रही कि महिला और बिटिया के भी अधिकार, भाई देखा समानता के साथ
0: बहुत जरूरी है।

0: समान अधिकार होना चाहिए, जबकि जो कि ग्रामीणों में गांव में नहीं इस पर ध्यान देते, ये सुविधा दे रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा प्रदान कर सकती हैं, लड़कियों को जानकारी प्राप्त हो सकती है, महिलाओं को जानकारी, तो बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिसके माध्यम से हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है, इसलिए बराबर का समान अधिकार मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा हम एकरे साथ साथ ये जाने चाहब कि देखा इतना सुविधा देवे के बाद में जरूरी है कि कुछ सावधानी भी बरती जाए, तो सावधानी के संबंध में आप कुछ बताइए।
0: हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट की दुनिया में जितना वो उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, उतना ही सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड जो है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर महिलाओं को परेशान किया जाता है, और उन्हें क्योंकि ज्ञान नहीं होता इस वजह से, तो ये सब मामले बढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसके चलते महिलाओं को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे करें कि समय समय पर, तो ज्ञान ज़रूरी है, जैसे कि आप बैंक OTP या पासवर्ड को ना बताएं किसी से, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारियां, तस्वीरें सोच समझ कर डालें, जैसे कि आजकल अमूमन क्या होता है, सारी मोबाइल मिल गया, रील्स बनाया, फोटो अपलोड किया, किसी से भी बात कर रही है, तो ये सब बहुत नुकसानदायक होता
1: और
0: है,
1: बात व्यवहार में हम सभी अक्सर अपने परिवार के बारे में
0: हम
1: जानकारी
0: सब
1: दे
0: दे
1: देते
0: देते
1: हैं,
0: हैं।
1: तो देखा इससे बचे यही सावधानी है कि
0: और
1: अपनी निजी जानकारी
0: हाँ
1: कबों के ओके ना दें, अपन पारिवारिक जीवन सब कुछ तुरंत बिना विश्वास के
0: ना
1: सबके ओके
0: बताएं,
1: समक्ष प्रकट ना करें।
0: और जैसे किसी भी संदिग्ध लिंक है उस पे क्लिक भी ना करें, तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं हमें होनी चाहिए।
1: जहाँ देखा विश्वसनीय तरीके से कौन चीज सामने आवत है, वो जब हमें पता है कि हाँ यहाँ एकदम हम सुरक्षित ही, वहीं कदम आगे बढ़ावे,
0: हाँ,
1: है ना।
0: और ये भी होता है कि अगर हमें ऑनलाइन परेशान कर रहा है, तो साइबर सेल है, उसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑनलाइन हेल्पलाइन पर शिकायत करके दर्ज करिए, तो बहुत सी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, करने से हम बच सकते हैं, सावधानी रखने से हम सुरक्षित रहेंगे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, जब देश की बेटी, हर माँ हर बहन डिजिटल रूप से साक्षर होगी, तभी हमारा देश सही मायने में डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने आसपास के कम कि एक महिला को डिजिटल रूप से साक्षर बनाएं, उन्हें स्मार्टफोन चलाना सिखाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें।
1: तो देखा मोबाइल फोन इंटरनेट और डिजिटल सेवा का सही उपयोग सीखकर वो शिक्षा बैंकिंग स्वास्थ्य सरकारी योजना और स्वरोजगार से जुड़ सका थी। इतनी बढ़िया जानकारी पूनम जी आप हम सबके लिए, एक बदे बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी
1: देखा सरस्वती बहनी, महिलाओं में डिजिटल साक्षरता कितनी बढ़िया। पूनम तिवारी बहनी से गीता सिंह बहनी बातचीत करें और हमारे बहनी अरे भी ये जानकारी लिए हुई है और अपने आप में साझा करी है। तो चला अब ये जानकारी ये बातचीत सुनने के बाद में अब तो का एक ठे बढ़िया सा कहरवा सुनाई देती है हम, है ना। तो चला वंदना सरोज और साथी से सुन लीन जाई कहरवा

0: बिल्कुल।
1: कुल देखा गंगा मैया तो सबके नैया पाल गए, बस मन में श्रद्धा होवे के चाहिए।
0: देखा श्रद्धा से जो जात है ओकर नैया तो मैया जरूर पार लगाई बे करी है ना। और देखा आ तू हमार नैया पार लगा दे गुंजे बहिनी है ना। देखा हमका बहुत जोर से भूख लगी है और तू सच्ची मित्र हो कि नहीं।
1: देखा सच्ची मित्र खाते तो जान भी हाजिर रहते
0: है ना। तो तू जान मत दा, तू हमें जौन झोरवा में लौकी खीर रखे हो ना वही निकाल के दे दा।
1: अच्छा बहनी तू तो हमार तू मित्र मित्र कही।

0: छोलवा पे नजर धरे
1: रहो। तू हमार नैया पार करे के वादा करे हो, एक ठे खीर नहीं दे सकतू।
0: बिल्कुल
1: अब वादा करत हो जान देवे के जान मत दे।
0: ये तो एक अपने दिले की बात है, लेकिन कुल सबसे बड़ी मित्रता तो देखा अपन जो भाव से भाव जुड़ा है। और रही बात खीर खा के, तो बहनी टिफिन पूरा ले ला तू खा।
1: हाँ और चला बहनी हरन के भी बता दो, तू कैसे इतनी अच्छी खीर बनाए हो कि हमसे रुका नहीं जात बा।
0: देखा बहनी, तो आज हम सोचे थे अपने रसोईया में लौकी की खीर बना दी। हाँ तो देखा बहनी, पैसा से पहले सामग्री लिख लें। लौकी एक कप ले लें, एक कटोरी ले लें, कद्दूकस किया हुआ बीज निकाल दें, एक लीटर दूध ले लें बहनी, और देसी घी ले लें एक बड़ा चम्मच, चीनी चार या पांच बड़ा चम्मच ले लें स्वाद अनुसार, कोनों को मीठा पसंद होते ज़्यादा कोनों कम, और इलायची पाउडर ले लें पिसा हुआ इलायची, बारीक कटा हुआ मेवा काजू बादाम किशमिश पिस्ता। अब विधि जान लें बहनी, तो सबसे पहले लौकी का छील के धो लें और उकरे बीज के निकाल दें, कद्दूकस से कसा हुआ बीज जो होता है निकाल लें, उनमें लौकी के पानी के हल्के जो कसे हैं कद्दूकस उनका निकाल दें, पानी के गाड़ दें। अब लौकी का धीमे आंच में एक कढ़ाई में घी से भून लें चार मिनट तक। अब जो हमने दूध पका बाटे उमा भुना हुआ लौकी एक साथ मिलाए के पका लें धीमी आंच में, खीर तब तक पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। अब जब दूध गाढ़ा पक जाए तो उमा चीनी केसर और कटा हुआ मेवा डाल के दो से तीन मिनट तक ढक के पका लें ताकि चीनी अच्छे से उसमें घुल जाए। अब जौने उमा ऊपर से जो पिसी इलायची बताई बहनी ओका हल्का से डाल दें और धीमी आंच में बंद कर थोड़ी देर पका के ओके बाद चूल्हा बंद कर दें। अब हमारे लौकी की खीर बन के तैयार।
1: गुंजा देखा इतनी अच्छी तू हम खीर खिलाए हो, तो बहनी हरन एका बनावे अब खाएं तब आप सबके पता चली कितनी अच्छी खीर रही। अतः चला अब एक ठे गीत सुनवाए देती बढ़िया सा मुगले आजम से, चला सुन लीन जाए।

0: गुंजा देखा अब
1: नंदलाल
0: छेड़ गयो रे, तो चला अब एक ठे ईमेल संदेश सुन लीन जाए ताकि बहनी अरे आपन संदेश हम सब

0: पहुंचाए सके।
1: माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
1: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन, देर कोने बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
2: देखा बहनी, इतना बढ़िया संदेश सुनी हुई हमारे बहनी अरे भी, और हाँ। अपन प्रतिक्रिया हम से संदेश के माध्यम से व्यक्त करिए। मुला देखा अब
0: चले के बेला हो तो बहनी अरे
2: तो इशारा करा दिया है।
0: तो फिर मिला जाए तब तक बदे राम राम।

अभी ग्रामीण अंचल की बहनें अपना कार्यक्रम सुन रही थीं। पनघट ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हाँ कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझे और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: Defense Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS

0: Mark another escalation in Washington's campaign against Iran following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of a sanctions waiver that had allowed Tehran to sell oil. Today is World Population Day. Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today said that World Population Day underscores the importance of voluntary family planning, informed choices and healthy families as the foundation of inclusive and sustainable development. In a social media post, Mr. Nadda said that the theme, healthy timing and spacing of pregnancies for the well-being of mother and child and planned parenthood, and the campaign slogan, when children are spaced correctly, families become healthier and happier, reinforces the need to improve maternal and child health through informed reproductive choices and quality family planning services. On to sports. India will face England in the fifth and final T20 international of the series today at Utilita Bowl in Southampton. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina face Switzerland tonight in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया. 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया. कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया. कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है. परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया. बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ाने रद्द और स्कूल बंद. भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा. और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए

0: भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य

0: के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
3: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब

0: नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का

0: ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुष्योतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं जंग बहादुर यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

और आइए आप सुनते हैं लाल बहादुर रागी और साथियों के स्वर में लाचारी।

लोकगीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय ठीक 3 बजे हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम की सभा में 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सभा के आरंभ में सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत और आज के कलाकार हैं रजवंत सिंह पटेल और साथी। पहले सुनते हैं इनसे कहरवा।

रजवंत सिंह पटेल और साथियों से अभी आपने सुना झूमर। अब आइए अंत में सुनते हैं रजवंत सिंह पटेल और साथियों से पूर्वी।

0: रजवंत सिंह पटेल और साथियों के गाए पूर्वी के साथ ही कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों. शाम के इस रिलैक्सेशन वाले टाइम में आपका स्वागत है आपके अपने युवा कार्यक्रम युववाणी में. मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव और उम्मीद है दोस्तों आपका दिन शानदार रहा होगा. अब वक्त है कुछ दिलचस्प बातें करने का, कुछ नया जानने का और कुछ ऐसा सोचने का जो हमारे आज और कल दोनों से जुड़ा हुआ है. दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कॉलेज की एडमिशन लाइन, जॉब्स के फॉर्म भरने वालों की भीड़, बसों और ट्रेन्स की भीड़, हर जगह लोगों की बड़ी संख्या दिखाई देती है. ऐसे में एक सवाल मन में ज़रूर आता है, क्या बढ़ती जनसंख्या केवल चुनौती है या इसके अंदर अवसर भी छिपे हैं? इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे क्योंकि आज है 11 जुलाई, यानी आज पूरी दुनिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मना रही है. इस दिन का उद्देश्य सिंपल है कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दे जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, रिसोर्सेज हो गए, इनके बेहतर यूटिलाइजेशन और यूज़ के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, उसे हमें बढ़ाना है. जनसंख्या सिर्फ संख्या नहीं होती दोस्तों, बल्कि देश की कार्यशक्ति, प्रतिभा और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है. इस दिन का इतिहास देखें तो दरअसल 11 जुलाई को 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी. इस ऐतिहासिक पड़ाव ने पूरी दुनिया का ध्यान जनसंख्या से जुड़े मुद्दों की ओर खींचा और इसी के बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का

फैसला लिया और 1990 से यह दिवस दुनिया भर में मनाया जाने लगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी अब बात करते हैं जनसांख्यिकीय लाभ की, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की। जब किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों की तुलना में ज़्यादा होती है, तो आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर पैदा होता है और इसे ही जनसांख्यिकीय लाभ कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन ये लाभ तभी मिलता है जब यूथ को अच्छी एजुकेशन दी जाए, स्किल्स दिए जाएँ, ट्रेनिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी टीम में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हों लेकिन उन्हें सही कोचिंग और मौके ना मिले तो उनकी क्षमता पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। यही बात युवा आबादी पे भी लागू होती है। और दोस्तों, इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनुकूलतम संख्या, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ईजी वर्ड्स में कहें तो ये ऐसी स्थिति है जहाँ किसी भी देश की जनसंख्या और उपलब्ध संसाधन, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, इनके बीच एक बैलेंस होता है, एक संतुलन बना रहता है। अगर जनसंख्या बहुत कम हो तो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, और अगर बहुत अधिक हो जाए तो संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए संतुलन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी भी देश की दोस्तों असली ताकत केवल उसकी जनसंख्या से नहीं बल्कि उसकी शिक्षित, स्वस्थ और कुशल युवा शक्ति भी होती है। और इसीलिए आज ज़रूरत है सीखने की, कौशल विकसित करने की और अपनी क्षमता को सही दिशा देने की, ताकि हम जनसंख्या को बोझ नहीं समझें बल्कि विकास की ताकत बना सकें। तो दोस्तों, ये हमने बात करी विश्व जनसंख्या दिवस की। तो आपको जैसे पता है कि हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए अलग अलग सेगमेंट्स लाते हैं, अलग अलग बातें लाते हैं, गीतों का पिटारा भी लाते हैं। तो इसी से जुड़ी हमारे पास एक वार्ता भी है, मगर उस वार्ता को सुनाने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों चलिए अब सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव और वार्ताकार हैं ऋषिता ओझा।
1: वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है जिसके कारण संसाधनों पर भी बहुत दबाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले दबाव से पहले हमें ये जानना भी आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि है क्या। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र जैसे कोई गांव, शहर, देश या संपूर्ण विश्व में एक विशेष समय अवधि आमतौर पर 10 वर्ष या 1 वर्ष के दौरान वहाँ के निवासियों की कुल संख्या में होने वाले बदलाव से है। यह परिवर्तन सकारात्मक बढ़ती हुई जनसंख्या या नकारात्मक घटती हुई जनसंख्या दोनों हो सकता है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से हम इसके कारणों से समझ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है जन्मदर। जन्मदर अधिक होने पर जनसंख्या बढ़ती है। ठीक इसी तरह से मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या वृद्धि होती है। जब लोग बेहतर अवसरों, रोजगार या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इससे दूसरे स्थान से आकर बसने वाले और बाहर जाने वाले लोगों की गिनती होती है और यही कारण है कि प्रवास भी जनसंख्या के बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि के और भी कारण हैं जिसमें शिक्षा का अभाव एवं परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, विवाह की अनिवार्यता आदि अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसकी वजह से आज जागरूकता के बावजूद निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में विवाह को एक धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकता माना जाता है। विवाह के बाद परिवार नियोजन के उपायों को न अपनाने से जनसंख्या वृद्धि होती है। वर्तमान समय में विभिन्न योजनाओं के बावजूद लोगों के अंदर परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है। भारत में आज भी गर्भ निरोधक का प्रयोग विवाहित महिलाएं कम ही करती हैं। भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित उम्र स्त्री की 18 और पुरुष की 21 वर्ष होने के बावजूद भी कई जगहों पर विवाह कम उम्र में हो जाता है, जिसके कारण कम उम्र में संतान का जन्म जनसंख्या वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमें इसके कारणों का निवारण करना आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर भी पड़ रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे बेरोजगारी, भुखमरी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सीमित संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से प्रति व्यक्ति आय घटती है और जीवन स्तर में भारी गिरावट आती है। बढ़ती हुई आबादी के कारण हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण

काम करने वालों लोगों की संख्या में भारी वृद्धि होती है, लेकिन उस अनुपात में रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। अवसर जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि की समस्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिससे लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण अस्पतालों की संख्या हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त न होना है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण

बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण अस्पतालों की संख्या हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त न होना है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अभी भी शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्तमान समय में भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और वह अपनी तेजी से बढ़ती आबादी के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या से पर्यावरण का क्षरण भी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कूड़ा करकट ध्वनि और वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अधिक जनसंख्या के कारण रोजगार के लिए शहरों में बढ़ती हुई भीड़, ट्रैफिक जैम, आवास की कमी और गंदगी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। अधिक जनसंख्या के कारण जल, भोजन, ऊर्जा और आवास जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या से संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण हमारा देश आज विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत केवल एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को अपना कर ही जनसंख्यिकीय बदलाव का लाभ उठा सकता है और अपनी बढ़ती आबादी के लिए न्यायसंगत और सतत विकास हासिल कर सकता है। हमारे पास भूमि, जल और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके अनुपात से अधिक जनसंख्या का बढ़ना हमारे देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। अधिक लोगों के लिए अधिक भोजन, आवास और सुविधाएं की आवश्यकता होती है, जिससे इनका अत्यधिक दोहन होता है और पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग पूरी करने के लिए भूमि, खनिज और ईंधन का अंधाधुंध उपयोग होता है, जिससे ये तेजी से खत्म हो रहे हैं। अधिक उपभोग और कचरे निस्तारण में कमी के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग पढ़ाई एवं रोजगार के लिए शहरों में आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शहर में भीड़ बढ़ने लगती है, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होने लगता है और यही कारण है कि बिजली, पानी, गुणवत्ता में कमी आती है। वर्तमान समय में जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कृषि भूमि कम हो रही है, जिसके कारण जंगलों को काटकर खेती योग्य बनाया जा रहा है, जो हमारे जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को रोकने के लिए इसका निवारण करना आवश्यक है। जनसंख्या पर स्थायी एवं स्वैच्छिक नियंत्रण के लिए शिक्षा प्रसार ही एकमात्र उपाय है। लोगों में जागरूकता लाना व छोटे परिवार के महत्व को समझाना, जिससे जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जा सके। नसबंदी ऑपरेशन एवं कोऑपरेटिव निवेशन की सेवाएं गुणवत्ता के साथ प्रदान की जाएं, जिससे लोग आगे आएं। सरकार द्वारा राजनेताओं, पंचायत, नगर पालिका, सहकारिता कानून में संशोधन, राज्य में नौकरी प्राप्त करने हेतु कानून संशोधन कर 2 संतान की अवधारणा को कड़ाई से लागू किया जाए। अतः विवाह की आयु का कड़ाई से पालन होगा, तभी इससे संतान उत्पत्ति की दर में गिरावट आएगी। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना, खाली औपचारिकता ना हो, 2 बच्चों से अधिक की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से भी दबाव का निवारण संभव है। व्यक्ति अपने आप को समाज में सुरक्षित व बुढ़ापे के लिए संतान उत्पत्ति करता है, उसे सामाजिक बीमा, वृद्ध अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना के समय सहायता आदि व्यवस्थाएं कम संतान के प्रति प्रेरित करेगी। कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। भारत सरकार को कड़ाई से शारदा एक्ट लागू करना चाहिए।
प्रभावी जनसंख्या नीति 2000 को कड़ाई से लागू

0: लागू किया जाए। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकारी स्तर पर 1952 से चालू है। सरकार को दुलमुल खैय छोड़कर इसे कड़ाई से लागू करना चाहिए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो
1: दोस्तों, अभी आपने रितिशा ओझा की आवाज़ में सुनी वार्ता, जिसका शीर्षक था जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर बढ़ता दबाव। तो हमें उम्मीद है कि इस वार्ता में आपने जाना कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने मल्टी डायमेंशनल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वार्ता बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको इसके बहुत ढेर सारे आयाम पता चले होंगे और कितना ज़्यादा ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सारी फील्ड्स को, सारे एरियाज़ को कैसे अफेक्ट करती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये वार्ता आपको कैसी लगी बताइएगा हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अपने प्रेरणापूर्ण सेगमेंट पे। दोस्तों, अक्सर हम सफलता की चमक तो देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्षों को नहीं। कुछ लोग अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल सहते नहीं हैं बल्कि उन्हें समाज के लिए सीख और प्रेरणा में बदल देते हैं। आज प्रेरणापुंज में हम ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनकी कलम ने मानवता, संवेदना और सामाजिक चेतना को नई आवाज़ दी। प्रख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था लेकिन उनका जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था भारत विभाजन का दौर। उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को घर बार छोड़ते, रिश्तों को टूटते और सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता को देखा। जिस धरती पर उनका बचपन बीता था वो अचानक एक नई सीमा के पार चली गई थी। विस्थापन और बिछड़ने का ये दर्द उनके जीवन का गहरा अनुभव बन गया। लेकिन उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों को निराशा में बदलने के बजाय साहित्य की शक्ति में बदल दिया। उन्होंने समाज के दर्द को महसूस किया और उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस इसी अनुभव की उपज माना जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि विभाजन की त्रासदी का मानवीय दस्तावेज है, जिसने पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरत की कीमत कितनी बड़ी होती है। दोस्तों, संघर्ष केवल परिस्थितियों से नहीं होता, कभी कभी अपने विचारों पर डटे रहना भी संघर्ष होता है। भीष्म साहनी ने हमेशा मानवता, समानता और सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना बल्कि समाज को आईना दिखाने का माध्यम भी बनाया। उनकी भाषा सरल थी लेकिन विचार बेहद गहरे, और यही कारण है कि उनकी रचनाएँ आम लोगों के दिल तक पहुँची। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और अनुवाद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं में शामिल है तमस। उपन्यासों की बात करें तो उसमें शामिल है बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो और झरोखे। कहानी साहित्य की बात करें तो चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, पाली, और नाटक की बात करें तो कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि। वो मानते थे कि लेखक का दायित्व केवल लिखना नहीं होता बल्कि समाज के प्रति सजग और संवेदनशील बने रहना भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी इंसान की संवेदनशीलता और रचनात्मकता को नहीं रोक सकती। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों और सामाजिक उथल पुथल को सकारात्मक सृजन में बदला, और उन्होंने दिखाया कि सच्ची सफलता केवल प्रसिद्धि में नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, यदि हमारे भीतर संवेदना, साहस और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी है तो हम समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसी प्रेरणा के साथ दोस्तों, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि सैटरडे को हम आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेके आते हैं, आज की शाम आपके नाम, और हम अपने प्रोग्राम में हिंट्स भी दे रहे थे गानों के ज़रिए कि आप थोड़ा सा गेस करिए कि आज की शाम आपके नाम सेगमेंट में किसकी बात करेंगे। तो एक हिंट आपके लिए और

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स.

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, गेस कर पाए क्या आप, हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ना कोई बनावटी अंदाज, ना कोई दिखावा, बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट और चुलबुला सा व्यक्तित्व जो सीधे दिल में उतर जाए। आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, उनकी हंसी पर्दे पर गूंजे तो दर्शक मुस्कुरा उठते थे, उनकी आंखें बोलती थीं और उनकी सादगी उन्हें भीड़ से अलग करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज की ये खूबसूरत शाम समर्पित है बॉलीवुड की मिस स्माइल कहे जाने वाली जूही चावला के नाम। दोस्तों, जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हुआ और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने 1984 में मिस इंडिया 1984 का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते अपनी अलग पहचान बना ली। 80 और 90 के दशक में जब बड़े पर्दे पर उनकी एंट्री होती थी तो दर्शकों को एक ऐसी नायिका दिखाई देती थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद सहज और जीवंत भी थी। और जब बात जूही चावला की हो दोस्तों, तो उन पर बहुत ही ढेर सारे गाने फिल्माए गए हैं। तो आइए सुनते हैं जूही चावला पर फिल्माया गया ये बेहद प्यारा गीत।

स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जूही चावला उन अभिनेत्रियों में रहीं जिन्होंने रोमांस हो, कॉमेडी हो या भावनात्मक किरदार, हर भूमिका को बड़ी सहजता से निभाया। कयामत से कयामत तक उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई। और इसके बाद हम हेरा ही प्यार के, डर, यस बॉस, इश्क और बोल राधा बोल जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का चहेता सितारा बना दिया। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो पर्दे पर बिल्कुल बनावटी नहीं लगती थी। दोस्तों, शोहरत अक्सर लोगों को बदल देती है, लेकिन जूही चावला की पहचान उनकी सादगी और सकारात्मक सोच से रही है। फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि आज भी उन्हें बड़े सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है। सिनेमा के अलावा पर्यावरण संरक्षण हो और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में उनको देखा जाता है और उनकी सक्रिय भागीदारी भी देखी जाती है। कहते हैं, असली स्टार वही होता है जिसकी चमक सिर्फ पर्दे पर नहीं होती बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी दिखाई दे, और जूही चावला इस बात का सुंदर एग्जाम्पल है। हर दौर की दोस्तों अपनी अपनी यादें होती हैं। 19 के दशक की उन सुनहरी यादों में जूही चावला की मुस्कान भी शामिल है। आज भी जब उनकी फिल्मों या गीत देखते हैं, सुने जाते हैं, तो एक ताजगी, एक अपनापन और एक सादगी महसूस होती है। 19 के दशक के दौर में जब कई अभिनेत्रियां ग्लैमरस छवि बनाने में लगी थीं, तो जूही ने अपनी पहचान बनाई अपनी स्वाभाविक मुस्कान से, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से और जीवंत अभिनय से। उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान, ऋषि कपूर, सनी देओल और कई बड़े सितारों के साथ काम किया, लेकिन अपनी अलग पहचान हमेशा बनाए रखी। हम हेरा ही प्यार के में उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, डर में भावनात्मक अभिनय हो या यस बॉस में उनकी चुलबुली अदाएं, हर किरदार में उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जूही चावला ने कभी खुद को एक ही तरह के किरदारों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने रोमांस किया, कॉमेडी की, पारिवारिक फिल्में भी की और गंभीर विषयों वाली फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज की शाम हमने बिताई उस अदाकारा के साथ जिसकी मुस्कान ने न जाने कितनी फिल्मों को यादगार बनाया, जिसके चुलबुले अंदाज ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया और जिसकी सादगी आज भी उतनी ही प्यारी लगती है जितनी सालों पहले लगती थी। कभी रश्मि बनकर, कभी वैजंती बनकर, तो कभी अपने मासूम और जीवंत किरदारों के जरिए जूही चावला ने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और प्यार करना भी सिखाया। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जूही चावला का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले कौन सा गीत, कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आता है, तो यकीन मानिए हर श्रोता का जवाब अलग होगा, लेकिन उसके साथ एक मुस्कान ज़रूर होगी, क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं, और जूही चावला उन्हीं सितारों में से एक हैं।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। और आपको जैसा कि पता है कि हम प्रोग्राम के एंड में Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा क्वेश्चन था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। आज का हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप अपने आंसर्स हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर भेज सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर 8004926250 पर। और इसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आप हमको आज के प्रोग्राम का रिव्यू भी भेज सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया

की खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। तो पहले आज के शेष कार्यक्रम, रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर रंजन वाजपेयी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। विषय होगा दांतों की आम समस्याएं एवं उनकी समुचित देखभाल। साथ ही गुलाब सिंह यादव और साथियों से लोकगीत सुनेंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता होगी विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। सुगम संगीत के कार्यक्रम में चित्रा चौरसिया से भजन सुनिएगा 7:45 पर। 8 चित्रपट संगीत और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, ये हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे श्री राम लखन पाल से की गई बातचीत। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश राज की वार्ता होगी बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक द्वारा उपचार। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और 12:15 पर पंडित भास्कर दास का बांसुरी वादन। नमस्कार प्रयागराज का समय होगा 8:45।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 12:30 पर और रात 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आदित्य राज और शाम 7:45 पर आयना बोस से गीत और वचन सुनिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में कलाकार होंगे 10:05 पर सुषमा मौर्य, सुरेंद्र प्रताप सिंह और साथियों से। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे श्यामलाल बेगाना, दिनेश कुमार और अजय राज यादव और साथियों से। 10:30 पर सेहत की बात के अंतर्गत सुनिएगा बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथी द्वारा उपचार। डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत होगी दिन में 10:30 पर। बच्चे अपना कार्यक्रम बाल संघ सुनेंगे 11:15 पर। 1:15 अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनिएगा हेलो अनुरोध, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5 बजे ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल में उमेश चंद्रा की वार्ता कहानी मानसून की। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर होगा और 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे आर्यन सिंह से की गई बातचीत, युवा अपने कौशल उद्यमता को कैसे दें नए आयाम। और साथ ही दिनेश कुमार और साथियों से लोकगीत सुनेंगे। 7:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा और 8 बजे श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में। 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है और 9:30 पर गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा कहकशा। तो ये थे हमारे कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। ननकू लाल हमें सूचित करते हैं कि पुरुषोत्तम लाल 9 जून 2026 से भरवारी में 8 बजे से ये लापता हैं। इनकी उम्र जो है 55 वर्ष है। इनकी लंबाई जो है 5.5 फिट है। रंग सांवला है। इन्होंने काली लोअर फिरोजी कलर की शर्ट पहने हुए। मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हैं। इनके बारे में कुछ भी पता चले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। कौशाम्बी कोखराज, थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी।

विष्णु हमें सूचित करते हैं कि नारद, जो कि 15 जून 2026 से ये गौसपुर टिकरी थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से ये लापता हैं, इनकी उम्र जो है 45 वर्ष है, लंबाई 5 फीट है, रंग गेहुआ है, इन्होंने जीन्स और शर्ट पहने हुए हैं, हवाई चप्पल पहना हुआ है। इनके बारे में कुछ भी पता चले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, गौसपुर टिकरी मंझनपुर ज़िला कौशाम्बी। इनका मोबाइल नंबर है 7518779808।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर 6:20 होने को हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धाः सामरिक सहभागिता स्तरे समेधिताः। 30+2000 वर्षं यावत् पारस्परिक व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकाणां लक्ष्यं निर्धारितम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कथनं न्यूजीलैंड देशे निवसता भारतीय समुदायेन द्वयोः राष्ट्रयोः विकास यात्रायाम् एकः महत्वपूर्णो भागः ऊढः। ऑकलैंड नगरे विशालं भारतीय प्रवासी समुदायं च संबोधितवान् असौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन स्वदेशी तंत्रेण निर्मितस्य आईएनएस महेन्द्रगिरी युद्धपोतस्य विधिवत् जलावतरणं विधापितम्। संसूचितं च यत् भारतम् एकं सुदृढं आत्मनिर्भरं भविष्योन्मुखं च रक्षाबलं निर्माति। परिवहनक्षेत्रे प्रौद्योगिकी नवोन्मेष संचालित सहयोगं सुदृढं विधातुं ऐतिहासिकं ब्रिक्स मंत्री घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या अंगीकृतम्। बावी चक्रवातस्य कारणात् जापान तैवानयोः विमानयात्राः निरस्तीकृताः। शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां संपाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः सम्बन्धान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपान्तरितवन्तौ। अनेनैव सह 30+2000 वर्षं यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं 5-वर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में

0: क्रीडाङ्गणे भविता। क्रीडेयं भारतीयसमयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचों राम राम, राम।
1: का हो भोला भाई, का होत बा खेती किसानी में?
0: अरे भैया सब देखा, खेती किसानी में तो इस समय बस धान के लगवाही के समय यहाँ है और देखा दो दिन से जो है धान के लगवाही में लगा है।
1: बिल्कुल सही कही गया भैया। देखा ये खरीफ का मौसम जो चलत बने हो, देखा हमन भैया देखा धान का लगवाही चलत ब और साथे साथे भैया देखा जौन अपन दलहन और तिलहन वाली फसल में ओहो की बुआई चलत ब।
0: बिल्कुल भैया,
1: और समय समय पे दऊ राजा देखा छीटा मार देत बाटे।
0: बिल्कुल भैया, यही का तो देखत भाई, देखा हम कहे कि अब सही समय बाटे।
1: बिल्कुल
0: और बेहन एकदम तैयार रही, हम कहे भैया देखा तुरंत खेते के सारा काम हम पहले से करे रहे और हम कहे देखा बरसा तनिक पानी ट्यूबवेल से लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: पूरा जो ना है धान लगवा दे, अब एक दिन और बचा बा, कल हो पूरा कई दिन जाए।
1: बिल्कुल भैया देखा, चतुर किसान की है पहचान बाहो कि भैया देखा समय से अपन खेती किसानी के काम निपटाई ले।
0: बिल्कुल भैया,
1: हम तो कहब देखा कुछ किसान भैया हरेन जोन पीछे बेहन डाले, अब कुछ किसान भैया हरेन के देखा गर्मी पड़त रही विशाल जौन है ना, तो उमर बेहन डाले रहें तो उनका जौन है नर्सरी में कुछ जमाव कम आए। तो मुला हम तो कहब देखा किसान भैया हरे अगर धान का सीधी बुआई कह दिए तो भैया वह जौन है बढ़िया उत्पादन हो, तो वह से हमारे पड़ोसी हैं ना हो भोला भाई, देखा वो अपन जौन है सुपर सीडर से धान का बुआई करे हैं।
0: अच्छा,
1: जौन बढ़िया धान जाम बा के भैया देखा हो से लगवही से बढ़िया जौन है।
0: अच्छा अच्छा,
1: उमन का बा कि देखा उनके खरपतवार नियंत्रण में भी जौन है आसानी होत है और जौन खाद उर्वरक डालत है वह भैया देखा बढ़िया तरीके से जौन है लग जाता है।
0: बिल्कुल तो भैया देखा खेती किसानी में अब जितना नई नई तकनीक आएगा वा, अगर ओके हम लोग सही तरीके से उपयोग करी तो जो ना खेती किसानी में बहुत बहुत सारी सरलता आई जाए।
1: बिल्कुल सही कह गया भैया हो भोला भाई। देखा आज एक खास दिन बाटे 11 जुलाई।
0: बिल्कुल भैया,
1: भैया देखा आज के दिन जौन है विश्व जनसंख्या दिवस जौन है भैया देखा पूरे विश्व में जौन है मनावा जाता है।
0: बिल्कुल भैया कह गया, देखा अभी ऐसा विषय है ना भैया कि ए पे तो जो ना हर दिन बात हो चाहिए।
1: बिल्कुल भैया देखा एकर जौन ये दिवस बजौन है एकर मुख्य उद्देश्य बाटे कि परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से जैसे भैया ये महत्वपूर्ण विषय पे जौन है देखा चर्चा होते है, एकरे प्रति जागरूक रहे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: कि भैया देखा अपन अगर जनसंख्या पे जौन है नियंत्रण होए तो भैया देखा हर चीज सही रहे।
0: बिल्कुल भैया देखा का है ना, अब संसाधन तो बहुत सीमित है, अगर हम जनसंख्या ऐसे बढ़ावत रहबे तो कल के समय ये आई कि जो ना है हम अपने जो आवे वाली पीढ़ी है ओका पूर्ण रूप से कोनो भी चीज के सुविधा ना दे पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब भैया देखा जैसे खेत बाड़ी है, अब देखा जो खेत बाड़ी रहे ने अब धीरे धीरे छोट हो जाता है, परिवार बढ़ाता है और खेत छोट होता है, ऐसी का होता है खेती किसानी में भी दिक्कत आती है और खर्चा भी बढ़ाता है खेती किसानी में, पैदावार भी कम होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो भैया देखा हाँ बोला बा हम तो कहा देखा बात बत कही हुई मुला अपने पंचायती में का लेके आया बटा अपने पंच भैया इनके सुनो बा तुम पहले बतावा।
0: भैया देखा आज अपने पंचायती में तो जो ना है लोकगीत सुनवाओ जो ना है गुलाब सिंह यादव और साथी के और साथी भैया देखा आज तो परिवार कल्याण के बात ओके दिन है तो हमें आज कुछ ना स्वास्थ्य संबंधी कुछ बात हम लोग करी थी। आज देखा बहुत विशेष बातचीत बाटे दांतों की आम समस्याएं एवं उनकी समुचित देखभाल।

0: एपे देखा डॉक्टर रंजन वाजपेयी से अभिनव प्रग पांडे भैया की बातचीत बा, यहो सुनवा जाए। लेकिन हम कहा कि देखा ढोल मजीरा जब बज जाते ना तो पंचायत के रंग जम जाते,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: हमारे किसानों भैया देखा दिन भर धान के लगवाई से थका हुई, तो बढ़िया लोकगीत सुने और फिर उसके बाद बात बात कही हुए
1: सुनवा दे भैया।
0: भैया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया, देखा हो?
4: हाँ भैया,
3: गुलाब सिंह यादव संघातीन के साथ साथ भैया देखा विकास गीत हो गए और साथ साथ सनेश भी हो गए।
4: बिल्कुल भैया।
3: अब देखा भोला भाई जो कहा रहे आज देखा परिवार कल्याण के बात बा, तो दांतों की आम समस्याएं एवं उनकी समुचित देखभाल कैसे बा का बात जो है यह पर देखा डॉक्टर रंजन वाजपेयी से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत बाटे। भैया तू सुना और पंच भैया।
4: बिल्कुल भैया सुनवाई दें।
5: श्रोताओं नमस्कार, पंचों राम राम। श्रोताओं आज हम एक नया साक्षात्कार लेकर के आए हैं और ये साक्षात्कार आधारित है दांतों के ऊपर। जी हाँ, दांत हमारे शरीर का वो हिस्सा जो अक्सर सबसे कम जिस पर हम ध्यान देते हैं, फिर भी वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से पूरी ईमानदारी के साथ करता है। दांतों के बारे में साहित्यकारों ने भी अलग अलग बातें कही हैं, लिखी हैं। किसी ने उसकी तुलना मोतियों से की है तो किसी ने दाड़िम यानी कि अनार से की है। अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से दांतों को बताया गया है। लेकिन क्या हो अगर ये दांत हमारा साथ देना बंद कर दें या हमारी लापरवाही से कुछ एक ऐसी बीमारी उसमें हो जाए कि हम खाना ही अपना उस रूप में ना चबा पाएँ, ना खा पाएँ जो हमको जिस तरह से वो पेट में जाना चाहिए। हम सबको पता है कि पेट में आमाशय में जब खाना जाता है तो वो दांतों से चब करके दांत उसको चबाते हैं, उसमें कुछ लार मिलती है, सलाइवा मिलता है, तब जा कर के वो जठर रस उसको अच्छे से पचा पाते हैं पेट में। लेकिन ये जो शुरुआती मुंह में रखने के बाद दांतों की चबाने की प्रक्रिया है, हमारी लापरवाही से, हमारी किसी गलती से या फिर किसी अन्य कारण से इसमें किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो क्या हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं और हम ऐसा क्या करें कि हमारे दांत हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें जब तक वो रह सकते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है प्रयागराज के प्रख्यात दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट डॉक्टर रंजन वाजपेयी को। डॉक्टर रंजन वाजपेयी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत सारे मुहावरे हैं दांतों के ऊपर, दांतों तले उंगली दबाना, दांत काटी रोटी होना, क्यों इतने महत्वपूर्ण है दांत हमारे शरीर के लिए?
6: आपका चेहरा आपके पूरे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो जिस तरीके से आपका चेहरा आपके पूरे शरीर के लिए आपके पूरे शारीरिक संरचना का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर की जो चेहरा है, शरीर के अंदर के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनका जो चेहरा है वो दांत और जीभ को मिलाकर

0: के जो कैविटी बनती है, मतलब कि मुंह के अंदर का भाग, जिसको कि इंग्लिश में ओरल कैविटी कहते हैं। अब जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या बीमारियां हो सकती हैं, देखिए हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत ढेर सारे पेशेंट्स को देखते हैं। ऐसा समझ में आता है कि लोग अपने चेहरे के ऊपर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे सनस्क्रीन्स लगा रखे हैं, अच्छे अच्छे सीरम्स लगा रखे हैं, परंतु लोगों को कई बार आने पे देखने में समझ में आता है कि एक बहुत खूबसूरत सा आदमी आ रहा है, लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है उसे समझ में आ जाता है कि नहीं साहब, इसके अंदर की स्थिति तो बहुत खराब है। पहले मैं सबसे ज़्यादा आप श्रोताओं को एक जानकारी देना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुंह में जो कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु सबसे ज़्यादा आपके हार्ट अटैक का कारण होते हैं।
1: मुंह के
0: मुंह के
1: कीटाणु
0: कीटाणु
1: हार्ट अटैक का
0: हार्ट
1: कारण।
0: अटैक का कारण होते हैं। जब वो हार्ट में जाते हैं, चूंकि हमारे यहाँ जो प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं, और इनमें जो कीटाणु होते हैं, प्लाक और कैलकुलस, जिससे कि लोगों को पायरिया होता है, आपकी भाषा में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पायरिया हुआ, तो पायरिया क्यों हुआ? जो पायरिया करने वाले कीटाणु होते हैं वो आपके मसूड़ों को तो खराब करते ही हैं, आपके मुंह में बदबू भी उत्पन्न करते हैं, परंतु वो अंदर जा कर के सबसे ज़्यादा नुकसान आपके हार्ट को करते हैं। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो कि इन कीटाणुओं की वजह से होती है। तो हम लोगों ने कई शोध में ऐसा पढ़ा है कि दांत के या मुंह में पाए जाने वाले जो गंदे कीटाणु होते हैं,
1: जी
0: उन कीटाणुओं की वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यदि हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो स्वाभाविक सी बात है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके शरीर के हर अंग पे पड़ेगा,
1: जी
0: आपके लंग्स पे भी उसका असर आएगा, आपकी किडनी लिवर पे भी असर आएगा। दूसरी बात कि भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको ये दांत दिए, 32 दांत दिए, किस लिए दिए? आपके दांत, अगर आप अपने चेहरे को देखें, आप बगैर दांत के अपने चेहरे की कल्पना भर कीजिए, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेंगे आपको,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है, परंतु खराब तो लगेंगे, ये तो आपकी शारीरिक संरचना और ये खूबसूरती की बात हो गई। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एक और पार्ट है, वो ये है कि आपको ईश्वर ने दांत, ईश्वर ने कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं दिया हमको, या प्रकृति ने, जिससे हमको कोई उपयोग ना हो। खास तौर ग्रामीण अंचलों में, खास तौर पर दांतों को सबसे ये माना जाता है कि कोई बात नहीं, दांत गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भी है, आज के दांत, आज के समय में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, हम लोग दांत तो लगा देते हैं, परंतु उसके लिए पेशेंट को कई लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं।
1: जी
0: दूसरी बात, जहाँ से मैंने शुरू किया था, जो दूसरा बिंदु था, यदि दांत ही नहीं है, आप कल्पना करिए, तो आप खाने को चबाएंगे कैसे? अगर आप खाने को ठीक से चबाएंगे नहीं, तो आप उसका स्वाद ठीक से नहीं पा पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और स्वाद नहीं पा पाएंगे तो आपका भोजन बिल्कुल खराब धीरे धीरे होता जाएगा। और मैं आप सभी श्रोताओं से एक प्रश्न करूंगा कि भगवान ने हमको मुंह में तो दांत दिए हैं, आंतों में तो दांत दिए नहीं हैं,
1: जी
0: तो अतड़ियों के पास ये कार्य नहीं है कि वो आपके लिए गए, खाए गए भोजन को चबाएंगी या तोड़ेंगी, मरोड़ेंगी, च्यू करेंगी। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन यही करना चाहता हूं कि देखिए, दांत आपके शरीर की आंतरिक संरचना का बाहरी रूप है, जो आपको दिख जाता है, अंदर की चीजें और आप नहीं देख सकते। यदि यही खराब होगा तो आपके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ना शुरू कर
1: बिल्कुल,
0: देंगे।
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब, कि हम अपने चेहरे की रंगत सुधारने के लिए, सुंदरता के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक जो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है मानव मात्र का, मुस्कुराहट। क्योंकि ईश्वर ने ये जो नेमत दी है, ये इंसानों के अलावा और किसी जीव को नहीं दी है, मुस्कुराने की। और मुस्कुराने में सबसे पहले जो दिखता है वो होते हैं आपके दांत। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक हो ना? अभी बातचीत में आपने एक बात कही दांत गिरने की। आजकल इसे एक सहज प्रश्न मन में उठ रहा है कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में, जैसे एक पीढ़ी पहले की बात करें, तो दूध के दांत गिर जाया करते थे जल्दी। आजकल कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चों के दांत 7 7 8 8 साल, 10 10 साल तक नहीं गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब, कुछ विषय आप इसको कैसे देखते हैं एज चिकित्सक के तौर पर?
0: देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम लोग

0: अपनी रोजाना की रूटीन प्रैक्टिस में इन सब चीज़ों को देखते हैं, परंतु अभी भी ये शोध का विषय है, इस पर शोध हो रही है। लेकिन हम लोग जो बिना शोध के और अपने एनालिसिस से जिन चीज़ों को समझ पाते हैं
1: जी
0: कि दांतों का ना गिरने का या समय पे ना गिरने का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि आज के समय में हम लोग उतने अच्छे पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर टूथ जर्म जो डेवलप हो रहा है, जैसे कि दूध का दांत एक जर्म, टूथ जर्म उसको कहते हैं, उसकी वजह से आता है। फिर जब वो टूथ जर्म नीचे से एक परमानेंट टूथ जो होता है, जो हमेशा जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने के लिए होता है, उसका भी एक टूथ बड होता है, वो डेवलप कर रहा होता है। तो जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशनल और मल्टीविटामिन्स नहीं मिल पाते हैं सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में होता है। दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम और भी आ रही है, जैसे कि आपने कहा कि दांत समय पे नहीं गिर रहे हैं, तो दांत यदि समय पे नहीं गिर पा रहे हैं तो देखने में आ रहा है कि दांत कहीं आगे से निकल आ रहे हैं तो कहीं पीछे से निकल जा रहे हैं, उस दांत को वहीं छोड़ दे रहे हैं।
1: जी जी जी
0: उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं हम लोगों, मतलब डिफेक्ट्स क्या कहेंगे, जैसे कि जेनेटिक कैरेक्टर्स जो कैरी करते हैं लोग, जैसे कि आपने अपनी माता जी का जबड़ा ले लिया और पिताजी के दांत ले लिए, जीन्स से हमको ये मिला बर्थ के टाइम पे। तो जबड़ा माता जी है तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटा होगा, और पिताजी के दांत स्वाभाविक सी बात है बड़े होते हैं। तो उन कंडीशंस में भी ऐसा देखने में आता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, और कभी पीछे से आ जा रहे हैं, कभी आगे से आ जा रहे हैं। खैर, ये अभी भी शोध का विषय है, मैं भी इस पे शोध कर रहा हूँ, हमारे साथ के लोग भी इस पे शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों में इस तरीके की कोई भी परेशानी देखते हैं कि 6 साल हो जाने पर भी दूध के दांत गिर नहीं रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और यदि आपको ऐसा देखने में आता है कि कहीं से दांत आगे पीछे होकर के निकल रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके जो दूध के दांत हैं उनको निकलवा दें, जिससे कि जो नीचे से दांत आ रहा है वो अपने सही रास्ते पर आकर के सही जगह पर स्थापित हो सके।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है कि हम सामान्य प्रश्न जो होते हैं कि दिन में कितनी बार दांत साफ करें, कैसे साफ करें, उसका क्या कोई सही तरीका होता है, कोई एक आदर्श तरीका होता है, किससे साफ करें, इन सारे प्रश्नों के मिले जुले प्रश्नों का आप एक समग्र उत्तर दीजिए। सबके प्रश्न हैं ये आज
0: जी। देखिए, हमको पता है, जितने लोग सुन रहे होंगे, जानकारी तो सबको ये होगी कि दांत में ब्रश तो 2 बार करना चाहिए, परंतु इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसको अब फॉलो ना करने की वजह से जो हम लोगों ने पहले बताया, वो बीमारियां भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। मिनिमम क्या हम लोग यही कहते हैं कि सुबह उठने के बाथरूम में जाने पर, उठने पर, और रात में अपने बेड पे जाने पर, मतलब जब आप अपना नाश रात का खाना खा चुके हों, दूध भी पी चुके हों, अगर रात में दूध लेते हैं
1: जी,
0: कुछ भी लेने के, सब कुछ लेने के बाद आप एक बार वॉशरूम में जाएं, बाथरूम में जाएं, और मंजन जरूर करें। चूंकि जब आपका मुंह बंद रहता है तो उसमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो रात भर आपके मसूड़ों को और दांतों को डैमेज करते हैं। मान लीजिए दिन में आपने रात में मीठा दूध ही पिया, तो उसमें जो मिठाई वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी फिल्म आपके दांत पे लगी रह गई, और वो फिर बैक्टीरियाज इंड्यूस करेगा और आपके दांतों में कीड़े होना शुरू कर देगा। मान लेते हैं दिन में आपने सुबह तो ब्रश कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट दिन में आपने कई चीज़ें खाई, उसमें मिठाई भी खाई, कुछ पार्टिकल्स आपके दांतों में लगे रह जाते हैं। उन पार्टिकल्स को साफ करने के लिए अगर रात में आप ब्रश करके सोते हैं, तो आप ये विश्वास मानिए कि आपको डेंटिस्ट के पास आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: अब विषय आता है कि कैसे करना है। ये बड़ा, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, हमको कहते हैं कि अरे सर, हम तो 2 बार कर रहे हैं सर, और माउथ वॉशेस भी यूज़ कर रहे हैं, परंतु फिर भी गंदे हैं, और हम लोग देखते भी हैं कि हाँ गंदे हैं। तो देखिए, गंदे का उनमें जो हम लोग जो कारण ढूंढ पाते हैं, वो 2 चीज़ें प्रायतः देखने को मिलती हैं कि दांतों में आपके या तो दांत आगे पीछे हैं, आड़े तिरछे दांत हैं, तो चूंकि आड़े तिरछे दांत हैं तो आपका ब्रश वहाँ प्रॉपर जा नहीं पाता है। उन दांतों के लिए एक स्पेशल ब्रशेज आते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रशेज होते हैं, आपको उन दांतों के लिए अपने ब्रश को चेंज करने की आवश्यकता है। आप ब्रश चेंज करेंगे तो आपको इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, आपके अगर आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांत भी हैं तो वो भी ठीक से साफ हो जाएंगे। दूसरी बात एक जो समझ में आती है कि कुछ लोगों के मसूड़ों के पास
1: जी,
0: तो अमूमन देखा गया है, आप लोग भी अगर हमारी बात को समझ रहे होंगे तो अपने आसपास आप सबने भी देखा होगा, मसूड़ों और दांत के बीच में जहां पर दांत

0: शुरू होता है और मसूड़े खत्म होते हैं,
1: जी
0: उस जगह पे लोगों को बहुत सफेदपन या कुछ चिपकी हुई पदार्थ देखने को मिलती है। लोग करते क्या है कि मसूड़े वाले पोर्शन को रोटेशनल तरीके मतलब घुमा घुमा के नहीं साफ करने के बजाय दांत के इस फ्लैट पोर्शन को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन उस मसूड़े वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो दांत को साफ करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप प्रत्येक दांत पर
1: मतलब
0: जाइए,
1: मसूड़ों पर भी ब्रश करना होता है।
0: मसूड़ों से जस्ट जो आपके दांत को टच करता हुआ
1: ओके, जो
0: जहां से
1: बीच
0: शुरू
1: की
0: होता
1: जगह
0: है,
1: है। जी
0: क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज एक्युमुलेट होते हैं,
1: जी जी
0: दो
1: जी जी
0: दांतों के बीच में सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज एक्युमुलेट होते हैं। दांतों की जो चबाने वाली सतह होती है पीछे के दांतों की, उन दांतों पे सबसे ज्यादा सड़न का कारण यही होता है कि वहां पे कुछ चिपका रह जाता है, आप उसको नहीं हटाते। आपने दांत तो क्लीन कर लिया, आपको लगा आपने ब्रश तो कर लिया, मेरा काम हो गया, परंतु आपने दांत को प्रॉपरली ब्रश नहीं किया। आप जैसे मैंने अभी आपको पहले शुरुआत में ही बताया था कि आप अपने चेहरे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं,
1: जी
0: परंतु आप दांत के लिए उतना समय क्यों नहीं दे रहे हैं? आप चेहरे के लिए जाते हैं, फेशियल भी कराते हैं, बोटॉक्स भी कराते हैं, बहुत ढेर सारे
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट शुरू
1: बिल्कुल
0: हो चुके हैं। दांत के लिए मैं सबसे ये कहूँगा कि मैं भी सुबह शाम ब्रश करता हूँ और मात्र 5 मिनट देता हूँ।
1: जी
0: शुरुआत में हो सकता है आपको काम करने में 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, बट धीरे धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, आपका ऐसा रूटीन हो जाएगा, आपका हाथ उसी तरीके से चलने लगेगा कि आपका ब्रश हर टूथ पर जाएगा, हर टूथ के चारों सरफेसेस को साफ करेगा और फिर अपना काम करके निकल आएगा।
1: ब्रश का चयन भी कुछ विशेष प्रकार
0: हाँ, ब्रश का
1: से होता
0: चयन
1: है।
0: जो है बच्चों के लिए बच्चों वाले ब्रशेज आते हैं, और बड़े लोगों के लिए जितना सॉफ्ट ब्रश हो, थोड़ा महंगा होता है सॉफ्ट ब्रश, जल्दी ख़राब भी होता है, लोगों को लगेगा कि यार ये तो जल्दी ख़राब भी हो जा रहा है और महंगा भी है, परंतु देखिए जो हार्ड ब्रश होता है, हार्ड ब्रश से आपके दांत के ऊपर की परत इनामल जो होती है वो घिसती है, दूसरा मसूड़ों को भी हार्ड ब्रश डैमेज करता है, चलता तो ज़्यादा समय तक है परंतु डैमेज करता है। सॉफ्ट ब्रिशल से क्या होता है कि सॉफ्ट ब्रिशल्स आप ब्रिसल्स आपके दांतों के हर कोने में पहुंच करके उसकी सफाई भी कर देते हैं, खाना नहीं कहीं फंसता है, और आपके मसूड़े और दांतों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हैं।
1: अच्छा
0: दूसरा, अगर किसी को जैसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं खासतौर पर ये कंप्लेंट करती हैं कि दांत साहब हमारे सारे दांतों में झंझनाहट हो रही है और सेंसिटिविटी है, कुछ खाते हैं तो गोठिल सा लगने लगता है
1: जी
0: कुछ भी खट्टी चीज़ खाने पे, तो ये सेंसिटिविटी का शुरुआती लक्षण होता है। सेंसिटिविटी के शुरुआती लक्षणों में तो ज़रूर आप सबसे महंगा और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ करें।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने में आती है, ख़ासकर अगर हम पुराने लोगों की बात करें, जो दादी नानी और ख़ासकर जो गांव के लोग हैं, या अभी भी बहुत से लोग शौकिया दातून का प्रयोग करते हैं, वो महत्व तो देते हैं कि भाई हम दातून को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धतियों में से एक है दांतों को साफ़ करने की। क्या विकल्प, हम एक विकल्प के तौर पर दातून भी चुन सकते हैं नीम की?
0: देखिए, क्योंकि आज आधुनिक युग है तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ आप दातून ही करिए, बहुत से लोग इसको नहीं पसंद करेंगे, परंतु आपकी दादी, जो लोग सुन रहे हैं श्रोतागण, दादी बाबा बड़े बाबा, आपने
1: जी
0: सब लोगों को देखा होगा, उनके दांत हमेशा सुरक्षित रहे होंगे, उनको
1: बिल्कुल
0: मसूड़ों की बीमारियां होती थी, ज़रूर होती थी, परंतु वो नीम की दातून करते थे, बबूल की दातून करते थे। और आप सबको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में दंत चिकित्सा के ऊपर चरक संहिता में बहुत कुछ लिखा गया है।
1: अच्छा
0: हाँ जी, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत शोध किए गए हैं। उस समय के जो ऋषि मुनि जो प्रैक्टिस करते थे या जो इलाज करते थे, वो यही नीम की दातून, बबूल, लौंग का तेल, इन सब और कई औषधियों के मिश्रण से आपके दांतों की समस्त बीमारियों का रोग हर लेते थे वो।
1: बिल्कुल
0: तो मैं ये हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ, शहर के लोगों से भी कहता हूँ, ग्रामीण अंचल के लोगों से भी कहता हूँ, कि अगर आपको शहर के लोगों से, मैं हमेशा कहता हूँ कि चलिए आपको रोज़ नीम की दातून तो नहीं आपको मिल पाएगी ना कर पाएंगे, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हफ्ते में एक बार ही सही। अगर आप नीम की दातून करते हैं रेगुलर टूथपेस्ट के साथ, रेगुलर टूथ ब्रशिंग के साथ, तो आप खुद देखेंगे कि आपके दांतों की चमक भी बढ़ेगी, मसूड़े में जो ब्लैकनिंग होती है वो आपकी पिंक रहेगा, हमेशा गुलाबी मसूड़ा रहेगा, और आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं होगी। बशर्ते
1: लेकिन
0: इसमें
1: जी
0: ध्यान देने योग्य कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आज के

0: युवा लोग अच्छी तरीके से नीम की दातून या बाबुल की दातून कर नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ दिन करते हैं, फिर मुंह के अंदर चोट लगा लेते हैं, हम लोग के पास आ जाते हैं ये कहते हुए कि सर हमको चोट लग गई और थोड़ी दवाएं दे दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि उसकी विधि है, उस ब्रिसल्स उसको भी आप अपने, जैसे सॉफ्ट ब्रिसल्स की बात हो रही थी, अभी हम लोग ब्रश की बात कर रहे थे,
1: जी
0: आप उसको अच्छे से अपने मोलार टूथ से
1: जी
0: जब क्रश करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, गीला करेंगे
1: जी
0: सलाइवा से, उसको अच्छे से वेट करिए। वेट करने के बाद उसको मोलार से अच्छे से ग्राइंड कीजिए और फिर अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको चोट भी नहीं आएगी,
1: मोलर से आपका मतलब है जो हमारे
0: पीछे के दांत
1: चबाने
0: चौड़े
1: वाले,
0: चबाने
1: जिसको
0: वाले दांत,
1: चौगड़ा कहते हैं।
0: चौघड़ा जिसको
1: जी
0: कहते हैं, उन दांतों से अगर आप उसको क्रश करके
1: जी
0: अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको उससे चोट भी नहीं लगेगी। और कुछ लोगों में मैंने देखा है, कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की कि सर नीम की दातून कर रहे थे तो कुछ फंसा रह गया, निकाल दीजिए, तो निकाल तो दिया जाता है, परंतु अगर वो, हम लोग उनसे भी कहते हैं कि अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो ये कुछ नहीं फंसेगा, क्योंकि पहले के लोगों ने कभी इस तरीके की कंप्लेंट्स नहीं की,
1: बिल्कुल
0: या बुजुर्ग लोग हम लोगों के पास आते हैं इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट करके नहीं आते हैं, आज के युवा लोग करके आते हैं। परंतु मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, आकाशवाणी के लोगों का भी और अपने हमारे स्वदेशी के लोगों का भी, कि जिन लोगों ने इस बात को अभी समाज में बहुत अच्छे से फैलाया है। तो नीम की दातून, बबूल की दातून अगर आप करते हैं और पुरानी पद्धतियों का, लौंग का तेल का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए हम लोग डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे घर के घरेलू चीज़ें हैं जिनको आप खुद से, जैसे लौंग का तेल आपके दर्द में बहुत कारगर है,
1: जी
0: यदि आपको रात में एकाएक दर्द हो गया, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप लौंग का तेल लगा करके सो जाएं, आपको निश्चिंत राहत हो, निश्चित ही राहत मिलेगी।
1: जी डॉक्टर वाजपेयी, एक और समस्या आजकल देखने में आ रही है कि लोग और ख़ासकर युवा भी तंबाकू, गुटखा या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और ये अंत में अगर सफाई दांतों की या मुंह की ठीक से नहीं होती है। अच्छा, इसमें हम जीभ की सफाई को भी जोड़ना चाहेंगे। अगर हम दांतों की बात करते हैं तो क्या जीभ की बात करना भी ज़रूरी है?
0: जी बिल्कुल,
1: और ये चीज़ें जब ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर में बदल जाती हैं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। क्या ऐसे में भी सफाई, खासकर जो तंबाकू प्रयोग करते हैं, दांतों के लिहाज से ज़रूरी है?
0: देखिए तंबाकू सुरती जो यहाँ पे आम प्रचलन में है और भी पान मसाले खाते हैं, ये निश्चित ही तौर पे आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो
1: जी
0: जैसे कि युवाओं में एक विशेष लत सी लग गई है कि इनको बिना पान मसाले के, बिना सिगरेट के बहुत अच्छा नहीं लग रहा, उनको लगता है कि हमारा स्टेटस अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो घट रहा है, परंतु मैं सभी को बताना चाहूँगा कि पान मसाला भारत के में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है, और
1: जी
0: पान मसाला सुरती
1: जी
0: खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में, सुरती खास तौर पर उसका सबसे मुख्य कारण है, और
1: जी
0: बीड़ी सिगरेट। आप मुंह की सफाई कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप पान मसाले खाने के हैबिचुअल हैं, आपको हैबिट है, तो आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि दांत तो आपको लग रहा है कि आपके चमकते दिख रहे हैं, परंतु आपका गाल, अंदर का गाल, वो धीरे धीरे ग्रसित हो रहा है। आप उसको देखेंगे, आपका गाल पहले किसी बच्चे का गाल छूइए अंदर की ओर से, कभी वो बहुत सॉफ्ट होगा, और किसी मसाला खाने वाले व्यक्ति का गाल छू करके आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे हार्ड हो रहा होता है, वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर से वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाता है, और सनमाइका की तरह कुछ दिनों बाद उसका अपियरेंस होने लगता है, जैसे चिकनी सनमाइका होती है, उस तरीके का एक अपियरेंस आने लगता है। वो आप ये मान के चलिए कि वो एक ऐसा स्टेज है कि आपको सब चीज़ें छोड़ के डॉक्टर के पास पहुंचना है, अगर आप उस स्टेज पे अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित ही आपको ओरल कैंसर हो जाएगा। बीच में कुछ लोगों को एक चीज़ और समस्याएं आती हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे गाल में सफ़ेद तरीके के धब्बे पड़े हुए हैं, सफ़ेद चकत्ते बने हुए हैं, कुछ लोगों को सफ़ेद चकत्तों की परेशानी होती, ये भी कैंसर के पहले के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आने पर भी सावधान होकर के तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज करना चाहिए। एक विषय और आता है जो हम लोग सुनते हैं कि हम हमारे पड़ोस में या हमारे गांव में किसी बाबा जी ने या किसी दादी जी ने दांत निकलवाया और उनको कैंसर हो गया, ये आप लोग सब लोग सुनते हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं दादी जी या बाबा जी शुरू से इन चीज़ों को ग्रहण कर रहे थे जो कि उनके शरीर के लिए ठीक नहीं थी, जैसे पान मसाला, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, इन सबों का सेवन।

0: कहीं ना कहीं कर रहे थे वो। दूसरा, मैं ये मान सकता हूं कि हर डॉक्टर का इसमें एक्सपर्टाइज नहीं होता है कि वो शुरुआती लक्षणों को अच्छे से समझ सके, तो कई बार थोड़ी सी गलतियों के कारण से, जैसे डॉक्टर चूंकि उनका वो फील्ड नहीं रहा, उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की,
1: जी
0: तो शुरुआती लक्षणों को नहीं पकड़ पाए और दांत निकालने में ऐसी परेशानी हो गई। परंतु मैंने जो मैक्सिमम केसेस देखे हैं उनमें जब हम लोग बाद में पीछे गए तो पीछे समझ में आया कि जिन पेशेंट्स को ये कहना था कि हमारे को कैंसर हुआ इस वजह से हुआ, हमारा दांत निकाल दिया गया, वो गलत पाया गया। हमेशा ये चीज़ पाई गई कि पहले से ही उनके मुंह के अंदर जो चीज़ थी वो प्री कैंसरस लीजन्स में डेवलप हो चुकी थी।
1: जी डॉक्टर साहब, अब समय लगभग हमारे पास खत्म होने को है। एक जरूरी प्रश्न रह जाता है, आप इतने सालों का आपका अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, प्रयागराज और इसके आसपास के परिक्षेत्र से बहुत सारे मरीज आते होंगे और दूर से भी आते होंगे, क्या इधर आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थानीय बीमारियां भी हैं दांतों की क्या, जो अक्सर देखने में आती है, जैसे कहीं पर पानी में कुछ एक रसायन की मात्रा ज़्यादा है या इसी तरह कुछ?
0: जी बिल्कुल। अगर हम लोग प्रयागराज के प्रतापगढ़ की तरफ के अंचल को देखेंगे तो प्रतापगढ़ और जौनपुर का कुछ एरिया, वहाँ के लोग हम लोग के पास बहुत आते हैं, क्योंकि जौनपुर के आधे भाग के लोग तो BHU चले जाते हैं, लेकिन जो
1: जी
0: प्रयागराज से कनेक्टिंग एरिया है वो लोग इधर आते हैं। तो प्रतापगढ़ मऊआइमा के क्षेत्र में, पूरे प्रतापगढ़ में जौनपुर के एक क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादातर फ्लोरोसिस की मात्रा पानी में ज़्यादा है, फ्लोराइड्स की मात्रा, और पेशेंट्स को और लोगों को वहाँ पे दांतों में फ्लोरोसिस हो चुका है। फ्लोरोसिस के कई महत्वपूर्ण कारण ये होते हैं कि मान लीजिए बच्चा छोटा है और जब उसका टूथ, परमानेंट टूथ बड डेवलप हो रहा है, तो उस समय वो ज़्यादा फ्लोराइड वाले पानी को, जो नेचुरली जिसमें ज़्यादा फ्लोराइड है, उस पानी को पी रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं।
1: लक्षण क्या होते हैं इसके?
0: फ्लोरोसिस में दांत पे आप देखेंगे कि पीले कलर की एक परत, जैसे कि दांत हमेशा सफ़ेद होता है, वाइटनिंग ऑफ टूथ होती है, इनामल हमेशा आपका सफ़ेद होता है, बट इनामल में क्या होता है कि धीरे धीरे फ्लोराइड मिक्स हो करके आपके पीलेपन को ले आता है दांतों के, तो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। और चूंकि वो इनामल प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आगे चल के उनमें कीड़े लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। ये तो फ्लोरोसिस का हो गया। दूसरी चीज़, हमारे पास बहुत दूर से MP के काफ़ी भाग से पेशेंट आते हैं, सीधी सतना, ड्रमनगंज और भी मैहर मान लेते हैं, इधर चित्रकूट की बेल्ट से बांदा तक के पेशेंट्स में मैंने देखा है। चूंकि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, तो शंकरगढ़ की बेल्ट से शुरू होकर के वो परेशानी मैंने देखा है शुरू होती है। लोगों के जबड़ों में चोट लगने क्या कारण है, ज़्यादा चोट लगती है और उन चोटों की में लापरवाही करते हैं, लापरवाही से सिस्ट और ट्यूमर्स बनने के पास, मतलब बहुत पेशेंट्स आते हैं उधर से। अब इसमें एक कारण केवल चोट लगना नहीं है, चोट लगना तो बहुत मतलब सबसे छोटा कारण है, चोट लगती है तो लोगों को पता होता आते हैं। कहीं ना कहीं दांतों के प्रति इतना नेग्लिजेंस है उस एरिया में कि जैसे कि दांत अंदर अगर आपका जबड़े में फंसा रह गया, दांत डेवलप नहीं हुआ, अंदर नहीं आया, दांत अंदर ही अंदर डेवलप होकर के जबड़े में फंसा हुआ, तो कई प्रकार के सिस्ट्स को डेवलप करता है और बड़े बड़े सिस्ट बनते हैं जो पूरे पूरे आपके जबड़े को अंदर से खा जाते हैं। इस तरीके की कई परेशानियाँ मतलब ये हम लोगों को देखने को प्राप्त होती है। दूसरा, मैं एक विषय और है जो आपने नहीं पूछा है, मैं
1: जी
0: इसको ज़रूर बताना चाहूँगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि जैसे
1: जी
0: कि ग्रामीण अंचलों में हैंडपम्प का बहुत इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हैंडपम्प से कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बच्चे हैंडपम्प चलाते हैं और हैंडपम्प इतना स्लिपरी होता है, उसका हैंडल से स्लिप कर जाता है, तो हैंडल या तो लग जाता है दांतों पे आकर के, तो यदि और उससे दांत बहुत टूटते हैं। तो मैं हमेशा ये, अब आगे आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बच्चों को हैंडपम्प पे पानी लेने ज़रूर भेजिए, परंतु एक चीज़ उनसे ज़रूर बोलिए कि वहाँ जा रहे हैं तो पानी भरते समय थोड़ी सतर्कता बरतेंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि हैंडपम्प से दांत टूटे ना, और यदि टूट जाते हैं तो आप उसका तुरंत इलाज कराइए, नहीं तो कुछ दिनों तक तो आप उसका इलाज जब कराते नहीं, अब अंततोगत्वा बाद में आपको दांत में सड़न होती है, पस बनता है, अच्छी गांठ बनती है और उसको बाहर करना होता है फिर।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी आपने और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो अवश्य लाभान्वित होंगे और जो छोटी छोटी सावधानियां आपने बताई वो ज़रूर उसको अपने जीवन में लाएंगे और उसको इस तरह से लागू करेंगे कि कम से कम दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या उनको ना हो। अंत में अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो या आप हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील

0: करना चाहें या कुछ संदेश देना चाहें डॉक्टर रंजन वाजपेयी?
1: मैं आप सभी से अंत में केवल एक चीज़ फिर से कहूँगा, आपको नियमित तौर पे दो बार ब्रश करना है। गाँव में माउथ वॉशेज अवेलेबल नहीं होते हैं, आप गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल करके रात में सोते वक्त और सुबह उठते वक्त
0: जी
1: अगर कुल्ले करने की आदत डाल लेंगे तो आप दांतों की बीमारियों से कभी भी ग्रसित नहीं होंगे।
0: क्या बात है।
1: और नीम की दातून और बबूल की दातून अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों, इंटरनल बीमारियों से भी और मसूड़े की और दांत की बीमारियों से भी बचेंगे। बस मैं आप सबसे से इतना कहना चाहूँगा, यही प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: तो श्रोताओं, सुना आपने कि डॉक्टर रंजन वाजपेयी ने किस तरह से दांतों के बारे में खुल करके बात की और ये बताया कि किस तरह से आप अपने दांतों को सहूलियत से रख सकते हैं। इस तरह से रख सकते हैं कि जो नेमत, एक मुस्कुराने की जो नेमत ईश्वर ने आपको दी है, जो केवल और केवल इंसान के पास है, आप इस कदर मुस्कुराएं कि सामने वाला देख करके कहे कि वाह क्या दांत हैं। खैर, दांतों का ख्याल रखिए, अपने पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, समाज का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: हाँ भैया,
3: देखा हो, दांतों की आम समस्याएं एवं उनकी समुचित देखभाल, भैया देखा कितना बढ़िया से डॉक्टर साहब फरियाई के बताएं।
2: बिल्कुल भैया देखा,
3: भैया देखा अपन अभिनव प्रज्ञ पांडे भैया जो उन कितना बढ़िया से जो उन्हें डॉक्टर साहब से जानकारी लेन पूछें। हम तो कहा भैया, बोला भाई देखा जे भी हमारी कार्यक्रम सुने भैया उन्हें और तो का जरूर फायदा हुई हो।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, देखा ये इतना बढ़िया विषय रहा कि अक्सर जो ना है किसान भैया रन परेशान रहा थे, अब पे विचार करिए तो उनका हमेशा लाभ मिली।
3: बिल्कुल बिल्कुल हो, देखा हो भोला भाई, बात होत रही अब खेती किसानी के ना, तो भैया देखा ये समय धान का लगवाही जवन चलत भैया, अपन बढ़िया से भैया देखा खेत के तैयारी कर लें किसान भाई।
2: बिल्कुल,
3: और ओकरे बाद जवन है पानी भर के भैया देखा लगावे।
2: बिल्कुल भैया देखा, जो ना है मेड़ बंदी करे रहा एकदम तैयार रहा है, कब देखा दाऊ राजा अपन मेहरबानी दिखाए दे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो कहे इंतजार न करें, काम अपन करे रहा है।
3: और साथे साथे एक बात और देखा, ये जोन बा अब वृक्षारोपण के भी जोन है कार्यक्रम चलत बा। हम तो कह भैया कि देखा गांव गिराव में जोन है देखा ब्लाके के माध्यम से भैया देखा पेड़ आवत बा, गांव गांव में भी देखा जात बा भैया। हम तो पंच भैया हरेन से कहा भैया देखा दो दो चार चार पेड़ जरूर लगावा।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल,
3: कहे से कि ये पेड़ लगी है भैया तो देखा अपन पर्यावरण भी सुरक्षित रही हो और साथे साथे उनका तरह तरह का फायदा होता रही।
2: बिल्कुल भैया देखा, पर्यावरण से ही सारा मौसम बना थे, मानसून बना थे और वह हमारे खेती किसानी के लिए लाभदायक बटे, तो ओपे तो हमका सबके विशेष ध्यान देख पड़ी और पंच भैया रेन के विशेष रूप से जब उन खाली जगह हो वहाँ पेड़ पौधा लगावें।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो, देखा अपन खेती किसानी में सरकार भैया देखा तरह तरह का समय समय पे योजना परियोजना लावत रहा, तो भैया हम तो कहब देखा अब ये समय जो ना भैया फार्मर रजिस्ट्री चलत बहु
2: भैया,
3: किसान अपने खतौनी भैया और आधार और मोबाइल नंबर ले आए कि भैया देखा जन सुविधा केंद्र पे ओपे भैया देखा अपन खतौनी अपन आधार से जुड़वा सके।
2: बिल्कुल भैया, हम तो देखा करवा चुका है और पंच भैया रन से यही कहा आपके समय रहते वो करवा ले ताकि जौन भी लाभ मिले वाला रहते सरकार से वो आसानी से आप तक पहुंच सके।
3: बिल्कुल भैया हो, भोला भाई देखा चाहे कृषि यंत्र ले, चाहे भैया देखा खाद बीज ले, जौन अपन हर ब्लाकन में राजकीय कृषि बीज भंडार बना है भैया देखा, उहूँ अगर अपन किसान भाई हरे लेके कागज पत्र पहुँचत है खतौनी आधार मोबाइल, भैया देखा उहूँ उनके फार्मर किसान आई डी जौन फार्मर रजिस्ट्री भैया कई देते हैं।
2: बिल्कुल भैया,
3: तो ये लिए किसान भाई हरे की चाहिए कि अपने खतौनी से अपने आधार का भैया जुड़वा लें।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल
3: बिल्कुल, वो भाई भोला भाई जोन है भाव तो जोन है और का कहा था
2: भैया देखा के? अब विदा ले के समय होत बटे, लेकिन यह कहा कि भैया हमारे कार्यक्रम उनका किसान भैया ने कैसे लगा थे, अपन प्रतिक्रिया जरूर भेजें और कुछ नया जाना समझे चाहती तो ओकरे बारे में अपन सुझाव दें।
3: बिल्कुल,
2: और ओकरे खातिर हमारे जो नंबर बटे ओकर नोट कर लें और भैया देखा लिखें।

8004926250 के साथ ही साथ भैया देखा आप फेसबुक पे भी जो ना है अपन आप विचार साझा कर सकते हैं आकाशवाणी के और व्हाट्सएप के माध्यम से भी दें। तो भैया अपन ध्यान रखें, अपने पशुओं का ध्यान रखें, खेती बाड़ी भी समय समय से पूरा करत रहें। तो पंचों राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, ये आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 पर पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता होगी विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में चित्रा चौरसिया से भजन सुनिएगा 7:45 पर और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा।

अब सुनते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे श्री राम लखनपाल से की गई बातचीत। स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर राकेश राज की वार्ता होगी बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथी द्वारा उपचार। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर और 12:15 पर भास्कर दास का बांसुरी वादन। नमस्कार प्रयागराज, 8:45 पर।

सुबह 10:30 पर सेहत बात के अंतर्गत सुनिएगा बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथी द्वारा उपचार। डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत सुनिएगा। बच्चे अपना कार्यक्रम बाल संग सुनेंगे 11:15 पर। 15:15 अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अनुरोध सुनिएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 5:00 ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल। इसमें सुनिएगा उमेश चंद्रा की वार्ता कहानी मानसून की। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे आर्यन सिंह से की गई बातचीत। युवा अपने कौशल उद्यमता को कैसे दें नए आयाम। साथ ही दिनेश कुमार और साथियों से लोकगीत सुनिएगा।

0: 20 मिनट होने को हैं, आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
1: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
2: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
2: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन।
1: अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
3: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आर

0: के बीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में 7 व्यक्ति सवार थे जिनमें से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़।

0: रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान, एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता, विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि।
2: विजय देव नारायण शाही को

0: केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता, विजय देव नारायण शाही की आलोचना दृष्टि।
1: विजय देव नारायण शाही को संक्षिप्त नाम विडियन शाही के नाम से जाना और पुकारा जाता रहा है। वे एक संभ्रांत परिवार से थे। उनके पिता न्यायिक सेवा में थे, भाई जो बड़े थे उनसे आईसीएस थे। उनका जन्म कबीर चौरा वाराणसी में हुआ था। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, पहले काशी विद्यापीठ वाराणसी और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। उनकी पत्नी श्रीमती कंचन लता शाही भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ही प्रोफेसर थीं। शाही जी को दीर्घ आयु नहीं मिली। 7 अक्टूबर 1924 की पैदाइश थी और 5 नवंबर 1982 को हृदय गति बाधित होने से उनका निधन हो गया। कुल 58 वर्ष का संक्षिप्त जीवन मिला। इस छोटे से जीवन में अपने लेखन, अपनी बौद्धिक प्रखरता और अपने सक्रिय राजनीतिक आंदोलनों के कारण उन्हें अच्छी खासी ख्याति मिली। विडियन शाही ने अपने रचनात्मक लेखन का आरंभ कविताओं से किया। कविताओं के अलावा गीत, गजल, निबंध, नाटक, डायरी, वैचारिक लेख, नाटकों का मंचन और निर्देशन, संगीत, यह सब भी उनके रचनात्मक लेखन के पड़ाव थे। इन सभी विधाओं में उन्होंने लेखन और प्रस्तुत की है। आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से गहरे प्रभावित थे, इसलिए उनके नेतृत्व में चलने वाले हिंदी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी थी। भदोही के कालीन बुनकरों के बीच भी वे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने जेल यात्राएं भी की। कुल मिलाकर वे एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी थे, इसीलिए उनको बहस करता हुआ आदमी के रूप में भी जाना जाता है। शाही जी की कविता और आलोचनात्मक लेखों की कुल 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें से 9 उनके मरणोपरांत प्रकाशित हैं। उनके जीवन काल में केवल उनका पहला कविता संग्रह मछली घर ही प्रकाशित हो सका था। अज्ञेय के संपादन में निकलने वाले तीसरा सप्तक से उनकी कवि की पहचान बनी, परंतु उनके व्याख्यानों, भाषणों व लेखों से उनकी मजबूत छवि आलोचक की बनी। उन्होंने आलोचना और नई कविता जैसी अग्रणी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। विजय देव नारायण शाही को एक प्रखर बौद्धिक और बहसधर्मी आलोचक की छवि मिली है। बहुपठित तो वे थे ही। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की मान्यताओं से असहमत व्यक्त करने वाले 2 प्रमुख आलोचक गिने जाते हैं, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी और आचार्य नंदलाल वाजपेयी। आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल जी की आदिकाल और भक्तिकाल संबंधी और मान्यताओं पर बहस की और आचार्य वाजपेयी ने शुक्ल जी की छायावाद संबंधी अवधारणाओं पर। शाही जी ने अपने आलोचना का प्रस्थान बिंदु मुख्यतः नई कविता आंदोलन को चुना। यदि छायावाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का सबसे प्रभावशाली काव्य आंदोलन था, तो नई कविता 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। शाही जी उसी दौर के आलोचक थे, यानी नई कविता के दौर के। इस तरह उन्होंने अतीत विश्लेषण से अधिक महत्वपूर्ण साहित्य के प्रतिमानों को, समकालीन साहित्य के प्रतिमानों को माना। लघुमानव की कविता के रूप में नई कविता को व्याख्यायित करना सर्वथा नया दृष्टिकोण था। उन्होंने समकालीन कवियों में शमशेर पर एक लंबा निबंध लिखा। शीर्षक है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट। वह निबंध शमशेर की रचना प्रक्रिया, उनके काव्य विवेक और काव्यानुभूति को समझने के लिए एक जरूरी आलेख है और आज भी शमशेर पर बात करते हुए उसको जगह जगह उद्धृत किया जाता है। इस लेख से शाही जी की आलोचना दृष्टि की प्रखरता का पता चलता है। शाही जी केवल साहित्यिक आलोचक नहीं थे, वे प्रगतिशील लेखक संघ की विचारधारा या साम्यवादी आलोचना दृष्टि से सहमत न थे, लेकिन साहित्य को कलावादी नजरिए से देखने के भी पक्षधर न थे। साहित्य को सामाजिक उत्पादन मानने के बावजूद वे साहित्य की स्वायत्तता के आग्रही थे। इस स्वायत्तता में समाज विमुखता नहीं है, बल्कि अन्य सामाजिक विमर्शों की तुलना में साहित्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्थापित करने, उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करने का आग्रह है। बतौर उदाहरण उनकी डायरी की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है। क्रिस्टोफर कॉडवेल की प्रतिष्ठित पुस्तक इल्यूजन एंड रियलिटी के कई अध्याय पढ़ गया। बड़े साहस और धुन के साथ कम्युनिस्ट साहित्यिक विचारों का विश्लेषण और पुष्टि करने का प्रयत्न किया है। साहित्य के विषय में कम्युनिस्टों की धारणाओं पर

0: जो मुख्य आक्रमण होता है वह यह है कि वह अपनी आलोचना में साहित्य को भूल जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने लगते हैं। कार्डवेल ने यह तो दिखलाने की बार बार कोशिश की है कि साहित्य को समाज से अलग करके नहीं समझा जा सकता, परंतु जहाँ उन सिद्धांतों और नियमों की उत्पत्ति तथा पुष्टि का प्रश्न आता है जिनके द्वारा वर्ग संघर्ष और विभिन्न कलाओं पर इसका विस्तृत प्रभाव पड़ता है वहाँ वह भटक जाता है। इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि उनकी असहमति साहित्य और समाज की एकता को लेकर नहीं थी, पर दोनों के अंतर संबंध की व्याख्या साहित्य में स्वतंत्र आलोचनात्मक दृष्टि से होनी चाहिए, न कि समाज विज्ञान के सिद्धांतों से। वे पाश्चात्य आधुनिक और प्रगतिशील आलोचकों की मान्यताओं से कई जगह सहमत हैं, पर साहित्य की स्वायत्तता के सवाल पर उनसे बहस भी करते हैं और असहमत भी होते हैं। उनकी साहित्यिक आलोचना की अभी तक कुल 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं: जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्य क्यों, वर्धमान और पतनशील, एक सामाजिक राजनीतिक निबंधों का संकलन भी है, लोकतंत्र की कसौटियाँ। इसमें कृति या पाठ आधारित आलोचना की एकमात्र महत्वपूर्ण पुस्तक जायसी है। साही जी के सामने चुनौती थी आचार्य शुक्ल के जायसी पर लिखे की। साही जी से पहले आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में जिन 3 कवियों को स्थान दिया था उनमें तुलसी और सूर के बाद जायसी ही थे। यह ध्यातव्य है कि साही जी ने मध्यकाल के जिस कवि का चयन किया अपने आलोचनात्मक अध्ययन के लिए, अपने आलोचनात्मक प्रतिमानों के निर्माण के लिए, वे जायसी हैं, जबकि बनारस में जन्म के तर्क से कबीर उनके अधिक निकट बैठते हैं। उनके राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तुलसीदास के प्रशंसक थे। साही जी के कविता संग्रह का नाम साखी है, जो कबीर की याद दिलाता है। जायसी उनको प्योर पोएट या विशुद्ध कवि और सेकुलर कवि लगते हैं। जायसी के बाद न केवल जायसी को बल्कि मध्यकाल की भक्ति कविता को पढ़ने और समझने का नज़रिया ही बदल जाता है। यह उस पुस्तक, जो बहुत मोटी नहीं है, कि उल्लेखनीय भूमिका है। हिंदी की बौद्धिक दुनिया में साही जी की पुस्तक जायसी को आलोचना के एक नए प्रस्थान बिंदु के रूप में सम्मान प्राप्त है। साही जी अपनी आलोचना में विचारधारा को तो महत्वपूर्ण और जरूरी घटक मानते हैं, किंतु विचारधारा के वर्चस्व और आस्थावादी आग्रह को विचारों के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं मानते। विचारधारा जीवन दृष्टि के भीतर रहे यह तो ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़कर मुख्य कसौटी वही हो जाए, इससे साही जी सहमत नहीं होते। इसीलिए उन्होंने मुक्तिबोध की कविता के बरक्स अज्ञेय या शमशेर की कविता को अधिक साहित्यिक महत्व की कविता माना। विचारधारा का कठोर या जड़ आग्रह हमारे साहित्य की स्वायत्तता को बाधित और सीमित भी करता है। साही जी अपने पूरे आलोचनात्मक लेखन में मनुष्य, मानवता, धर्मनिरपेक्षता, उदारता, सामाजिक हित, नवता आदि मानवीय और रचनात्मक मूल्यों को स्थापित करते हैं। औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त हो रहे एक आधुनिक समाज का सपना देखते हुए उस ओर बढ़ रहे राष्ट्र के लिए यही मूल्य उपयोगी, सहायक और जरूरी हो सकते थे। साही जी साहित्य और अपने आलोचनात्मक लेखन के माध्यम से उसी भूमिका का निर्वाह करते हैं जिस भूमिका का निर्माण हमारे अग्रणी राष्ट्रनायक अपने राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के माध्यम से कर रहे थे। आलोचना को विचारों के जनतंत्र का वाहक होना चाहिए, एक विचारधारा के दायरे में सीमित नहीं होना चाहिए। एक विचारधारा का वर्चस्व न समाज के लिए हितकर है, न साहित्य के लिए, न राष्ट्र के लिए।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह की वार्ता विजय देव नारायण साही की आलोचना दृष्टि। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं चित्रा चौरसिया। पहले सुनते हैं इनसे भजन, रचना है मीराबाई की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चित्रा चौरसिया से भजन, और आइए अब सुनते हैं चित्रा चौरसिया से एक और भजन, रचना है मीराबाई की।

0: चित्रा चौरसिया के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। दोस्तों, जिंदगी कभी सवाल बनकर सामने आती है तो कभी उसी सवाल का जवाब भी अपने साथ ले आती है। कुछ रिश्ते बिना बोले दिल में उतर जाते हैं और कुछ सफर हमें इंसानियत का असली मतलब सिखा जाते हैं। मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है जब साथ में अपनापन और मोहब्बत होती है। दिल की आवाज सुनने वाले ही समझ पाते हैं कि जिंदगी हर पल कुछ न कुछ कहती जरूर है।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जिए जाते हैं। जब जीवन की राहों में कोई अपना साथ हो तो हर मुश्किल आसान और हर सफ़र खूबसूरत लगने लगता है। प्यार की यही सबसे बड़ी ताकत है साथ होने का विश्वास। हाथों में हाथ हो तो रास्ते बदल जाते हैं, दिल से दिल मिले तो फासले पिघल जाते हैं। मोहब्बत की यही सबसे हंसी पहचान है, दो दिल साथ हों तो मौसम भी संवर जाते हैं।

रिश्तों की खुशबू यूं ही महकती रहे, हर दुआ में अपनों की हंसी चमकती रहे, जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत बन जाए जब मोहब्बत और विश्वास हमेशा साथ रहे। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप चित्रपट संगीत। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी हमारी मुस्कुराहट बन जाती है, लेकिन जब वही रिश्ता दूर हो जाए तो हर खुशी अधूरी और हर महफिल सूनी लगने लगती है। प्यार का सबसे गहरा एहसास अक्सर जुदाई के लम्हों में ही महसूस होता है।

नजरों की खामोशी भी अफसाना कह जाती है, दिल की हर धड़कन कोई तराना कह जाती है। मोहब्बत में ज़रूरी नहीं हर बात लफ्ज़ों में हो, हर एक मुस्कान भी दिल का पता बता जाती है। इकरार की राह में थोड़ा सा संकोच भी अच्छा है, मोहब्बत में सादगी का अंदाज भी अच्छा है, जो दिल से दिल तक पहुंच जाए बिना शोर किए, ऐसा खामोश एहसास भी सबसे अच्छा है।

श्रोताओं, मोहब्बत जब दिल की गहराइयों में उतर जाती है तो उसका हर एक एहसास एक दुआ बन जाता है। कभी मिलन की खुशी तो कभी जुदाई की कसक, यही तो इश्क की सबसे खूबसूरत सच्चाई है।

इस गाने के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

तक ऐब मेरे, तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा, तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी। जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे, मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा, दिने राती नीर होवे, ओनू किधरे गरीब ना आख बैना, ओदे जेड ना कोई अमीर होवे, ओदे दर्दे गदावां दी की दसा, करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे, ओनी मंगदा तख्त पे।

0: बेगम अख्तर की गाई इस गज़ल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश

0: देश नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away.

0: भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जनाब मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फू क्वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और 1 अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासरा कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84 36 210 7930, +84 91 552 7314 और +84 33 452 0414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +

वाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख

समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, ये कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात

0: बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो गोनाथो चोड़ी नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, धोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हमें कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन

0: नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी, फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 दैतापति हूँ। प्रभु स्नान के बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक पथी पांचन होता है, आम, केला, कनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का कोरा, जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा।

0: सपुरी सपटा ये पांच प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का पूरा जल लवंग जायफल दे के चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का भजन का जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
2: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि ये आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए।

0: और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
1: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोगों का। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। आम ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
3: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी, हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त तो हो जाएंगी।
4: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है, मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
5: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है।

पाटा नटारी ये थे हमारे ध्रुव वह के जन्म है। उस दिन हम अटारी में रहे, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे, भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे है आर

0: या जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। अब कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो।

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उमन रोना शुरू कर देते, हम उतका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है आगे बार मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शिला गदा पकड़ के रेंगता हूँ, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम के रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐती तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे कतको लेकर।

0: उठे रोवत रोवत गाथे आ तो बोले भूरियारो बोल चुचकारो ये गार्डर ही ते गार्डर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था बोले बढ़ावा भी दो तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लागते लेकिन मल्ला सिखा के दे दो
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्यों टल भेटे हूं गंगा मां।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपू शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपू विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपू शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपू विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपू माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. रामावरपू माधुरी देवी is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. रामावरपू माधुरी देवी begins her concert with Shakti Ganapatim, a composition of Muttaya Bhagavatar in Natragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो की आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Adithalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

0: गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister